दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और शर्मा बंधु की आवाज़ों में चंद भक्ति रचनाएं। ये कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज के अलावा भी आप हमें प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और इंटरनेट के माध्यम से भी ऑल इंडिया रेडियो लाइव के जरिए भी आप हमें देश और दुनिया में सुन रहे हैं। इस समय सुबह के 9:40 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गौरबंद। लोक संगीत का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे लाजिलाई बाई के गाए कुछ लोकगीत।

आकाशवाणी नागौर के चिरमे चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गोरबंद लोक संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं अला जिलाले बाई को। सुनते हैं अगला लोकगीत।

दोस्तों, आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गोरबंद, लोक संगीत का कार्यक्रम। चलिए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं।

दोस्तों लोक संगीत कार्यक्रम जो कि घोरबंद नाम से हम प्रसारित करते हैं, इस कार्यक्रम का अगला और आखिरी गीत सुनते हैं। आवाज दी है रानी रंगीली ने।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गोरबंद लोक संगीत का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम अभी यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज के अलावा भी आप हमें प्रसार भारती की ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज़ सोनी IR और अगर आप इंटरनेट के माध्यम से हमें सुनना चाहते हैं तो ऑल इंडिया रेडियो लाइव के जरिए भी आप हमें कहीं पर भी सुन सकते हैं। इस समय सुबह के ठीक 10 बजे हैं। प्रस्तुत है गाने पुराने जमाने के। दोस्तों, इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं फिल्म गुड्डी के इस गीत से। आवाज़ लता मंगेशकर की है। इस गीत को लिखा है शैलेंद्र ने और संगीत दिया है SD बर्मन ने।

0: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया।
2: मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
2: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
3: आरबीआई कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: चोरी चोरी फिल्म से कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर ने, गीत के बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने और संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन ने।

प्रत्येक सोमवार को रात्रि 8 बजे सुनिए सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम दिल से। इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश भेजने के लिए आपको लिखना है अपने पसंदीदा गीत के बोल, फिल्म का नाम, अपना

का नाम और अपने शहर या गांव का नाम, और भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9649004762 पर। शाम 5 बजे तक प्राप्त आपकी फरमाइशों का प्रसारण किया जाएगा उसी रात 8 बजे आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है दिल से।

दोस्तों गाने पुराने जमाने के कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं फिल्म किस्मत से। इस गीत को आवाज़ दिए आशा भोंसले और उनका साथ दे रही हैं शमशाद बेगम। ओपी नहीर ने इस गीत को संगीत दिया है और इस गीत के बोल लिखे हैं SH बिहारी ने।

दोस्तों ये फिल्मी गाने इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से और कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं गाने पुराने जमाने के। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगला गीत सुनते हैं फिल्म हंसते जख्म से। इस गीत को आवाज़ दिए लता मंगेशकर ने, मदन मोहन का संगीत है और गीत के बोल लिखे हैं कैफी आज़मी ने।

हकीकत फिल्म से कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं। इस गीत को आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी ने, मदन मोहन का संगीत है और इस गीत के बोल लिखे हैं कैफी आज़मी ने।

0: चलिए दोस्तों, कार्यक्रम का अगला और आखिरी गीत सुनते हैं फिल्म गंगा जमुना से। इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद अजीज ने।
1: लागा गोरी गुजरिया से।
0: दोस्तों, ये आवाज है मोहम्मद रफी की।

0: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गाने पुराने जमाने के। ये कार्यक्रम अभी यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमिर चैनल से बोल रहे हैं। FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी के अलावा भी आप हमें अलग अलग माध्यमों से भी देश और दुनिया में सुन रहे हैं। इस समय सुबह के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है गाने नए तराने नए। दोस्तों इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म किसान से। इस गीत को आवाज दिए लाभ चंचुआ, सुनिधि चौहान और इन दोनों का साथ दे रहे हैं डब्बू मलिक।
1: This is total invasion. We're coming to you across the nation.
2: ओए सुनो ए, आज जरा पराता हटे।
1: We're gonna tell you loud and clear. We're the boss. We're the kings. We're the ace.
2: ओए सानू खंडक लाते, चक देंगे।
3: You gotta know, they are.

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: किस्मत कनेक्शन, यह है कार्यक्रम की अगली फिल्म का नाम। इस गीत को आवाज दिया आतिफ असलम और उनका साथ दे रही है अलका याग्निक।

श्रोताओं, प्रत्येक गुरुवार को युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत होता है ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। अपनी फरमाइश भेजने के लिए हमें ईमेल कीजिए हमारी ईमेल आईडी youthexpressnagore@gmail.com पर। इसमें आप लिखिए अपनी पसंद की फिल्म का नाम, गाने के बोल, आपका नाम, आपके शहर या गांव का नाम और भेज दीजिए हमारे ईमेल आईडी पर youthexpressnagore@gmail.com पर। और सुनिए अपने पसंदीदा गीत।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी नागौर का चिरमिचल। दोस्तों, इस फ्रिक्वेंसी के अलावा भी आप हमें अलग अलग माध्यमों से भी देश और दुनिया में सुन रहे हैं। ऐप के माध्यम से भी आप हमें सुन सकते हैं, और अगर इंटरनेट के माध्यम से अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप ऑल इंडिया रेडियो लाइव के जरिए आप हमें देश और दुनिया में सुन सकते हैं। इस वक्त आप कार्यक्रम सुन रहे हैं गाने नए तराने नए। अब बढ़ाते हैं कार्यक्रम को आगे और अगला गीत सुनते हैं फिल्म गोल से। इस गीत को आवाज़ दिए आनंद राज आनंद, और उनका साथ दे रही हैं ऋचा शर्मा।

दोस्तों कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगला गीत सुनते हैं फिल्म गोलमाल 3 से। इस गीत को आवाज दी है नीरज श्रीधर और उनका साथ दे रही है अंतरा।

दोस्तों कार्यक्रम गाने नए तराने नए का अगला और आखिरी गीत सुनते हैं फिल्म ग्रैंड मस्ती से। ग्रैंड मस्ती 2 फिल्म का नाम है और इस गीत को आवाज़ दी है संजीव राठौड़ और दर्शन राठौड़ ने।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गाने ने तराने ने। ये कार्यक्रम अभी यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी नागौर के 6वें चैनल से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.7 MHz की।

0: फ्रीक्वेंसी के अलावा भी आप हमें अलग अलग माध्यमों से विदेश और दुनिया में सुन रहे हैं। इस समय सुबह के ठीक 11 बजे हैं। प्रस्तुत है विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। ये प्रसारण विविध भारती केंद्र मुंबई से अनुप्रसारित होगा।
1: युवावाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 01582-240-168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युवावाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुनें।

0: साजन मिश्रा और साजन मिश्रा की आवाजों में आप सुन रहे थे भक्ति माला से ये भक्ति गीत। कार्यक्रम विविध भारती पर आप सुन रहे हैं रंग तरंग।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत।
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, स्टीम का जवाब नहीं, जिसने मुझे इतने चढ़ से इन चीजों को

0: हमारे और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से
0: मैंने पढ़ा, जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी, 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।
0: जाने कितनी

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम रंग तरंग। आइए सुनते हैं द बेस्ट ऑफ भूपिंदर। इस एल्बम से भूपिंदर सिंह की आवाज में ये गजल जिसे लिखा है गुलजार ने और संगीत भूपिंदर का।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग, और आपको याद दिला दें कि संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ऐसी लागी लगन। आज सुन सकते हैं उसकी दूसरी कड़ी। कलाकार हैं गायक अनूप जलोटा, और इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं शाम 6:45 से। वैसे रोजाना ये कार्यक्रम सुबह 6:45 पर भी आप सुन सकते हैं। और इंद्रधनुष के अंतर्गत राग अनुराग कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7:45 से। और इस वक्त रंग तरंग कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं ये गीत।

द मॉर्निंग सन, इस एल्बम से सुरेश वाडकर की आवाज में आप सुन रहे थे रविंद्र जैन का लिखा और इनका संगीतबद्ध किया ये गीत। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

महेश्वर का लिखा ये कलाम आप सुन रहे थे कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। चंदी रमानी का संगीत था सोजे दिल, इस एल्बम से इस गजल को हमने आपको सुनवाया। ना बाबा ना, ये झलकी आप सुन सकते हैं रात 8 बजे हवा महल में। लेखन संजय श्रीवास्तव का है, निर्देशन गोविंद पारिक का है और नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक आप सुन रहे हैं ना हर रोज रात 8:15 से। और इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर।

जयवालिया की आवाज में उन्हीं का लिखा ये गीत आपने सुना, ललित का संगीत और एल्बम आंखों में तेरा ही चेहरा, जिससे हमने ये गीत आपको सुनवाया। कार्यक्रम रंग तरंग में अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं लक्की अली की आवाज में। अक्स एल्बम के इस गीत में लक्की अली का ही की ही आवाज है, उन्हीं का संगीत और उन्हीं के बोल।

लकी अली की आवाज में उन्हीं का संगीतबद्ध किया गीत आपने सुना अक्स एल्बम से। इस गीत को लिखा भी उन्होंने ही। और आपको बता दें कि आज के फनकार कार्यक्रम रात 9:30 से आप सुन सकते हैं। आज केंद्रित है पार्श्व गायक बेनी दयाल पर। और कार्यक्रम रंग तरंग में अगला गीत आप सुन रख सकते हैं या सुनने वाले हैं दिल के टुकड़े हजार हुए। इस एल्बम से अल्ताफ राजा की आवाज, अरुण भैरव के बोल, संगीत अल्ताफ राजा और वैष्णव देवा का।

दिल के टुकड़े, माफ कीजिएगा, दिल के टुकड़े हजार हुए, इस एल्बम से आप सुन रहे थे अल्ताफ रजा को, और कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

आहा सुचित्रा, इस एल्बम से आप सुन रहे थे सुचित्रा कृष्णमूर्ति की आवाज में अरुण राज के बोल, बंटी दुग्गल का संगीत इस गीत में आपने सुना। आपको बता दें शाम 4 बजे आज के मेहमान कार्यक्रम में सुनना ना भूलिएगा शायर और सेवानिवृत्त केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत, प्रस्तुति जुबैर खान की। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

अपने पराये फिल्म का गीत आप सुन रहे थे केसुदास और साथियों की आवाजें, योगेश के बोल, बप्पी लाहिरी का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग में अब आपको सुनवाते हैं करण सगथिया और श्रेया घोषाल की आवाजें, मीर अली हुसैन के बोल हैं, सलीम सुलेमान का संगीत। डोर फिल्म से सुनिए ये गीत।

डोर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे करण सगथरिया और श्रेया घोषाल की आवाज से, मीर अली हुसैन के बोल, सलीम सुलेमान का संगीत। इसके साथ ही आज का रंग तरंग कार्यक्रम आप समाप्त होता है। रंग

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नव निर्वाचित तमिल कवित्री कड़गम टीवी के सरकार ने विश्वास मत में बहुमत हासिल कर लिया है। 144 विधायकों ने पक्ष में मतदान किया है। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड पांचवीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के मल्लाडी

0: कृष्ण राव और भाजपा के ए नमसिवियम ने भी समारोह में मंत्री पद की शपथ ली। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीपी रामलिंगम, अधिकारी और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री के काफिले में वाहनों की संख्या में कमी गुजरात और असम की उनके हाल ही यात्राओं के दौरान लागू की गई। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लैटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के बीच लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिसो पेरेस मैकेना से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। श्री फ्रांसिसको ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की कल से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे। श्री फ्रांसिस्को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुग्यानो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। वे प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। नीट यूजी परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए लगभग कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। पंजाब सरकार ने रक्षा बलों में कार्यकाल पूरा करने के बाद अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण नीति बनाने का निर्णय लिया है। प्रक्रिया रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ देने के लिए सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति दे दी है। सरकार का कहना है कि पंजाब पुलिस, वन रक्षक, अग्निशमन सेवा, जेल, होमगार्ड और अन्य कई विभागों में उनकी सेवाओं को प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों ने देश के अडिग संकल्प को प्रदर्शित किया है। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन यादों की महफिल कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज पार्श्व गायक मनहर उदास के जन्मदिन पर उनके ही आवाज से सजे कुछ गीत आज के इस कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं।
2: आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 015-82-240-168। वैसे तो ये प्रोग्राम सभी श्रोताओं के लिए है, लेकिन हम स्थानीय नागौर जिले के श्रोताओं को प्राथमिकता देते हैं। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश

हीरो फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मनहर उदास की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीत। मनहर उदास के जन्मदिन के मौके पर आज उनकी आवाज से सजे गीत आपको सुनवा रहे हैं यादों की महफिल कार्यक्रम में।

0: रामलखन फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। मनोहर दास, अनुराधा पौडवाल और साथियों की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत।
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से।
3: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जान

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है विविध भारती पर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल और इस कार्यक्रम में आज हम याद कर रहे हैं पार्श्व गायक मनहर उदास को उनके जन्मदिन के मौके पर। सुन रहे हैं उन्हीं की आवाज में सजे कुछ गीतों को। कार्यक्रम में गीत अब आपको सुनवा रहे हैं खलनायक फिल्म से मनहर उदास के साथ अलका याग्निक और साथियों की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

मनन उदास, अलका याग्निक और साथियों की आवाजों में खलनायक फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज। कार्यक्रम यादों की महफिल में आज सुन रहे हैं मनहर उदास की आवाज से सजे गीत। आइए सुनते हैं त्रिदेव फिल्म के इस गीत में मनहर उदास और अलका याग्निक को आनंद बख्शी के बोल हैं।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आपको याद दिला दें कि रोजाना शाम 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत आप सुनते हैं अलग अलग कार्यक्रम, और आज आप सुन सकते हैं शास्त्रीय गीतों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम राग अनुराग, और हवा महल में सुनिए झलकी ना बाबा ना। रात 8 बजे से लेखन है संजय श्रीवास्तव का, निर्देशन गोविंद पारिक का। कार्यक्रम यादों की महफिल में आज पार्श्व गायक मनोहर दास के जन्मदिन पर उन पर केंद्रित गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जो उनकी आवाज में हैं। और अब आपको सुनवाते हैं जांबाज फिल्म का ये गीत मनोहर दास और साधना सरगम की आवाजें, इंदिवर के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

जाबाज फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। कल्याण जानन जी का संगीत, मनहर उदास और साधना सरगम की आवाजें इंदिवर के बोल। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं यादों की महफिल विविध भारती पर।

मनहर दास और मोहम्मद अजीज की आवाज में नाम फिल्म का गीत आपने सुना। आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीत, यादों की महफिल कार्यक्रम विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: मन रास कंचन और आनंद की आवाज में आप सुन रहे हैं कुर्बानी फिल्म का ये गीत इंदिवर के संगीत।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, और इस प्रोमो से ठीक पहले आपने कुर्बानी फिल्म का गीत सुना। कंचन मनरदास और आनंद की आवाज है, इंदिवर के बोल कल्याण जी आनंद जी का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल में आज पार्श्व गायक मनरदास के जन्मदिन पर उनकी आवाज से सजे गीतों को हम सुनवा रहे हैं, और अब सुनते हैं मनरदास, कविता कृष्णमूर्ति और सुखविंदर सिंह की आवाजों में सौदागर फिल्म का ये गीत आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। ये प्रसारण विविध भारती केंद्र मुंबई से प्रसारित किया गया। हम आपको बताते हैं कि ये प्रसारण आप उन्हें सुन पाएंगे दिन में 1:05 से। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ के अलावा भी आप हमें प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और इंटरनेट के माध्यम से देश और दुनिया में कहीं पर भी ऑल इंडिया रेडियो लाइव के जरिए सुन सकते हैं। इस समय दिन का 1:00 है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। समाचारों का प्रसारण आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से प्रसारित होगा। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दिल्ली दौरे पर हैं। उन्होंने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात कर राज्य की जल परियोजनाओं पर चर्चा की। केंद्रीय मंत्री श्री पाटिल के निवास पर हुई इस भेंट में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। इस दौरान यमुना जल समझौते सहित अन्य विषयों पर चर्चा की गई। मीडिया से बातचीत में श्री शर्मा ने कहा कि आने वाले समय में राज्य में इस परियोजना पर तेजी से काम किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी हैं। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती से योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। इधर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने भी पेट्रोल डीजल की बचत पर जोर दिया है। उन्होंने अनावश्यक वाहनों का उपयोग बंद करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या भी कम करने का निर्णय किया है। मीडिया से बातचीत में श्री शर्मा

0: ने कहा कि मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को भी वाहनों के इस्तेमाल में किफायत बरतने के निर्देश दिए गए हैं। सीबीआई टीम ने जयपुर में राजस्थान पुलिस के एसओजी की ओर से नीट पेपर लीक मामले में हिरासत में लिए गए 20 से अधिक लोगों से पूछताछ की। एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में भी सैकड़ों लोगों से पूछताछ की है। एसओजी के अनुसार कई लोगों ने कथित तौर पर पैसे लेकर गैस पेपर बेचे, जिनमें से कई प्रश्न नीट परीक्षा में पूछे गए थे। वहीं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। प्राध्यापक स्कूल शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2022 में डमी अभ्यर्थी बिठाने के मामले में राजस्थान लोक सेवा आयोग ने एफआईआर दर्ज करवाई है। इसके बाद एसओजी ने आरपीएससी के ही एक लिपिक मान सिंह मीणा को गिरफ्तार किया है। आयोग सचिव राम निवास मेहता ने बताया कि इसे करौली जिले की नादोती तहसील से गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने जयपुर के दो केंद्रों पर हुई परीक्षा डमी अभ्यर्थी से दिलवाई थी। मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान में अगले 3 दिनों तक भीषण गर्मी और लू का रेड अलर्ट जारी किया है। बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर जिलों के लिए ये चेतावनी बताते हुए विभाग ने लोगों से दोपहर के समय घरों से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है। इस बीच बाड़मेर कल लगातार 3रे दिन भी देश का सबसे गर्म शहर रहा। यहां दिन का तापमान 48.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन का अब तक का सबसे अधिक तापमान है। पलौदी, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, बीकानेर, कोटा और झुंझुनू में भी झुलसाने वाली गर्मी का असर है। राजधानी जयपुर में कल अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री मापा गया। दिनभर धूप की तपिश और लू के कारण सड़कें और बाजार सूने नजर आए। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इसके तहत प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर योग शिविर लगाए जा रहे हैं, जिनमें योगाभ्यास करवाया जा रहा है। साथ ही योग के प्रति जागरूकता फैलाई जा रही है। इसी कड़ी में पाली जिले के कोलीबाड़ा के राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय में छात्र छात्राओं को योगासन करवाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है। ये आज से प्रभावी हो गया है। सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। प्लेटिनम पर आयात शुल्क भी 6.4% से बढ़ाकर 15.4% कर दिया गया है। इसके बाद सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में ये समिति बनाई गई है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। समिति इस साल 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत रिपोर्ट पेश करेगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी नागौर के चिमी चैनल से। इस समय दिन का 1:05 हुआ है। चलिए वापस चलते हैं विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों की तरफ।
2: युवावाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 01582-240-168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युवावाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने।

0: कभी तो हंसाए कभी ये रुला।
1: मन्ना डे की आवाज में आनंद फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और हमारे बहुत से साथियों ने इस गीत के बारे में सोचा था कि ये गीत तो जरूर शामिल होगा, तो बिल्कुल सही बात तो है क्योंकि एक टेक्स्ट का जो पहला अक्षर इस तरह से आए तो लगता है कि ये तो होना ही। लेकिन एक पहेली जो हमारे साथियों के मन में बनी हुई है, ये हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मुझे तो कार्यक्रम को समझ में नहीं आ रहा, लगता है कि पोस्ट कब आती है पता नहीं चलता, तो लगता है कि कार्यक्रम के प्रसारण में कुछ परेशानी हो रही है या समझौता हो रहा है। तो हम इन्हें कहना चाहते हैं कि क्योंकि शुरुआती दौर में एक घंटे का जो अंतराल रहा करता था कार्यक्रम की पोस्ट और कार्यक्रम में, तो उस वक्त हमारे कई श्रोताओं ने कहा कि इतनी जल्दी टेक्स्ट में से शब्द खोजना या गीत सोचना थोड़ा मुश्किल होता है। तो बस इस असुविधा की सुविधा के लिए, असुविधा को सुविधा बनाने के लिए ही कार्यक्रम का टेक्स्ट जो है वो रात में आ जाता है, ताकि आपको एक लंबा समय मिले ये सोचने के लिए कि कौन कौन से शब्द शामिल हो सकते हैं, और आप अपनी पसंद के गीतों की लिस्ट भी हम तक पहुँचा सकते हैं पोस्ट पर कमेंट के जरिए। और जिस तरह से इन्होंने ये बात लिखी, हमारे दूसरे श्रोताओं ने तो ये भी कहा है कि भाई ये बहुत अच्छा लग रहा है उन्हें कि रात में ही पोस्ट आ जाती है। वो कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूं कि आप रात्रि को ही कार्यक्रम की पोस्ट डाल देते हो, और उन्होंने जो साथ में इमोजीज डाली हैं उससे समझ में आ रहा है कि उन्हें इस बात से खुशी है। वहीं हमारे एक और साथी ने भी कहा कि पिछले जो रात में पोस्ट आती है उससे उन्हें काफी सुविधा हो जाती है, ताकि वो अपने जो भी बातें लिखनी है करनी है उसके लिए उन्हें एक पर्याप्त समय मिल जाता है। तो बस इस तरह से अलग अलग बातें होती हैं, अलग अलग बातें के साथ साथ अलग अलग विचार भी होते हैं। हमारी एक और साथी कह रहे कि इतनी जल्दी इबारत को हम श्रोतागण को शेयर करना कुछ कुछ सरल सा दिखता है, धन्यवाद विविध भारती परिवार। तो एक ही चीजों के दो अलग अलग पहलू देखने मिलते हैं हमें जीवन में भी, तो आप किस तरह का पहलू देखते हैं अपने जीवन में? और हमने पूछा था कि जीवन में अगर कोई मुश्किलें आ जाए तो आप उन्हें कैसे सुलझाते हैं, क्या आप उस मुश्किल को लेकर थोड़ी और मुश्किल में पड़ जाते हैं, या गाते झूमते नाचते अपनी उस मुश्किल से पार हो जाते हैं अपने विचारों के जरिए? हमें बताइए। और तब तक हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अगला गीत। उम्मीद है कि ये गीत भी शायद आपके लिस्ट में शामिल किसी एक गीत से मिलता हो।

महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजों में आंचल फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं सुरीला सफर विविध भारती पर, और हमारे टेक्स्ट और इबारत को देखकर हमारे कुछ साथियों ने शब्द चुने हैं कि कौन से शब्द हो सकते हैं जिनके गीत आज इस कार्यक्रम में हो। हमारे एक साथी ने लिखा सवाल पाया, हालांकि उनके साथ गाने भी लिखे हैं लेकिन हम सिर्फ शब्द पढ़ रहे हैं। सवाल पाया कहां, जवाब महका, गाता झूमती, सपना रचना, जाने कहानी, सहारा बेसहारा, जीता हारा, ये शब्द हो सकते हैं आज के इस कार्यक्रम में जिनके जिनसे संबंधित गीत हम सुनवाने वाले हैं, ऐसा इनका अनुमान है। हमारे कौर साथी कह रहे कि कुछ शब्द हैं जिंदगी, पहेली, कोई, समझ, सवाल जवाब, ख्याल, जीना, सहारा, अनजानी, बहती, झूमती, गाती जैसी संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेषण परक शब्दों की ही भरमार नहीं अपितु संबोधन परक शब्द भी हैं, और इनसे बनने वाले गीत भी इस क्रम में शामिल हो सकते हैं। हमारे एक और साथी ने कहा कि भाई आज गाने नहीं लिख रहे हैं क्योंकि बहुत सी कॉमन गाने बचते हैं जो लगभग सबने लिखे हुए होते हैं, मैं थोड़े अलग यानी रेयर गाने पोस्ट करती हूँ जिसका लिस्ट में होना असंभव ही है, तो इसलिए वो गाने पर कमेंट नहीं करी। भाई ये तो क्या बात हुई, हो सकता है कि आपके वो रेयर गीत ही हम चलाना चाह रहे हों, ऐसा थोड़ा हो नहीं सकता। भाई इस तरह से आप अगर कहें कि हम तो इसमें भाग नहीं ले रहे तो ये तो जरा अच्छी बात नहीं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज के शब्दों की सूची कुछ इस तरह से हो सकती है जिंदगी, पहेली, सवाल जवाब, मुश्किल, ख्याल, महका, मन, नदी धारा, उलझन, गाती झूमती, रचना या रचती, अफसाने, हकीकत, सपना, कहानी, अनजानी, जानी पहचानी, सहारा बेसहारा, जीत हार। तो एक तरह से इन्होंने इबारत में से सारे शब्द उठा लिए हैं, तो इनकी बात तो सच होने वाली है क्योंकि बहुत सारे शब्द इन्होंने चुन लिए हैं एक साथ। तो हमारे एक और साथी हैं, उन्होंने बहुत सारे गीत भी लिख भेजे हैं और जिंदगी से संबंधित अपने विचार भी हमारे साथी हम तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन आज की इबारत में जैसे कहा गया कि ये जीवन जैसे सपनों की कहानी, तो हमें ये बताइए कि आपको आपके सपने याद रहते हैं? क्योंकि कई बार सपनों में एक अलग सी कहानी चलती रहती है, हम अलग जगह यात्रा करते रहते हैं, कई बार तो कोई सस्पेंस थ्रिलर फिल्म भी चल रही होती है ऐसा लगता है। तो क्या आपने कभी अपने सपनों में कुछ ऐसी कहानी देखी है जो आपके जीवन में कभी नहीं हो सकती, जिंदगी से बिल्कुल अलग एक ऐसी जिंदगी आपने सपनों में जी हो? तो बताइए उसके बारे में, कोई ऐसा सपना जो आपने देखा हो और आपको अब तक याद हो बहुत दिन बीतने के बाद भी। और क्योंकि हमने ये सवाल कर लिया है तो एक सवाल से संबंधित गीत आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म का नाम आपको बताना है।

0: साइलेंस।
1: वो तो है स्कूल का टीचर हरदम जो चिल्लाए।
0: क्यों बच्चों, ठीक है ना?
2: नो सर, नो सर, रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर।
0: क्या कहा?

0: हो तो एक रंगीन फिल्म है जिसकी हुई है जुबली, करेक्ट?
1: नो सर, नो सर, रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर।
0: अच्छा, ये भी गलत?
2: जी हाँ।

0: तुम सब जानो इस दुनिया का हाल। अब ना करो सवाल बच्चों, अब ना करो सवाल।
1: नर्तकी फिल्म का ये गीत आपने सुना और ये सवाल हमारा था आपसे, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे साथी इस बात को लेकर काफी सोच विचार में है कि कब आती है पोस्ट। किसी का कहना है कि कहा जाए उसमें एक वीडियो पोस्ट किया जाए, पर हमें तो लगता है कि इबारत पढ़ना और उसमें से शब्द चुनना ज्यादा आसान है, क्योंकि वीडियो सुन सुनकर आप को लगातार वीडियो सुनना पड़ेगा हर शब्द को पहचानने के लिए। खैर, ये पहेली तो हम आप पर ही छोड़ते हैं कि किस तरह से क्या होना चाहिए, लेकिन हमने सवाल आपसे पूछा था कि भाई कोई सपना ऐसा आपको आया है जो अब तक आपको याद हो, कितने दिन बीत गए हो और फिर भी वो सपना याद हो, उस सपने में कोई ऐसी कहानी हो जो आपने जिंदगी में कभी सोची ही ना हो। हो सकता है कोई फिल्म देखकर आप सोए हों और वो सपना आया हो। हमारे एक और साथी कहती हैं कि भाई जिंदगी पर अनगिनत गीत हैं जो मन को सिर्फ छूते नहीं बल्कि बहुत कुछ सिखा जाते हैं, और हर लाइन उसमें ऐसी होती है कि कुछ ना कुछ सीख देती है। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि जिंदगी एक समंदर है जिसमें सुख दुख की लहरें तो आती जाती रहेंगी। और हमारे साथी हैं, वो बहुत सी बातें कह रहे हैं। हमारे एक साथी का कहना है कि भाई शब्द नहीं गीत लिखकर पोस्ट कीजिए। तो मेरा ये सोचना है कि शायद उन्होंने श्रोताओं के कमेंट पर ही ये कमेंट किया है। हमारे एक और साथी कहते हैं कि जिंदगी एक पहेली है, नदियों की धार जैसी बहती रहती है, मुश्किलों को पार करती हुई निरंतर बढ़ती जाती है। आगे उन्होंने ढेर सारे गीत लिखे हैं जो उनकी लिस्ट और हमारी लिस्ट मैच होती है या नहीं वो ये देखेंगे खुद से। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हर मुसीबत एक सबक लेकर आती है, मुसीबत में अनुभव से जीवन में सीखने को मिलता है, मुश्किल समय में धन का अभाव स्थिति

को और कठिन बना देता है, इसलिए बचत और योजनाबद्ध तरीके से खर्च करना जरूरी है। ये बात उन्होंने लिखी है जब हमने पूछा था कि भाई अगर मुश्किल वक्त आता है तो किस तरह से आप उससे बाहर निकलते हैं। हमारे एक और साथी कहते हैं कि फिल्म के बारे में वो लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कभी कभी परेशान जब होती हूँ तो कुछ भी जिंदगी में थोड़े वक्त ठीक नहीं होते तो गाना सुनकर मन को शांति और कुछ रास्ता भी मिल जाता है। वहीं हमारे एक और साथी का कहना है कि जिंदगी की मुश्किल पहेली सुलझानी हो तो संयम के साथ निरीक्षण करना चाहिए, फिर सोच समझ कर आचरण करना चाहिए। वैसे तो जन्म, बुद्धिमत्ता और भाग्य ईश्वर की देन है, फिर भी कठिन स्थिति में मेहनत के साथ प्रयत्न करना हमारे हाथ में होता है। और एक और साथी कहते हैं, जब मैं मुसीबत में होता हूँ तब शब्द कम पड़ जाते हैं तो मैं पुराने दौर के संगीत में अपनी सांत्वना ढूंढता हूँ। कुंदनलाल सहगल की आवाज या शंकर जयकिशन की धुनों में एक ऐसा ठहराव है जो मेरे घावों पर मरहम जैसा काम करता है। तो भाई जब संगीत इतना अच्छा काम करता है तो क्यों ना सवाल जवाब बनकर आपसे पूछते हैं, नहीं है कुछ भी, पूछते हैं एक सवाल कि किस फिल्म का है ये गीत जो आपको सुनवा रहे हैं।

भाई, तो हमारा सवाल तो ये था कि किस फिल्म का है ये गीत? ससुराल फिल्म का ये गीत है। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया और आपके भी कुछ सवाल हम तक पहुंच गए हैं। वैसे हमारे साथी ने कहा कि इस गाने के मामले में तो हमारी पसंद आपसे जा मिली, और बहुत से साथियों की पसंद इस गाने के जरिए हम तक पहुंच गई और हमारी और उनकी लिस्ट भी मिल गई। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मेरे सारे स्वप्ने दीवा स्वप्न की तरह निकलते हैं, अर्थात चर्चा अव्यर्थ प्रतीत होती है। हमारे एक और साथी ने बताया कि जीवन में एक बार उन्हें सपना आया था जब वो स्टेज पे गीत गा रहे हैं, फिल्म पड़ोस

का कहना है कहना है, और ये गीत उन्होंने पूरा का पूरा स्टेज पर गा दिया। ये सपना आज तक नहीं भूले, शायद ये मेरे संगीत के प्रति दीवानगी, क्योंकि गाने का मुझे बहुत ज्यादा शौक है। ये इन्होंने कहा। हमारे गौर साथी कह रहे हैं कि आपकी पोस्ट अभी बढ़िया डली, जो बदलाव किया है अच्छा है। और हमारे और साथी हैं वो कह रहे हैं पोस्ट ही करना उचित है वीडियो की जगह। हमारे एक और साथी कह रहे हैं जिंदगी को लेकर बहुत सी बातें हमारे साथी कहने लगे हैं। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जिंदगी एक पहेली, जिंदगी एक सवाल, जवाब मुश्किल, ख्याल महका, जिंदगी नदी धारा बहती गाती झूमती, अफसाने हकीकत। इस तरह से इन्होंने इबारत में से काफी सारे शब्द चुन लिए हैं, और हमें तो पूरा भरोसा है कि इनके शब्द तो कहीं ना कहीं जाकर हमारे लिस्ट से मिल जाएंगे। हमारे बहुत से साथियों ने गीत भी लिख भेजे हैं, और उनके गीत जब हमारी लिस्ट के गीतों से मिलते हैं तो जो खुशी उन्हें होती है उतनी ही खुशी हमें भी होती है। तो चलिए अब कार्यक्रम में आगे अगर हम चलें और दूसरा गीत सुनें, तो हमारे साथी कौन से गीतों की फरमाइश कर सकते हैं और कौन से गीत उन्हें लगते हैं कि आ सकते हैं। वहीं हमारे एक साथी ने ये भी कहा कि मेरा सपना तो मैं बहुत देखती हूँ, अलग अलग तरह के होते हैं। कभी मैं किसी को बचा रही हूँ, डाकू से बचा रही हूँ। मैंने एक सपना देखा कि एक लड़के को, जब वो शादी में गया था वहां उसे देखा। सपने पूरे भी होते हैं कभी कभी, ऐसा इनका कहना है। भाई हमें तो ये अच्छा लग रहा है कि वो एक हीरो का किरदार निभा रही है अपने सपनों में। किसी डाकू का किरदार भी कई बार हम निभाते हैं अपने सपनों में। तो ऐसा कोई खतरनाक सपना आपको कभी आया है तो हमें बताइए अपने सपनों की कहानी। तब तक हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे सफर में जहां आपको नदिया और धारा की ये बात सुनने मिलेगी। और हमें बताइए कि किसने इस गीत को लिखा है और आवाज किसकी है।

सफर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, मन्ना डे की आवाज और साथ ही भी उनके साथ साथ में इंदिवर के बोल। ये हमारे सवाल का सही जवाब है। हमारे एक साथी पूछ रहे हैं कि भाई ओरिजिनल पेज कौन सा है, और वो ये पूछ रहे हैं ओरिजिनल पेज के पोस्ट के कमेंट में। तो हम उन्हें बता दें, जो भी और भी व्यक्ति जो जानना चाहते हैं, विविध भारती राष्ट्रीय सेवा हिंदी में लिखा हुआ है देवनागरी में, और साथ ही उसमें एक ब्लू टिक भी बना हुआ है। और अगर आपको और ज्यादा जानना हो तो आप देख सकते हैं फॉलोअर 100K लिखे हैं, यानी 1 लाख फॉलोअर हैं, 1 लाख हमारे श्रोता हैं जो इसमें हमारे साथ शामिल हैं। तो इस पेज को जब आप देखेंगे तो इसमें जो भी पोस्ट आती हैं वो विविध भारती की तरफ से आधिकारिक रूप से पोस्ट आती हैं। तो बस ये देखिए कि विविध भारती राष्ट्रीय सेवा हिंदी में लिखा हो, साथ ही उसमें एक ब्लू टिक शायद में बना रहता है, वो बना होगा फेसबुक पर www.facebook.com/vbsmumbai। इस पते पर जाकर आपको ये पेज मिल जाएगा। और हमारे साथी कह रहे हैं बेसहारा और सहारा शब्द पर मेरी पसंद का गाना, उन्होंने बता दिया है गाना है तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो। सपने के बारे में हमारे एक साथी ने बताया कि एक रात अचानक 3 बजे नींद खुली, उसका कारण ऐसा सपना था कि फाइनल ईयर के एग्जाम में इंग्लिश का पेपर है, रिविजन करें। थोड़ी देर बाद जब नॉर्मल हुए तो पता चला सारे एग्जाम पास करके रिटायर हो गए, तब जाकर नींद में चले गए। तो साथियों बुढ़ापे में भी जवानी के सपने याद आते हैं, ऐसा इन्होंने लिखा। हमारे साथियों ने बहुत सी बातें लिखी। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि 25-30 साल पहले एक सपना उन्होंने देखा था जो आज भी याद आता है तो रूह कांप जाती है। अलग कमरे में मैं सो रही थी और माँ अलग कमरे में, मैंने सपने में देखा कि मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई बहुत दूर। नींद में ही रोने लगी और सपना टूट गया, दौड़कर जब माँ के रूम में गई तो माँ से लिपट कर बहुत रोई। हमारे एक और साथी ने बताया 1987 का सपना, कि सपने में रात में उन्होंने देखा कि एक मानव आकृति आसमान में विचरण कर रही है। अगले सारे दिन उस सपने के बारे में सोचता रहा और रात को हमें एक दुखद समाचार मिला कि पिताजी नहीं रहे। हमारे एक और साथी हैं, बहुत सी बातें हमारे साथी लिख रहे हैं। नदियां चले चले रे धारा, कितना गहरी फिलॉसफी इसमें छुपी है। ये गीत भी मेरे कयास से सही निकला, एक नाव वाला गा रहा है, पर्दे पर राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर नदी के किनारे बैठकर भूंजा खा रहे हैं, मन्ना डे की आवाज है। हमारे साथियों ने बहुत सी बातें लिख भेजी हैं अपने जीवन के बारे में, अपने सपनों के बारे में और भी बहुत सी बातें। हमें ये बताइए कि कभी ऐसा हुआ कि आप अपने शहर से दूर आ गए हों और आपको लग रहा हो कि कितना मुश्किल है जीवन यहाँ। कुछ ऐसा गीत भी आने वाला है, वो गीत भी आप सोच सकते हैं कि कौन सा गीत होगा जो दूसरे शहर की, किसी शहर की मुश्किलों के बारे में बताता है। तब तक हम आपको अनुराधा फिल्म से ये गीत सुनवा रहे हैं, हमें बताइए किसने इसे लिखा।

लता मंगेशकर की आवाज में अनुराधा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। शैलेंद्र के बोल, रविशंकर का संगीत। तो गीतकार का नाम आपने बिल्कुल सही पहचाना। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मुझे तो दांत टूटने का सपना बहुत बार आता है। अभी 2 दिन पहले भी आया था। नींद खुलने पर सबसे पहले दांतों की तरफ ही ध्यान जाता है। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मुझे सपने तो रोज आते हैं, लेकिन सुबह उठने के बाद कुछ याद नहीं रहता। ऐसा लगता है कि सुबह पड़े हुए सपने अक्सर सच होते हैं। हमारी एक और साथी कहती हैं कि पहले तो मुझे सपने बहुत आते थे और नींद खुलने के बाद फिर से आकर लेटती थी तो फिर वो सपने वापस में कंटिन्यू होते थे। इंस्टॉलमेंट के सपने उन दिनों बड़ा मजा आता था देखने में। भाई इस जगह आपकी और हमारी लिस्ट मिलती है। हम कह सकते हैं कि इंस्टॉलमेंट में जब सपना देखते हैं ना, कि जब बीच में नींद खुल जाए तो ऐसा लगता है इतना अच्छा सपना चला था, चलो वापस सोकर इसे फिर से देखा जाए और पूरा किया जाए। तो कहीं ना कहीं वहां हमारा दिमाग भी लग जाता है और किसी तरह से बड़ा आनंद तो आता है उस सपने को पूरा करने में। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि अपने शहर से दूर जीवन एक नई किताब जैसा होता है, जहां यादों की खुशबू साथ रहती है पर अपनों की कमी अक्सर खलती है। नई जगहें, नए लोग, नई जिम्मेदारियां इंसान को मजबूत तो बनाती हैं, लेकिन अपने शहर की गलियां, दोस्त और अपनापन दिल में हमेशा बसे रहते हैं। हमने ये पूछा था कि किसी दूसरे शहर में जाकर कुछ मुश्किलें आपके सामने आई क्या, कि इस शहर में रहना कितना मुश्किल है। और ऐसा ही गीत हमने आपको पहचानने के लिए कहा था, क्योंकि मुश्किल शब्द हमारी आज की इबारत में है। तो आपने बिल्कुल सही पहचाना, सीआईडी फिल्म का वो गीत ही हम आपको सुनवाने वाले हैं। हमें बताइए किनकी आवाजें हैं इस गीत में।

0: मेरी जान।
1: सीआईडी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफी और गीता दत्त की आवाजें। आपने बिल्कुल सही पहचाना। हमारे एक साथी कहने कि सपना तो हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा के दिनों में आया था, जिसे याद करके आज भी हंसी आती है। पहले दिन सपने में देखा कि परीक्षा भवन में बैठा हूँ पर पेपर बटे नहीं है, और दूसरे दिन सपना आया कि पेपर देकर बाहर निकल रहा हूँ। पेपर में सवाल क्या थे वो दिखाई ही नहीं दिए। भाई हम तो ये कहेंगे कि ये सवाल और जो ये बीच का समय होता है ना, वही काटना तो मुश्किल होता है। अब सपने में भी अगर हम ये सब देखेंगे तो भाई वो तो हकीकत में भी नहीं देखना चाहते। ऐसा लगता है बस किसी तरह से अंदर जाएं और परीक्षा भवन में बैठे और बस बाहर आए, बीच का जो समय है किसी तरह से यूं ही कट जाए। और आपने बिल्कुल सही तरह से सपना देखा है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आपने पूछा है तो बता रहा हूं, 1995 में हाई स्कूल पास करके पारिवारिक कारणों से बंबई से दिल्ली आ गया। 4-5 साल तक कुछ भी अच्छा नहीं लगता था यहां, बल्कि 2 बार भागकर वापस बंबई गया। रिश्तेदारों का व्यवहार, वक्त और हालात ने ऐसा सबक सिखाया कि 30 सालों से दिल्ली में हूं लेकिन बंबई की तरफ पैर करके भी नहीं सोता। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे कि गंगटोक भ्रमण के दौरान नाथुला जो चीन की सीमा पर है, वहां ऑक्सीजन कम होने के कारण डर लगा था क्योंकि सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी। तो इस तरह से जो मुश्किल वक्त के बारे में हमने पूछा वो हमारे साथियों ने बताया। हमारे एक और साथी कहती हैं कि जब मुसीबत में हो तब कैसे निकले, तो मैं थोड़ा चुप रहना चाहती हूँ, बहुत कम लोगों से बात करना चाहती हूँ, और जो मेरे मन को अच्छा लगता है प्रभु का नाम, बस उन्हें याद करती हूँ। बीच रात में मुझे नींद नहीं आ रही थी, कोई बात परेशान कर रही थी, तो रात में बैठकर मंत्र उच्चारण करती हूँ, कोई गिनती नहीं करती हूँ। बहुत बार मन को सुकून के साथ साथ उस समस्या का समाधान भी निकल जाता है। वहीं हमारे बहुत से साथी हैं जो ये बता रहे हैं कि उनकी जो लिस्ट है वो हमारी लिस्ट से काफी हद तक मिल गई है। बहुत सारे गीत जो उन्होंने सोचे थे और लिखे थे कमेंट में, वो आज के इस कार्यक्रम में शामिल हो गए। तो यकीन मानिए हमें तो बहुत ही आनंद आ रहा है कि आपकी और हमारी लिस्ट मिल गई है। तो अब एक ऐसा गीत जिसके जो तो लिस्ट में बहुत देर से हम देख रहे हैं कि बहुत से साथियों की लिस्ट में शामिल है, और ये हमारे गीत हमारी लिस्ट में भी काफी देर से शामिल था। तो चलिए ये गीत सुन लेते हैं और आपको बताना है फिल्म का नाम।

अनुरोध फिल्म का ये गीत आपने सुना। मन्ना डे और साथियों की आवाज़ें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। हमारे बहुत से साथियों ने इस फिल्म का नाम बिल्कुल सही बताया, क्योंकि हमारा यही सवाल था। हमारे एक साथी ने कहा कि आमतौर पर सपनों में वही आता है जो हमारे दिमाग में रहता है, और हम सोचते हैं कुछ ऐसी जगह जहां हम जाना चाहते हैं। कभी कभार ही ऐसा होता है कि जो नहीं सोचा जाता वो सपनों में आ जाए, लेकिन ये कभी कभार ही होता है। और हमारे बहुत से साथी हैं जिन्होंने अपने सपनों के बारे में बताया कि क्या क्या देखते हैं। तो आधे से ज्यादा साथी तो स्कूल के दिनों को ही देखते हैं, खासतौर से परीक्षा का समय, और वो भी ऐसा कि अगर वो परीक्षा दे रहे हैं तो टीचर ने कॉपी छीन ली, या कुछ लिख नहीं पाए, या फिर सब चीजें ठीक नहीं हुई। भाई ये जो एक भय है मन में, वो सालों साल बसा हुआ है ऐसा लगता है, क्योंकि वो जो भी हमारे साथी लिख रहे हैं कि जो देखते हैं ये वाला सपना, वो कब से अपने स्कूली जीवन को पार कर चुके हैं और वो पढ़ चुके हैं, पढ़ाई वढ़ाई सब हो चुकी है, कई तो रिटायर भी हो गए अपना काम करके, लेकिन ये जो सपने का जो है ना कि भाई नहीं परीक्षा दे रहे थे परीक्षा नहीं हुई, वो अब भी जारी है। हमारे बहुत से साथी बहुत खुश हैं और हम भी उनसे ज्यादा खुश हैं कि उनके गाने आज के लिस्ट में शामिल हो गए। तो एक और गाना चलिए जांच लेते हैं, क्या आपके लिस्ट में ये गाना था। फिल्म का नाम अगर बताएं तो बहुत अच्छा होगा।

सम्राट चंद्रगुप्त फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम ही हमने आपसे पूछा था और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। जब बात हो रही है जिंदगी की मुश्किलों की और सपनों की, तो एक गीत हमें बिल्कुल अच्छा लगता है, क्योंकि वो गीत हमें किसी तरह से ये समझाता है कि जीवन को जीना ही है और जीवन को किस तरह से जीना चाहिए। ये गीत आपको सुनवा रहे हैं और आप हमें ये बताइए कि किस फिल्म का ये गीत है, आवाज किसकी है।

मेरा नाम जोकर फिल्म का ये गीत मुकेश की आवाज में आपने सुना। यही हमारे सवाल का सही जवाब था और इसके साथ ही आज का सुरीला सफर कार्यक्रम यही समाप्त होता है। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

0: साथियों, इन दिनों हमारे देश के अधिकांश भागों में गर्मी अपने रौद्र रूप में है। सूरज निकलते ही शोले उगलना शुरू कर देता है। गर्मी से लोग बेहाल हैं। लोग दिन को बड़ी मुश्किल से काट रहे हैं। उन्हें शाम और रात का बेसब्री से इंतजार रहता है। गर्मी से बचाव का हर उपाय बेकार जान पड़ता है। लेकिन जिंदगी रुकती कहाँ है? इस भीषण गर्मी में भी लोग सफर कर रहे हैं और मजदूर चट्टाने तोड़ रहे हैं। मौसम की ये दुश्वारियां हजारों वर्षों से मनुष्य और जीव जंतुओं के साथ चल रही है। कोई भी परेशानी स्थायी नहीं होती। इसी गर्मी से एक दिन समंदरों का पानी बादल बनकर बरसेगा, बीज उगेंगे, उत्सव मनेंगे और इसी सूरज की तपन से फल मीठे होंगे।
1: सूरज जरा आ पास आ, आज

जिंदगी में परेशानियों और चीजों को देखने का नजरिया हर इंसान का कितना अलग अलग हो सकता है, यह हम आसानी से अनुमान नहीं लगा सकते। जिस तपते हुए लू के महीने से लोग इतने बेहाल रहते हैं, उसी महीने को एक शायर कितनी खूबसूरत मिसाल देता है, ये बेहद ठंडक देने वाली बात है। क्या रूपक है, सुनिए जरा।

ये तपन मनुष्य और प्राणी जगत की परीक्षा लेती है। यह हमें विकट परिस्थितियों से जूझने के लिए तैयार करती है। तभी तो इस सर्वाधिक कठिन मौसम में पेड़ों में नई कोमल पत्तियां निकलती हैं, गुलमोहर सजता है, मोगरा महकता है। और गर्मियों में ये जो हमारे शरीर से पसीना बहता है ना, ये मनुष्य की मेहनत और स्वाभिमान से जीने का प्रतीक है। इसीलिए तो ईमानदारी और मेहनत से कमाए धन को खून पसीने की कमाई कहा जाता है।

0: मेहनत सारी, सेठ भी अंदर माल भी अंदर दोनों ना बच पाएंगे, जैसे सेठ बड़ा है वैसे सारे मारे जाएंगे,
1: सारे मारे जाएंगे, सारे मारे जाएंगे।
0: अरे इसीलिए तो कहता हूँ प्यारो के खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे।

0: सारी अकड़ वो टूटी सारी, तो जालिम अंदर जोश भी अंदर होश ठिकाने आएंगे, जैसे मारा गया वो जालिम सारे मारे जाएंगे,
1: सारे मारे जाएंगे, सारे मारे जाएंगे।
0: अरे इसीलिए तो कहता हूँ प्यारो के खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो यारो हम भूखे ही सो जाएंगे।
2: तो साथियों, अब आज का त्रिवेणी कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड पांचवीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। सीबीएसई ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने और चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवगठित सरकार ने 144 विधायकों का बहुमत साबित कर विश्वास मत हासिल कर लिया है। एडप्पाडी पलनीसामी के नेतृत्व में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 22 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। एक रिपोर्ट।
1: लोक निवास में आयोजित एक सादे समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने मुख्यमंत्री और आज शपथ लेने वाले दो मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पहले मुख्य सचिव शरद चौहान ने केंद्र सरकार की उस अधिसूचना को पढ़कर सुनाया जिसमें मुख्यमंत्री और दो मंत्रियों की नियुक्ति की गई थी। समारोह के बाद श्री रंगासामी पुदुचेरी विधानसभा भवन स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय गए और अपना कार्यभार संभाला। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार पुदुचेरी को सिंगापुर की तर्ज पर विकसित करने की दिशा में काम करेगी। श्री रंगासामी के नेतृत्व में लगातार दूसरी बार प्रदेश में एनडीए की सरकार बनी है। अन्य मंत्रियों

0: विभागों और विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष तथा सरकारी सचेतक की नियुक्ति को लेकर एनडीए में विचार विमर्श जारी है। बिपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
1: ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड पांचवीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पश्चिम बंगाल में कोलकाता में 18वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट से विधायक के रूप में शपथ ली, जबकि नंदीग्राम सीट रिक्त रखी गई है। इसके बाद मंत्रिमंडल के 5 अन्य सदस्यों ने भी शपथ ग्रहण की। वहीं नौदा सीट से विजयी आम जनता उन्नयन पार्टी के विधायक हुमायूं कबीर ने भी शपथ ली। कबीर ने रजीनगर सीट से भी जीत हासिल की है। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस राय ने सभी विधायकों को शपथ दिलाई। राज्य में फालता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को पुनर्मतदान होना है। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज कर दिए हैं। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह SPG प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। एक रिपोर्ट।
2: ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। सूत्रों के अनुसार काफिले का आकार कम करने के बावजूद प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाएं यथावत बनी रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां भी संभव हो बिना कोई नई खरीद किए उनके काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल किया जाए। अंकित की रिपोर्ट के साथ अमीषा।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करके और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को अपनाकर आर्थिक स्थिरता में योगदान देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नागरिकों से की गई 7 अपीलों के अनुरूप है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। एक रिपोर्ट।
3: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों, अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया है और सरकारी काफिले से अनावश्यक वाहनों को हटाने का निर्देश दिया है। उन्होंने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने, अनावश्यक सोने की खरीद से बचने और घर से काम करने को बढ़ावा देने की अपील भी की। राज्य सरकार ने मेट्रो सेवाओं और सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग पर बल दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। श्री यादव ने मंत्रिपरिषद के सदस्यों से राष्ट्रीय हित में पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कारपूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो तथा बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी राज्य में पेट्रोल और डीजल की बचत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने जनता से वाहनों का अनावश्यक उपयोग न करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम करने का निर्णय लिया है और मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को वाहनों के उपयोग में संयम बरतने के निर्देश दिए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट, डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। इस वर्ष CBSE की कक्षा 12वीं की विज्ञान, वाणिज्य और मानविकीय विषयों की परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक आयोजित की गई थी। CBSE ने एक बयान में बताया कि 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से 15,07,000 से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इस वर्ष का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 85.20% है। छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.86% है, जबकि छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 82.13% है। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। विदेश मंत्री ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेज मैककेना से मुलाकात की। एक रिपोर्ट।
4: श्री फ्रांसिस्को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की कल से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए

0: भारत आए हैं। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल प्रमुख भाग लेंगे। श्री फ्रांसिस्को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी करेंगे। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के लेख को साझा किया है, जिसमें बताया गया है कि पंजाब में आधुनिक रेलवे स्टेशन और बेहतर रेलवे नेटवर्क से प्रगति के नए द्वार खुल रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परिवर्तन क्षेत्र के लोगों के लिए अनेक अवसर लेकर आ रहा है। उन्होंने कहा कि ये लेख दर्शाता है कि पंजाब में किस प्रकार बदलाव आ रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 16वीं पेंशन अदालत का शुभारंभ किया। देश भर के पेंशन भोगियों ने इसमें हाइब्रिड मोड के माध्यम से भाग लिया। इन अदालतों का उद्देश्य पेंशन संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए मौके पर भी निर्णायक समाधान प्रदान करना है, जिसमें पेंशन भोगियों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता न पड़े, उनका समय और धन दोनों की बचत हो और उन्हें एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र प्राप्त हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने वांछित भगोड़े प्रदीप सिंह को अजरबैजान से सफलतापूर्वक भारत प्रत्यर्पित करा लिया है। सीबीआई ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के समन्वय से यह कार्य किया। सीबीआई ने बताया कि नई दिल्ली के विशेष प्रकोष्ठ पुलिस स्टेशन में मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ एनडीपीएस अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज एक मामले में प्रदीप वांछित था। इस मामले में बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किए गए और कई सह आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। नीट यूजी परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम ने केवल नीति निर्माण के बजाय अंतर्राज्यीय समन्वय, सुगम सामाजिक सुरक्षा और श्रम कानूनों के सुदृढ़ कार्यान्वयन जैसे प्रणालीगत सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया। वे प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा, सरकार और निजी क्षेत्र की साझा जिम्मेदारी विषय पर आयोजित आयोग की बैठक को संबोधित कर रहे थे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित वाइब्रेंट ग्राम प्रोग्राम 2026 के लिए माय भारत प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय स्तर की प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। मंत्रालय ने बताया कि इस महीने की 20 तारीख तक आयोजित होने वाली ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में देश भर के युवा भाग ले सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के वायदा बाजार में जून अनुबंध के अंतर्गत सोना लगभग 6% बढ़कर 1,62,597 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि जुलाई अनुबंध के अंतर्गत चांदी लगभग 6.4% बढ़कर 2,96,821 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दिन के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में 8% तक की वृद्धि दर्ज की गई। सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% बढ़ाकर 15% कर दिया है। घरेलू शेयर बाजार के आज दोपहर के कारोबार में 0.5% की वृद्धि देखने को मिली। सेंसेक्स 403 अंक बढ़कर 74,962 जबकि निफ्टी 146 अंक की वृद्धि के साथ 23,526 पर था। भारत में इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन जल्दी हो सकता है। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मॉनसून आ जाएगा। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून आमतौर पर हर साल 1 जून के आसपास केरल में शुरू होता है। विभाग ने देश के पूर्वोत्तर तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि हो सकती है। दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पंजाब में भी आज बिजली चमकने और तेज

0: हवाओं के साथ वर्षा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों ने देश के अडिग संकल्प को प्रदर्शित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री फखरुद्दीन अली अहमद देश के पांचवें राष्ट्रपति थे। उन्होंने 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक पदभार संभाला। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। उधर बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने चीनी ताइपे के तुंग स्यू टोंग को सीधे सेट में 21-9 21-12 से सिर्फ 33 मिनट में हरा दिया। छठी वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु का क्वार्टर फाइनल में मुकाबला डेनमार्क के अमाली शुल से होगा। वहीं पूर्व विश्व चैंपियन किदाम्बी श्रीकांत ने सिंगापुर के लो केन यू को आसानी से 21-14 21-15 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। अगले दौर में उनका सामना चीनी ताइपे की सू ली योंग से होगा। हालांकि भारत के आयुष शेट्टी जापान के कोदाई नाराउका से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में कोरिया की सेंगमिन ली को 5-0 से हराकर लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। अन्य चार मुक्केबाजों को कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। सीबीएसई ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने या चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।
2: कोई

आशा भोसले की आवाज में लाजवंती फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन की तर्ज। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

चलती का नाम गाड़ी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नक में आप सुन रहे हैं विविध भारती पर। आइए अब सुनते हैं आशा भोसले को मजरूह सुल्तानपुरी के शब्दों के साथ, मदन मोहन की तर्ज फिल्म आखिरी दांव। सुनते हैं ये गीत।

आखिरी दांव फिल्म के इस गीत में आपने सुना आशा भोसले को मजरूह सुल्तानपुरी के बोल मदन मोहन का संगीत। आपको याद दिला दें कि शाम 4 बजे सखी सहेली के ठीक बाद आप सुन सकते हैं आज के मेहमान कार्यक्रम, जिसमें आज शायर और सेवानिवृत्त केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत आप सुन पाएंगे। और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर।

गीता दत्त की आवाज में आप सुन रहे थे आवड़ा ब्रिज फिल्म का ये गीत, कमर जलालाबादी के बोल ओपी नैयर का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे विविध भारती पर, और अब आपको सुनवाते हैं राजेंद्र कृष्ण का लिखा ये गीत, चंदन फिल्म का ये गीत, मदन मोहन का संगीत है, आवाज मोहम्मद रफी की।

मोहम्मद रफी की आवाज में काला पानी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर सुन रहे हैं और कार्यक्रम का अंतिम गीत धूल का फूल फिल्म से महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाजें, साहिल लुधियानवी के बोल एन दत्ता का संगीत। ये गीत सुनिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

आके मुझे लूट लो मेरे नजदीक आके, मुझे लूट लो मेरे नजदीक आके, कि मैं मौत से खेलना चाहता हूँ।

0: सखी सहेली सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। मंजरी आपको भी सप्रेम नमस्कार। क्या हालचाल?
1: बस सोनाली बिल्कुल हालचाल एकदम ठीक है। और तुमको और हमारे सुनने वाले सभी सखियों और साथियों को प्यार भरा नमस्कार। और मुझे लगता है सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ मस्त और खुश होंगे और सब इंतजार भी करें कि आज सोनाली और मंजरी बहुत दिनों बाद मिले हैं सखी सहेली मंच पर। और ये इतनी सारी बातें लेकर के आई हैं तो देखते हैं लोग क्या क्या करती है ना। तो इशारे तो समझ ही रहे हैं ना कि सब लोग भी आज कुछ खाने पीने की बात भी होगी, कुछ बताया भी जाएगा।
0: मजेदार चटपटी चाट का जिक्र होने वाला है
1: कि दो आरजे के साथ में दो धुरंधर कुक भी बैठे हुए हैं।

0: है ना, कोई किसमें
1: जी
0: महारत हासिल रखता है, कोई किसमें महारत हासिल रखता है ना सोनाली।
1: बिल्कुल।
0: तो आज तुम कुछ कहने वाली थी ना, कि मतलब गाने सुनाने सुनाने से पहले कुछ तुम्हारा था मन।
1: मुझे ना ये गानों की आवाज तो बाद में आएगी, पर ये आपकी जो छन छन छन छन चूड़ी की जो आवाज आ रही है ना, वो बार बार आपके हाथों की तरफ आकर्षित कर रही है
0: अच्छा,
1: कि क्या है इतनी सुंदर चूड़ियां हाथ में पहनी हुई
0: तो
1: है।
0: एक्सचेंज कर लेते हैं, तुम अपनी मुझे दे दो, मैं तुम्हें अपनी दे देती हूँ, है
1: ये
0: ना।
1: बातचीत बाद में करेंगे, पहले हम विषय बता
0: विषय
1: दें।
0: बता देते। देखो व्यंजन की बात आज करने वाले हैं, तो उसमें भेलपुरी और दाबेली है ना, जिसमें तुम भेलपुरी मेरे लिए बना के नहीं लाई, बोली दाबेली बाद में खिला
1: ये
0: दूंगी।
1: जो ऐसे आइटम होते हैं ना, भेलपुरी और दाबेली, ये ऐसे बनाए और तुरंत खाए, बना
0: हाँ,
1: के
0: ये बात तो
1: लेकर नहीं
0: सही
1: आ
0: है,
1: सकते
0: सही
1: ना
0: बात
1: इसको,
0: है,
1: है ना।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने। और शब्द हमारे विचार आपके में, हम बात करेंगे आज आत्मविश्वास के ऊपर।
1: जी, जो सबसे जरूरी है हर क्षेत्र में, यानी अगर जिसके पास आत्मविश्वास होगा वो अपनी जो है ना बेहतरीन पेशकश दे सकता
0: और
1: है।
0: इस शर्त पर तो हमारे साथी लिखकर संदेश भेजेंगे भेजेंगे और उन्हीं को तो हम पढ़ने वाले हैं
1: और
0: ना।
1: साथ ही साड़ियों का संसार, इसमें आज हम पश्मीना साड़ी के बारे में जानकारी देंगे, और हमारे बहुत सारे साथियों ने भी इस विषय पर बहुत सारे कमेंट्स लिखना शुरू कर दिया है। और साथ ही
0: खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खाते हैं।
1: ये सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि भाई मंजरी जी, आप खाने के लिए जीते हैं, सिर्फ जीने के लिए खाते हैं?
0: नहीं भाई, तो मैं तो भाई जीने के लिए खाती हूँ, लेकिन वो इतना स्वादिष्ट खाना बनाते हैं ना कि वो सब एक जैसा ही हो
1: भाई
0: जाता
1: मंजरी जी, मैं तो खाने के लिए जीती हूँ, है ना,
0: ना।
1: क्यों मनुष्य का जीवन बार बार नहीं मिलता है, इतने अच्छे अच्छे आइटम से, इतने
0: तो
1: सुंदर
0: तब भी आप
1: सुंदर
0: मेंटेन है ना। ये
1: तो
0: बात हो
1: वही तो
0: जाती है,
1: बात
0: तो
1: है
0: इसलिए
1: कि
0: हमें संतुलन रखना है ना।
1: हाँ, पौष्टिक खाना खाना है और उसमें अपने स्वाद का भी ध्यान रखना है, वही तो जीवन, उसी में तो जीवन का सही में आनंद है ना,
0: बिल्कुल
1: ये
0: आनंद है, और
1: संतुलन जरूरी है।
0: संतुलन बहुत जरूरी है, और गीतों का भी तो आनंद है ना, तो क्यों ना पहले गीत सुनाते हैं फिर बातें करते हैं।
1: जी, तो सुनते हैं गीत।

0: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: तो सोनाली, हम लोग बात करने वाले हैं पश्मीना साड़ी के बारे में, है ना?
2: तो कश्मीर चले?
1: बिल्कुल चलते हैं। तो कश्मीरी साड़ियाँ, जिन्हें पश्मीना साड़ियाँ भी कहा जाता है, कश्मीरी ऊनी कपड़े की एक उत्कृष्ट किस्म है जो चार अलग अलग प्रकार की पहाड़ी पशुओं से प्राप्त ऊन से बनाई जाती है। पेशमनी शब्द फारसी शब्द पश्मी नेह से लिया गया है, जिसका फारसी में अर्थ ऊन होता है। पश्मीना कपड़ा आमतौर पर कश्मीर में उत्पादित होता है।
2: और ये कपड़ा बेहद आरामदायक और मुलायम होता है। असली पश्मीना कपड़ा इतना नरम और मुलायम होता है कि आसानी से अंगूठी के आर पार जा सकता है। और कश्मीरी साड़ियाँ आमतौर पर सर्दियों के मौसम में पहनी जाती है, क्योंकि ये कपड़ा गर्म और हल्का होता है, जिससे इसे पहनना और ले जाना बहुत आरामदायक होता है।
1: और पश्मीना ऊन और महीन रेशम के मिश्रण से पश्मीना रेशम बनता है। असली पश्मीना साड़ियों में कश्मीरी कढ़ाई की बारीकी कारीगरी होती है, जिसे कशीदा कहा जाता है। कश्मीर में साड़ियां बनाने के लिए कई तरह के कपड़े इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें सबसे आम है पश्मीना साड़ियां, कश्मीरी रेशम की साड़ियां, क्रेप साड़ियां और जॉर्जेट साड़ियां। यानी कितनी खूबसूरत साड़ियां, जैसे तुमने कहा ना कि अंगूठी से आर पार हो जाती है, तो सोचो कितनी मुलायम होती होंगी,
2: कितनी
1: वो
2: पतली होती होंगी ना। और कश्मीरी साड़ियों की उत्पत्ति लगभग 200 वर्ष पूर्व की है, और आज भी पश्मीना शॉल फैशनेबल जीवन जीने वाले किसी भी व्यक्ति के वार्डरोब

0: यूरोप में सबसे पसंदीदा वस्तुओं में से एक होती हैं, और कश्मीरी साड़ियाँ कश्मीर की धरती पर हाथ से बुनी जाने वाली एक प्रामाणिक शैली की साड़ियाँ हैं, और कश्मीरी साड़ी में हमेशा इसकी विशिष्ट कढ़ाई होती है। सटीक रूप से कहें तो हर कश्मीरी साड़ी मूल रूप से कढ़ाई वाली साड़ी होती है, और कश्मीरी साड़ियाँ खूबसूरत और अनूठी कढ़ाई से सजी होती हैं, जो कश्मीर की पारंपरिक शैली जैसे कि आरी वर्क और तिल्ला कढ़ाई। कश्मीरी साड़ियों में अधिकतर फूलों के डिजाइन दिखाई देते हैं।
1: बिल्कुल, और कश्मीरी साड़ियाँ अधिकतर हल्के से लेकर गहरे रंग तक कई रंगों में उपलब्ध होती हैं। इनमें से कुछ सबसे अधिक उपयोग की जाने वाले रंग सफेद, बेज, काला, पीला और नीला हैं। कश्मीरी या पश्मीनी साड़ियाँ आमतौर पर सादी साड़ियों के रूप में बुनी जाती हैं, लेकिन इन्हें बॉर्डर और पल्लू वाली पारंपरिक साड़ियों के समान दिखने के लिए भी बुना जा सकता है।
0: अब जैसे प्लेन स्टाइल यानी प्लेन स्टाइल कश्मीरी साड़ियाँ चटक रंगों की होती है, जिनमें कोई मोटिफ कढ़ाई डिजाइन या प्रिंटिंग नहीं होती। इनमें एक खास आकर्षण होता है और इनकी सादगी ही इनकी सबसे बड़ी खूबी है। ये साड़ियाँ ऑफिस या कार्यस्थल के लिए एकदम सही है। प्लेन कश्मीरी साड़ियाँ कई रंगों और शेड्स में उपलब्ध हैं, जिनमें नेचुरल बेज से लेकर आइवरी, सफेद, लाल, नीला, हरा, पीला, गुलाबी जैसे अन्य रंग भी शामिल होते हैं।
1: और कानी बुनाई कश्मीर घाटी की एक अनूठी बुनाई शैली है, जिसका उपयोग कपड़े के विभिन्न रंगों में जटिल और बारीक पैटर्न बुनने के लिए किया जाता है। इसमें बहुत बारीकी से काम किया जाता है और काफी समय लगता है, क्योंकि प्रत्येक साड़ी को बुनने में महीनों तक का समय लग सकता है। कानी पश्मीना साड़ियाँ उत्कृष्ट वस्त्र हैं और पीढ़ियों तक विरासत के रूप में दी जा सकती हैं। ये भव्य साड़ियाँ किसी भी औपचारिक अवसर के लिए आदर्श विकल्प हैं, चाहे वो भव्य रात्रि भोज हो, सम्मेलन हो या मनोरंजन पूर्ण समारोह। ये साड़ियाँ हर जगह शोभा बढ़ाती हैं। तो सोच लो कितना अच्छा लगता होगा जब महिलाएं साड़ियाँ, ये वाली पश्मीना की साड़ियाँ पहन के निकलती होंगी, तो चार चांद लग जाते होंगे महफिल में, है ना।
0: और सचमुच एक जो कशीदा कढ़ाई है ना, ये एक अनूठी यहाँ की शैली है जो केवल कश्मीर में ही प्रचलित है। साड़ी पर सुंदर और जटिल पैटर्न बनाने के लिए केवल कुछ ही टांकों का उपयोग किया जाता है। कशीदा कढ़ाई की खास बात यह है कि इसे या तो केवल बॉर्डर या पल्लू पर किया जा सकता है, या फिर पूरी साड़ी पर भी किया जा सकता है। एक लोकप्रिय शैली है जिसमें बॉर्डर और पल्लू पर कशीदा कढ़ाई के साथ साथ पूरी साड़ी पर छोटे छोटे डिजाइन बने होते हैं। कशीदा कढ़ाई वाली साड़ियाँ कला और शिल्प की उत्कृष्ट कृतियाँ हैं।
1: और सोजनी कश्मीर की एक बहुत ही अनूठी कढ़ाई शैली है, जिसमें सैटिन स्टिच का उपयोग करके इस पैटर्न को बनाया जाता है, और साड़ी के दोनों तरफ कढ़ाई की जा सकती है, यानी कि पूरी भर जाती है ये कढ़ाई, आगे पीछे दोनों एक जैसी। इसकी खासियत यह है कि दोनों तरफ अलग अलग रंग भी हो सकते हैं और नहीं भी। सोजनी पहले शाल में बहुत प्रचलित थी, लेकिन अब कश्मीरी साड़ियों के डिजाइन में भी इसका इस्तेमाल होने लगा है।
0: और प्रिंटेड कश्मीरी साड़ियां और पश्मीना सिल्क साड़ियां पारंपरिक प्रिंट में भी उपलब्ध है। इनमें कई प्रकार के प्रिंट मिलते हैं, जैसे साड़ी के पूरे भाग, बॉर्डर, पल्लू पर, बूटी पर प्रिंट, फूलों वाले बॉर्डर और पल्लू, ज्यामितीय बॉर्डर और आदि। और ये प्रिंटेड साड़ियां रेशम में सूती साड़ियों की तरह ही बेहद आकर्षक और आरामदायक होती है, और इन्हें कैजुअल और ऑफिस दोनों तरह के मौकों पर पहना जा सकता है।
1: और कश्मीरी साड़ियां दोहरी या बहुरंगी बुनाई के पैटर्न में भी मिलती हैं। इनमें धारियों के चेक पैटर्न या सादे केंद्र पर मैचिंग बॉर्डर या पल्लू के डिजाइन होते हैं। ये बहुरंगी साड़ियां 100% पश्मीना और पश्मीना सिल्क दोनों में उपलब्ध हैं, और धागे को कंघी करने की प्रक्रिया से सख्त रेशों को नरम रेशों से अलग किया जाता है। फिर चरखे पर, जिसे स्थानीय भाषा में चरखा कहा जाता है, इसे सावधानी पूर्वक हाथ से काटा जाता है। ऊन व्यापारी ताने और बाने के लिए धागे को अलग करते हैं। रंगीन साड़ियों के लिए इस चरण में रंगर या रंग साज की सहायता से ली जाती है। रंगाई की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ऊन के गुच्छों को बॉबिन में बांधा जाता है, फिर उन्हें ताना लगाने के लिए तैयार किया जाता है। तो इस तरह काफी मेहनत लगती है इन साड़ियों को बनाने के लिए, और 1-2 महीने का समय लग जाता है। बहुत अच्छी डिजाइन उभर कर आती है। और सोनाली, हमारी एक साथी ने कमेंट भी लिखकर भेजा है, तो मैं इसको पढ़ लेती हूँ।
0: हाँ।
1: साड़ियों का संसार पश्मीना, ये जम्मू कश्मीर में बनाई जाती है, वहां की बहुत ही प्रचलित साड़ी है। अभी कुछ मैंने पहले मेरे घर में शादी थी, तब मैंने ये साड़ी बारात कार्यक्रम में पहनी थी। क्या बात है। और इसका सिल्क बहुत ही मुलायम होता है, हाथ से फिसलती है और देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। इसके सूट और शॉल भी मिलते हैं। एक पश्मीना साड़ी भी होना चाहिए हमारी वार्डरोब में। बिल्कुल, आपकी वार्डरोब में तो हो गई है, अब हम लोग को सोचना पड़ेगा, है ना।
0: अब हम भी खरीदने वाले हैं, हमारी सखी ने खरीद लिया, तो ये हमारी भी जिम्मेदारी कि हमें भी पश्मीना साड़ी खरीदना है।
1: बिल्कुल।
0: बहरहाल गाना सुनना है, सुनते हैं गीत।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने के

0: तो भाई सोनाली, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हमारा विषय है कि खाने के लिए जीते हैं, जीने के लिए खाते हैं। तो हमारे साथियों ने देखो बहुत सारे
1: भर भर के
0: संदेश
1: कमेंट्स लिखे हैं।
0: भर भर के लिखे हैं कमेंट्स। और देखो, मनुष्य के जीवन में भोजन का जो स्थान है ना, वो तो
1: बहुत
0: बहुत
1: महत्वपूर्ण
0: महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके बिना तो जीवन चलता नहीं है। शरीर के लिए सब चीजों की जरूरत होती है, उसी तरह भोजन की है। भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं होता ना सोनाली, बल्कि जीवन को चलाने वाली वो शक्ति होती है। अन्न के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हम रसोई में सोच ही नहीं सकते कि ये चीज हमारे पास होगी या नहीं होगी। हम सब चीजें खरीद लाते हैं। हमारा यही

0: कि हमारे देश में अन्न को देवता का रूप माना गया है। जब भी हम खाना बनाते हैं तो अन्न के देवता को, देवी को याद करते हैं। और देखो पहले के ज़माने में क्या होता था कि सुबह चाय हो गई, फिर सीधा सादा खाना हो गया, फिर दोपहर की शाम की चाय हो गई और रात का खाना सादा, सब सादगीपूर्ण था जीवन। उस समय शरीर स्वस्थ भी रहता था, लेकिन धीरे
1: बहुत
0: धीरे
1: स्वस्थ रहते
0: बहुत
1: थे
0: स्वस्थ
1: और
0: रहते थे।
1: काम कितना करते थे पुराने जमाने के लोग।
0: बहुत लोग, सब घर में चक्की भी चलना है तो
1: हाँ,
0: गेहूं भी पछोरना है, ये
1: पानी
0: सारे काम,
1: भरना
0: पानी
1: है,
0: भरना है,
1: कुएं से पानी निकालना है,
0: हाँ
1: कितना सारे काम
0: बहुत सारे
1: करते थे।
0: काम थे, तो उसमें फिटनेस रहती थी बॉडी को। लेकिन आज के समय में जो हमारी जीवन हो गया है, भाग दौड़ की जिंदगी जो गई है, भोजन के प्रति लोगों का दृष्टिकोण जो है बदलता जा रहा है, उन्हें स्वाद और दिखावा और फैशन दिखता है, जिसमें भोजन को, वास्तविक उद्देश्य को पीछे छोड़ देता है। और इसी कारण ये प्रश्न विचारणीय भी बन गया है सोनाली, कि क्या हम जीने के लिए खाते हैं या खाने के लिए जीते हैं।
1: हमारे एक साथी ने लिखा है, मंजरी, भोजन चाहे जीवन जीने के लिए हो या जीवन भोजन के लिए हो, दोनों ही जरूरी है। वो तो हम अपने ऊपर निर्भर करता है कि हम उस भोजन को किस नजरिए से देखते हैं। कुछ लोग रूखा सूखा भोजन ग्रहण करके शून्य से शिखर तक पहुंच जाते हैं, उनको कह सकते हैं कि जीने के लिए खाते हैं। और कुछ लोग बहुत स्वादिष्ट भोजन करके भी अपने जीवन में कुछ विशेष नहीं कर पाते, उनको कह सकते हैं कि सिर्फ खाने के लिए जीते हैं। पर ऐसी बात नहीं है, हम पौष्टिक भोजन भी खा के, यानी खाने के लिए जी सकते हैं ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें जंक फूड खा के ही जीना है। बहुत सारे पौष्टिक हमारे भोजन में तो
0: आहार
1: इतने, आहार में इतनी पौष्टिकता भरी हुई है।
0: हर सीजन में देखो, हर सीजन की सब्जियां
1: हाँ,
0: मिलती है, हर सीजन के फल मिलते हैं। अगर हम उनको भी खाएंगे ना तो हम स्वस्थ रह सकते हैं,
1: रह
0: जीवन
1: सकते हैं।
0: गुजार सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमें बहुत फास्ट फूड पर हम जाएं, जंक फूड पर जाएं,
1: जी
0: है ना। और हमारे साथी और लिखते हैं कि अगर ये पूछा जाए कि आप खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खा रहे हैं, तब यही जवाब रहेगा, जीने के लिए खाना जरूरी होता है, यानी ईट टू लाइव। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए ईंधन की जरूरत होती है, उसी तरह भोजन हमारे शरीर का ईंधन है, जो हमें पोषक तत्व देकर उम्र के साथ साथ ऊर्जा और बुद्धि भी बढ़ाता है। अगर खाना स्वाद पर केंद्रित होगा या चटकारे भोजन पर ध्यान केंद्रित होगा तो पेट खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए जो भी खाओ जीने के लिए खाओ। एक बात कान से खाने से की भी एक है, काम की मतलब कह दूं कि विविध भारती के मधुर गीतों का स्वादन सेहत के लिए भी बड़ा फायदेमंद होता है। आपने बहुत अच्छी सी बात इसमें शामिल कर दी है।
1: एक
0: जी
1: हमारी सखी ने लिखा है कि कुछ समय पहले तक मैं जो भी मिल जाता था खा लेती थी, कभी यह सोचने का समय नहीं मिला कि जो खा रही हूं उसमें पोषण है भी नहीं। लेकिन जब स्वास्थ्य की बात आई तब समझ में आया कि भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं बल्कि जीवन को ऊर्जा देने का आधार है। और उन्होंने कहा है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर स्वाद के पीछे स्वास्थ्य को भूल जाते हैं, जबकि सही मायने में हमें जीने के लिए खाना चाहिए, न कि केवल खाने के लिए जीना चाहिए। संतुलित और पौष्टिक भोजन ही स्वस्थ शरीर और शांत मन और अच्छे जीवन की असली पहचान है। अब एक गीत सुन ले,
0: बिल्कुल
1: सुनते हैं गीत।

0: भाई तुम थिरक रही थी इस गाने में है ना, जब अच्छा अच्छा खाना सामने हो ना तो हमारी पायल थिरकने लगती है, हमारी पायल
1: भाई
0: बजने
1: देख रही
0: लगती
1: थी।
0: है। तो देखो मेरे एक साथी लिखते हैं कि मैं सूरत का रहने वाला हूँ और सूरत का खाना और काशी का डैश डैश फेमस है, सो तो मैं खुले पेट से सबको कहता हूँ कि हाँ मैं चटोरा हूँ, खाने के लिए जीता हूँ। स्वर्ग या नरक में ना जाने खाने को मिले या ना मिले, भगवान को भी लगना चाहिए कि मेरा भेजा बंदा खा पी कर धरती से लौटा है। बहुत इन्होंने हंसने वाले स्माइली लगाए हैं। और अगला संदेश क्या है
1: बहुत सारे हमारे
0: हमारे, अच्छा
1: साथियों
0: एक
1: ने।
0: साथी और लिखते हैं, सुनाली हम पढ़ लेते कि पहली बात तो खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे, इसलिए खाने के लिए जीना चाहिए, उससे अच्छी सेहत होती रहती है और जब तक स्वस्थ है तब तक जी भरकर खाना चाहिए, लेकिन योग और वॉक करना चाहिए,
1: और
0: है
1: अब
0: ना
1: लेते हैं एक
0: अंतराल।
1: ब्रेक।

0: तो सोनाली, क्या कमेंट तुम देख रही थी बड़ी देर से?
1: बहुत सुंदर हमारे साथियों ने हमारे कमेंट्स लिखकर भेजे। एक लिखते हैं कि भाई खाने के लिए जीते हैं, जीने के लिए खाते हैं, जो भी हम खाते हैं हमारा जीवन बन जाता है, इसलिए भोजन कृतज्ञता के भाव के साथ खाना चाहिए। कहते हैं कि भोजन के द्वारा हम किसी के दिल तक पहुंच सकते हैं, मतलब भोजन जीवन है। जीने के लिए खाना जीवन का संतुलन सिखाता है, जबकि खाने के लिए जीना अक्सर स्वाद की आदत बन जाता है। भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि शरीर को ऊर्जा, मन को संतोष और रिश्तों को मिठास देने वाला माध्यम है। स्वाद जीवन का आनंद है, लेकिन स्वास्थ्य उसकी असली पूंजी है। इसलिए शायद सही बात यही है कि हम ऐसा खाएं जो जीवन को स्वस्थ, खुशहाल और संतुलित बनाए, क्योंकि अच्छा जीवन केवल स्वाद से नहीं, अच्छे स्वास्थ्य और सुकून से भी बनता है। क्या बात है, बहुत सुंदर बात।
0: हमारे साथी लिखते हैं कि दुनिया में बहुत सारे लोग खाने के लिए जीते हैं, और जब समझ में आता है कि जीने के लिए समतौल खाना जरूरी, तब तक वक्त निकल चुका होता है। इसलिए जीवन करी जीविता अन्न हे पूर्ण ब्रह्म उदर भरण नोहे जानिजे यज्ञ कर्म। ये बात सही समय पर जान लो। अर्थ है इसका कि शरीर का यज्ञ शुरू रहने की समाधि यानी खाना होता है, ये बात पहचान लो। बहुत सुंदर सी बात आपने लिखकर भेजी है। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि जीने के लिए खाना एक जैविक और तार्किक आवश्यकता है, जबकि खाने के लिए जीना जीवन के रंगों और खुशियों का आनंद लेने का तरीका है। एक स्वस्थ और सुखी जीवन के लिए अनिवार्य है कि हम जीने के लिए खाएं, लेकिन कभी कभी खाने का आनंद इस तरह से ले मानो हम उसी के लिए जी रहे हैं। सुनाली, एक किस्सा मुझे याद आ गया कि जिम में हमने देखा कि सीढ़ी पे चढ़ के खिड़की थी, तो वहां खिड़की के पास स्पेस था, तो एक लड़की है काफी हैवी थी, वो चढ़ी वहां बैठ गई और बैग से निकाल के उसने बर्गर लेके आई थी और अंकल चिप्स थे उसके चिप्स थे और ठंडा कोल्ड ड्रिंक थी, तो बस वो उसके साथ बैठ के खा पी रही थी। तो मैं चढ़ रही थी, मैंने पूछा उसको कि तुम यहाँ क्या करने आई हो? कहती भूख बहुत लगी, पहले खा लूं फिर जाके कर लूंगी। तो उसका ये कि वो खाने के लिए जी रही थी, ऐसा लग रहा था।
1: खाने के लिए जीना जरूरी है, पर अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो जी पाएंगे ना अच्छे से। तो ऐसा नहीं है कि हम जंक फूड खा के ही जी सकते हैं, उसमें भी बहुत सारे ऑप्शन है। अब देखिए, जैसे हमने भेलपूरी और दाबेली का ऑप्शन दिया है, तो मैं एक उसमें पौष्टिक भेल की भी रेसिपी बताऊं कि ऐसा है? नहीं है कि हमेशा जंक फूड खा के ही, उसमें भी हम बहुत उसमें हेल्दी ऑप्शन ले सकते हैं। एक हमारे साथी लिखते हैं मंजरी, जो शरीर के लिए फायदेमंद है वो भोजन नियमित तरीके से खाना चाहिए। सीजनल सब्जी और फल का सेवन करना चाहिए। डब्बा बंद और गैर मौसमी फल सब्जी और अनाज से बचना चाहिए। अपने रहने के एक लिमिटेड दायरे में उगने वाली फसल का उपयोग अधिक करना चाहिए। यानी हम जहां रहते हैं वहां उगने वाली जो सब्जियां होती है, वो फल होते हैं ना, उसे हमें प्राथमिकता देना चाहिए। ऐसा होता है कि हम विदेशी फलों को, विदेशी सब्जियों को बहुत ज्यादा प्राथमिकता देने लग गए हैं। वो भी अच्छे हैं, पर जो हमारे हैं, जैसे अब हम बचपन में कितने जो है ना जाम, अमरूद खाते थे, बेर खाते थे, गन्ना खाते थे, तो अब वो बच्चे भूलते जा रहे हैं, पर उनमें भी बहुत ज्यादा विटामिन मिनरल्स मौजूद होते हैं।
0: बहुत से बच्चों को ये भी नहीं पता है कि गन्ने को कैसे मतलब
1: खाया जाता है,
0: चूसा जाता है, क्या किया जाता है, तो नहीं बताना पड़ता है कि भाई गन्ने को चूसना पड़ता है। उन्हें चने के साग का स्वाद नहीं पता है, उन्हें झरबेरी का स्वाद नहीं पता है,
1: तो उन्हें कैसे मालूम होगा? हमने ही नहीं बताया।
0: हाँ, हम नहीं बता रहे उनको, हम उन जगह लेके नहीं जा रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी गलती अपने लोगों की कही जा सकती है। चलो फिर एक संदेश पढ़ लेते हैं। एक साथी लिखते हैं कि शरीर को चलाने के लिए भोजन से जितनी एनर्जी चाहिए उतना भोजन चाहिए ही। कभी कभार भोजन स्वादिष्ट होने के साथ होने के कारण कुछ ही ज्यादा खा लिया जाता है, तो पेट में तकलीफ हो जाती है, इसलिए भोजन को एक लिमिट में ही करना चाहिए। और एक हमारा संदेश है सोनाली, उन्होंने थोड़ा इंग्लिश में लिखा है कि ज्यादातर तो सभी जीने के लिए ही खाते हैं, वैसे भी आजकल तो नाप तौल का खाना होता है, ये मत खाओ वो नुकसान करेगा, इस तरह की बातें ले लिखी है। और हम अपने साथी से कहेंगे कि हिंदी में ही संदेश लिखे तो ज्यादा अच्छा रहता है,
1: वैसे पढ़ने में दिक्कत नहीं आती।
0: हाँ, वो इजिली से आंखों में अटैक कर जाता है, हालांकि मैंने इनका संदेश पढ़ लिया है।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं मंजरी, खाने के लिए जीना है दृष्टिकोण भोजन को केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि जीवन के परम आनंद और उत्सव के रूप में देखता है। भोजन के स्वाद, विविधता और उससे मिलने वाली मानसिक संतुष्टि को प्राथमिकता देना, नई संस्कृतियों, व्यंजनों और स्वादों को खोजना एक कला है। ये सामाजिक मेलजोल को बढ़ाता है। अच्छा खाना मस्तिष्क में डोपामाइन रिलीज करता है, जो तनाव कम करने और खुशी देने में मदद करता है। अत्यधिक स्वाद लोलुपता से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है, जैसे अपच या वजन बढ़ सकता है।
0: बिल्कुल। और हमारे एक साथी और लिखते हैं कि आज का पहला विषय बहुत ही रोचक है। मेरा मानना है कि हमें जीने के लिए खाना चाहिए, क्योंकि सादा और पौष्टिक भोजन ही हमें स्वस्थ, ऊर्जावान रखता है। लेकिन कभी कभी स्वाद के लिए पसंद का खाना खाने में भी एक अलग ही खुशी है, और अक्सर लोग स्वाद के पीछे भागते हैं, लेकिन लंबी उम्र और अच्छी सेहत के लिए जीने के लिए खाना ही सही मंत्र है। अगर हम खाने पर नियंत्रण रखेंगे तो शरीर हमारा जो है हमेशा साथ देगा। और सोनाली, एक साथी ने हमारे और इंग्लिश में कमेंट लिखकर भेजा है, जब हम खाना खाते हैं तभी तो हम जीते हैं, अगर खाना नहीं खाएंगे तो हमारा शरीर कमजोर हो जाएगा, इसलिए खाना भी जरूरी है और जीना भी जरूरी है। जब तक है जीना जब तक खाएंगे खाना। तो ये बात आपने अच्छी लिखी है, लेकिन हम चाहेंगे कि अगली बार आपका संदेश हिंदी के शब्दों में आए, है ना? और क्या करें, सुने गीत,
1: सुन लेते हैं गीत।

0: तो सोनाली कौन सा कमेंट तुम पढ़ने वाली हो?
1: एक हमारे साथी ने लिखा है कि सही मायने में भोजन वही है जो शरीर को ताकत दे और मन को संतुलन। जिस प्रकार दीपक को जलने के लिए तेल चाहिए, उसी प्रकार शरीर को जलने के लिए भोजन चाहिए। परंतु दीपक का उद्देश्य केवल तेल खत्म करना नहीं, बल्कि रोशनी फैलाना होता है। ठीक वैसे ही जीवन का उद्देश्य केवल खाना नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों और खुशियों से जीवन को सुंदर बनाना है। इसलिए हमें भोजन का सम्मान करते हुए संयम और संतुलन के साथ जीवन जीना चाहिए।
0: क्या बात है। और हमारे साथी जो है, उन्होंने छोटा सा संदेश लिखा है, खाने पीने क्या शर्माना, कम खाओ गम खाओ, सेहत जोरदार, शरीर कभी शानदार। और एक साथी लिखते हैं, एक प्रसिद्ध कहावत का अंग्रेजी अनुवाद है, ईट गो लाइव, ईट टू लाइव और लाइव टू ईट होता है, खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खाते हैं। इस विषय पर कॉलेज में इंग्लिश में निबंध आता था। क्या बात है, बिल्कुल सही बात है।
1: और एक हमारे साथी ने भी लिखा है कि हिलियर्ड कहते हैं कि जीने के लिए खाना खाने का मतलब है भोजन को शरीर के लिए ईंधन की तरह मानना। अक्सर इसके विपरीत खाने के लिए जीना वाला दृष्टिकोण यह दर्शाता है कि आनंद का एक बड़ा हिस्सा मुख्य रूप से या पूरी तरह से खाने के अनुभव में ही निहित हो जाता है, जो हिलियर्ड के अनुसार आमतौर पर अस्वास्थ्यकर विकल्पों को जन्म देता है।
0: और एक हमारे साथी लिखते हैं, जीने के लिए खाना खाते हैं, वो भी घर का बना हुआ स्वादिष्ट वेजिटेरियन फूड, प्राकृतिक सब्जियां, फल और फ्रूट्स। बहुत अच्छी सी बात है, आप बिल्कुल संभाल करके अपने भोजन को ग्रहण करते हैं। और हमारे सभी साथी भी बहुत अच्छी तरह से खाते हैं। लेकिन हमारे एक साथी और लिखते हैं कि सही मायने में भोजन वही है जो शरीर को ताकत दे और मन को संतुलन। जिस प्रकार दीपक को जलने के लिए तेल चाहिए, उसी प्रकार शरीर को जलने के लिए भोजन चाहिए। परंतु दीपक का उद्देश्य केवल तेल खत्म करना नहीं, बल्कि रोशनी फैलाना है। ठीक वैसे ही, जैसे लगता तुमने ये पढ़ा है क्या?
1: ये पढ़ दिया
0: अच्छा, तभी तुम इशारे कर रही थी। चलो अच्छी बात है, उनको थोड़ा अच्छा लगा होगा। तो देख, दूसरा कमेंट हम ले लेते हैं सोनाली। खाने के लिए जीते हैं, जीने के लिए खाते हैं। भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि इससे हर एक का ही स्वास्थ्य प्रभावित हुआ करता है। जो लोग स्वाद के लिए भोजन करते हैं, वही खाने के लिए जीते हैं, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि वे अपनी जीवा पर लोलुपता पर नियंत्रण नहीं रख सकते। इसलिए विपरीत, जो लोग खाने के लिए जीते हैं, खाते हैं, वे सुस्वाद भोजन के साथ ही षडश युक्त संतुलित भोजन के लिए सेहतमंद और आनंद में रहते हैं। मैं तुम्हारी आंखों में देखती जा रही थी पढ़ते पढ़ते, कि कहीं तुमने इसको भी तो नहीं पढ़ लिया है। कभी कभी ऐसा हो जाता है श्रोता भाइयों की, लगता है कि हाँ ये नहीं पढ़ा है, तो पता चलता है दूसरा इशारा कर रहा होता है ना।
1: ये
0: तो
1: टेक्नोलॉजी में ऐसे ना थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो सकती है,
0: लेकिन
1: ना
0: इसमें मजा आता है, जिसको लगा रहे मैंने दोबारा पढ़ लिया।
1: पर अगर हमने गलती को, है ना, अपनी गलती को भी आत्मविश्वास के साथ बोल दिया कि हाँ हमने गलती कर ली,
0: हाँ, तो
1: तो
0: कोई
1: वो
0: भी दिक्कत है।
1: आत्मविश्वास भी अच्छा लगता है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: आज ये शब्द हमारा विचार आपके इस विषय में, हमारा विषय है आत्मविश्वास। हमारे साथियों ने भी बहुत भर भर के कमेंट्स लिखे हैं आत्मविश्वास। और सचमुच मंजरी, आत्मविश्वास जो ऐसी ऐसा शब्द है ना, अगर हम उसे अपना ले, यानी कि अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास आ जाता है, तो कितने भी कठिन से कठिन काम हम बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। फिर वो कोई कला है, उसके बाद में कोई भी प्रस्तुति है, अगर वो प्रस्तुति में थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो भी चलेगा, पर उसमें अगर आत्मविश्वास होगा तो वो कला दिल को छू जाती है।
0: बिल्कुल, हमारे साथी लिखते हैं इसी बात पर कि आत्मविश्वास शब्द में ही इसका अर्थ शामिल है। आत्म यानी खुद पर, विश्वास मतलब भरोसा, अंग्रेजी में सेल्फ।

0: कॉन्फिडेंस कहते हैं इसे अगर परिभाषित किया जाए
1: हम्म,
0: तो, जिन्हें हम अपनी क्षमताओं, कौशलों और निर्णय लेने की क्षमता पर अटूट भरोसा हो वो आत्मविश्वासी कहा जा सकता है। जो बिना डर हर चुनौती का सामना कर सकता है, बस एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इस बात पर गुजराती मुहावरा है, मन होए तो मालवे जवाए, मतलब मन करे तो हम कोई भी जगह जा सकते हैं, कोई भी कठिन कार्य कर सकते हैं। बहुत सुंदर सी बात लिखी
1: एक
0: आपने।
1: हमारे सखी ने लिखा है कि अपनी असफलताओं पर ना डरते हुए अपने काम पर भरोसा, सही मायने यही आत्मविश्वास होता है। अपनी योग्यताओं, क्षमताओं और निर्णयों पर अटूट भरोसा है, ना कि केवल अहंकार। ये अपनी खूबियों और कमियों को स्वीकार करते हुए जीवन की चुनौतियों का सामना करने की सकारात्मक मानसिक स्थिति है। ये डर को दूर कर सत्य और आंतरिक शक्ति पर विश्वास करने का नाम है। मन में विश्वास, हम होंगे कामयाब
0: क्या
1: एक दिन।
0: बात है। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि आत्मविश्वास से विवेक बुद्धि को बल मिलता है, वो मैं पूर्ण आत्मविश्वास से भर कर कार्य करता हूँ, जहाँ मुझे सफलता भी मिलती है। बस कोई काम में आत्मसात से करे, यानी कि आप कोई भी काम करें तो ये मत सोचे कि हमें इस काम से सफलता मिलेगी। पहले तो ईमानदारी से काम करें, आप आत्मविश्वास से भरें और धैर्य के साथ करें, तो आप हमेशा अपने काम को आगे ले जा सकते हैं। और हमारे साथी लिखते हैं कि आत्मविश्वास के बारे में मेरा मानना है कि ये हमारे काम और मेहनत से पैदा होता है। जब हम दिन भर कठिन परिश्रम करते हैं और अपने काम में माहिर होते जाते हैं, तो वही भरोसा हमारे व्यक्तित्व में आत्मविश्वास बनकर छलकता है। आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो हमारे हर सुबह एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। मेरा मानना है कि आत्मविश्वास कठिन परिश्रम से आता है। जब हम अपनी कमियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास अपने आप बढ़ सकता है।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं कि आत्मविश्वास के बारे में मेरा मानना है कि हमारे काम और मेहनत से पैदा होता है। जब हम दिन भर, अच्छा आपने पढ़ चुका है ये भी कमेंट्स आप पढ़ चुके हैं, और हमारे बहुत सारे साथियों ने इस विषय पर और भी कमेंट्स लिखे हैं, तो उससे पहले एक गाना सुन लें, तो सुनवाते हैं गीत।

0: एक हमारे साथी लिखते हैं मंजरी कि व्यक्ति के जीवन में आत्मविश्वास सफलता की वो सीढ़ी है जिस पर चलकर व्यक्ति आसमान की ऊंचाइयों को छू सकता है। जब स्वयं पर भरोसा होता है तो हर मुश्किल आसान लगती है, लेकिन आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं कि मुझे सब पता है, इसका मतलब पता ना होने पर भी सीख लूंगा। आत्मविश्वास कभी शोर नहीं करता, वो शांति और धैर्य के साथ अपना काम करता है। सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि आत्मविश्वास कोई जादू नहीं जो एक दिन में प्राप्त किया जा सकता है, ये हर रोज खुद से छोटे छोटे वादे करके उन्हें निभाने से ही आता है।
1: क्या बात है,
0: बहुत सुंदर विचार।
1: इतनी सारी बातें करने के बाद तो अब चलते हैं व्यंजन की ओर जिसमें मुझे मिल गई है कच्ची दाबेली की रेसिपी।
0: तो
1: हमारे साथियों ने भेजी तो हम इसको पढ़ते हैं कि पहले मसाला तैयार कर लीजिए। दाबेली मसाला घर पर बनाने के लिए धनिया, जीरा, सौंफ, लौंग, दालचीनी, तेज पत्ता और सूखे नारियल को भूनकर पीसकर तैयार कर लीजिए, मतलब अपने अंदाज से लीजिए सामग्री। सामग्री आगे लिखी इन्होंने कि जो आलू का मसाला 4-5 उबले और मैश किए हुए आलू, दाबेली का मसाला जो स्पेशली लिया जाता है जो पहले से तैयार किया था वो 2-3 बड़े चम्मच लेना है, जो हमने पहले बताया था वो दाबेली का मसाला था। अब चटनी, इसके लिए आपको इमली की खट्टी मीठी चटनी और लहसुन लाल मिर्च की तीखी चटनी। स्टफिंग के लिए बारीक कटा प्याज, अनार के दाने, मसाला वाली मूंगफली, बारीक सेव और अन्य में लिखा है 6-8 पाव मक्खन या घी, हरा धनिया। और इसकी विधि लिखी है कि स्टफिंग तैयार करें, एक कढ़ाई में तेल गर्म करें, इसमें दाबेली मसाला, थोड़ा सा पानी और इमली की चटनी डालकर मिलाएं। अब मैश किए हुए आलू और नमक डालकर अच्छी तरह मिलाइए। मिश्रण को गीला और मसालेदार रखना है। प्लेटिंग के लिए तैयार आलू के मिश्रण को एक थाली में फैलाएं, ऊपर से बारीक कटा प्याज, अनार के दाने, मसाला, मूंगफली, हरा धनिया और ढेर सारी बारीक सेव डालें। दाबेली असेंबल करें, पाव को बीच में काटें और पूरी तरह से अलग न करें, एक तरफ से तीखी चटनी, दूसरी तरफ से मीठी चटनी लगाएं और भरें। बीच में एक बड़े चम्मच तैयार आलू का मसाला भरें, ऊपर से थोड़ा सा अनार, प्याज और मूंगफली डालें और एक तवे पर मक्खन या घी गर्म करें और दाबेली को दोनों तरफ से कुरकुरा होने तक सेक लें। गर्मा गर्म दाबेली आप खाएं, हमको खिलाएं, सबको खिलाएं, है ना।
0: और अभी छुट्टियों का मौसम है तो बच्चों को इस तरह का कुछ चटपटा बना के खिलाते हैं, बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं और उन्हें उन्हें उनकी हेल्प भी ले सकते हैं क्योंकि बनाना जो आसानी होता है। बस तवे में सेकते वक्त हम अपने एक साथ खड़े रहे, वरना बच्चों को साथ में लेके हम उन्हें सिखा भी सकते हैं, बना भी सकते हैं। वैसे एक भेलपूरी जो है एक चटपटा भारतीय नाश्ता और चाट का प्रकार है, इसकी जड़ें गुजराती व्यंजनों में से है लेकिन मुख्य रूप से मुंबई की पहचान है। मुंबई के चौपाटी गिरगांव जुहू बीच की भेलपूरी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इसकी सामग्री इन्होंने बताया है कि मुरमुरा, तली हुई सेव, पापड़ी, कटे हुए उबले आलू, प्याज और काटी हुई हरी मिर्च से बनाया जाता है। इसमें खट्टी मीठी इमली की चटनी और तीखी हरी चटनी मिलाई जाती है। इसका स्वाद बेहद चटपटा होता है और कलकत्ता में से झालमुरी और कर्नाटक में मसाला पूरी या चुरमुरी के नाम से जाना जाता है। वैसे एक मैं पौष्टिक भेल की मैं आपको रेसिपी बताने वाली थी, तो उसके लिए हमें क्या करना है, 2-3 मुट्ठे मखाना लेना है, उसे घी में अच्छी तरह सेक लेना है, उसमें उबला हुआ शकरकंद जो है उसके छिलके निकाल के बारीक बारीक छोटे छोटे टुकड़ों में डाल देना, फिर उसमें उबली हुई मूंगफली डालना है और उसमें फिर प्याज, टमाटर और फिर उसमें हरी चटनी, मीठी मीठी चटनी, फिर उसमें बारीक कटी हुई ककड़ी भी डाल सकते हैं, उसमें अनारदाना डाल सकते हैं, उसमें चाट मसाला डाल दीजिए और फिर उसमें रागी की सेव डाल दीजिए।
1: क्या बात,
0: और
1: है?
0: ये पौष्टिक भेल सर्व कीजिए, है ना।
1: बहुत हमें... खास बात है, आपने बताई कि शकरकंद के टुकड़े,
0: हाँ, और आलू के बदले हम शकरकंद का इस्तेमाल कर सकते
1: बहुत
0: हैं
1: अच्छी सुंदर बताई।
0: और बेसन की सेव के बदले हम उसमें रागी की सेव यूज कर सकते, या फिर खाकरा जो होता है उसको चूरा करके वो डाल दे। तो यानी ऐसा जरूरी नहीं है कि हम जंक फूड खाके ही खुश रह सकते हैं, इस तरह हमें पौष्टिक खाने खाके भी हम खुश रह सकते हैं।
1: बिल्कुल रह सकते हैं। और साथ में गीत सुने कि कमेंट्स पढ़ोगे?
0: एक कमेंट्स पढ़ दीजिए।
1: ठीक है, एक हमारे लिखते हैं कि भारत दावेली, कच्ची दावेली भारत का एक लोकप्रिय नाश्ता है जिसकी उत्पत्ति गुजरात के कच्छ क्षेत्र के मांडवी में हुई थी। ये एक मसालेदार और मीठा नाश्ता है जिसे उबले हुए आलू को एक विशेष मसाले के साथ मिलाकर बनाया जाता है। बहुत सुंदर सी जानकारी दी है। और हमारे साथी लिखते हैं कि देखा तुम्हें मिला
0: दाबेली, कच्ची दाबेली है, डबल रोटी, देवनागरी दाबेली भारत का एक लोकप्रिय नाश्ता है, गुजरात के मांडवी से हुई एक मसालेदार मीठा नाश्ता है और ये जो है उबले हुए आलू को विशेष मसाले के साथ मिलाकर बनाया जाता है। इसमें हम पाव की जगह पर हम रोटी का इस्तेमाल करें ना, और पैकेट बना के बना सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छा लगता
1: है।
0: और अब गीत सुन ले, सुनते हैं गीत।

0: सचमुच नाना करते प्यार कर ही बैठते हैं हम
1: देखो हमारे
0: खाने की चीजों से, भले ही डॉक्टर कितना भी मना कर दे
1: साथ
0: कि ये
1: लेकिन
0: नहीं खाना है वो नहीं खाना
1: अरे
0: है।
1: आजकल तो देखो ना हमारे सोशल मीडिया पे कितनी सारी रेसिपी बताई जाती है, तो हम उसी में डूबे रहते हैं कि अच्छा ये भी बना ले वो भी बना ले, और सब ले लेकर अपने पास स्टोर करते जाते हैं
0: और फिर
1: व्हाट्सएप
0: क्या
1: पे।
0: होता है ना, जब हम मॉल में जाते हैं ना तो उस वक्त हमें आ जाता है, अच्छा हाँ हमने वो ना नेट पे ये रेसिपी देखी
1: हाँ
0: थी, उसमें ये डालना है, ये पाउडर डालना है, ये सब डालना है, और लेकर आते
1: एक्स्ट्रा
0: हैं
1: शॉपिंग कर लाते हैं, फ्रिज पूरा भर लेते हैं
0: और
1: चीज
0: कभी
1: बटर
0: कभी बनाते भी नहीं है, वो
1: से
0: पैकेट वैसा ही पड़े पड़े एक्सपायर हो
1: रखे
0: जाता
1: रहते।
0: है।
1: देखो हमारे साथी लिखकर बैठते हैं, रेसिपी सुनकर नाना करते दाबेली बनाकर खा भी बैठे हैं, और एक लिख रहे हैं कि मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, और एक लिखते हैं खाने के लिए जीते या जीने के लिए खाते हैं। इस बारे में इंदौरियों से पूछे, हर इंदौरी खाने के लिए जीता है, किसी भी कोने में चले जाइए खाने पर भीड़ लगी होती, क्यों ना हो भाई, यहाँ नाश्ते खाने की इतनी विविधता जो है, वाकई में सही बात है
0: सचमुच
1: हमारे
0: इंदौर
1: देश
0: बार
1: में।
0: बार जाने को जी
1: जी,
0: करता है।
1: और देखो हमारे हर शहर में, हमारे देश में कई सारे शहर हैं, सबके अलग खान पान है, सबका अलग स्वाद है, तो जब जहाँ कहीं जाते हैं तो वहाँ का स्वाद खाते हैं। आप चाहे इंदौर चले जाइए, चाहे आप लखनऊ चले जाइए, चाहे आप गुजरात आ जाइए, चाहे महाराष्ट्र आ जाइए, राजस्थान चले जाइए, और जिसका नाम हमने नहीं लिया उन सभी शहरों में जाइए, वहाँ का बढ़िया बढ़िया पंजाब वगैरह सब जगह खा के आइए,
0: और
1: है
0: खूब
1: ना।
0: खाइए और है ना खूब सारा व्यायाम कीजिए, ताकि
1: बिल्कुल।
0: है ना ये जो खाना जो हमने खाया है वो पच जाएगा और हम
1: फिलहाल
0: स्वस्थ रहेंगे।
1: फिलहाल तो हमारी बातों की जो हमने गप्पे मारी हैं उनसे लेते हैं विराम, तो सभी से लेते हैं विदा,
0: और
1: है
0: आप
1: ना,
0: सभी को सोनाली पाठक
1: और मंशी वर्मा का नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: नमस्कार श्रोताओं, आज के मेहमान आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं सुप्रसिद्ध शायर और विविध भारती के भूतपूर्व केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है यूनुस खान। आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग।
1: राजेश रेड्डी एक जाने माने शायर जिनकी गजलों का हर शेर खरा होता है। वो लिखते हैं, शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूं मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूं मैं। राजेश रेड्डी अपने समय और समाज की आवाज भी बन जाते हैं। जुबां खामोश है डर बोलते हैं, अब इस बस्ती में खंजर बोलते हैं। राजेश रेड्डी की शायरी में जिंदगी का फलसफा छलक छलक पड़ता है। वो लिखते हैं, ये जो जिंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है, कहीं एक हसीन सा ख्वाब है, कहीं जानलेवा अजाब है। जिंदगी के डर, जिंदगी की उदासी और जुल्मतों को वो अपनी लेखनी में पिरो देते हैं। घर से निकले थे हौसला करके, लौट आए खुदा खुदा करके। जिंदगी की नाकामियां, उदासियां और विडंबनाएं भी राजेश रेड्डी की लेखनी में नजर आती हैं। जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं, तेरे दामन में मेरे वास्ते क्या कुछ भी नहीं। राजेश रेड्डी वो शायर हैं जिन्होंने बड़ी ही मशहूर गजल लिखी जिसे पंकज उधास ने गाया, यहां हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। कई वर्षों तक राजेश रेड्डी विविध भारती के हेड रहे। उन्होंने विविध भारती को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जाने माने शायर और विविध भारती के हमारे पुराने साथी राजेश रेड्डी विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं और मैं उनका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं।
2: बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस और विविध भारती पूरे परिवार को। इस पूरे परिवार से बरसों बाद 13-14 साल बाद एक मुलाकात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और विविध भारती के श्रोताओं से भी इस बहाने मिलना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस, विविध भारती।

0: परिवार को।
1: मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी वो जमाना लौट आया जब आप विविध भारती के मुखिया हुआ करते थे और ढेर सारे काम हम लोग मिलकर एक साथ किया करते थे।
0: जी वो बहुत प्यारा जमाना था, और एकदम तुमसे मिलके और विविध भारती में आने के बाद वो जमाना फिर एकदम तरोताजा हो गया, और वो ऊर्जा, वो उत्साह, वो उमंग और श्रोताओं के साथ वो लगाव एकदम आंखों के सामने आ गया। जी खुश हुआ। जी
1: क्या बात है। अच्छा, आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की यात्रा की तरफ अग्रसर है। एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक सामाजिक योगदान रहा है, चेतना का योगदान रहा है आकाशवाणी का। तो 90 बरस की इस यात्रा के बारे में जानकर आपकी क्या कैफियत है और आप क्या कहना चाहते हैं?
0: इस यात्रा का तो कोई भारत में खास तौर से पूरे भारत को सांस्कृतिक रूप से और भाषा के तौर पर जोड़े रखने का इससे अच्छा माध्यम, क्योंकि बाकी जो संचार माध्यम है उनमें भाषा, अखबार की बात करें या किताबों की बात करें, टीवी तो खैर बहुत बाद में आया, तो ये आकाशवाणी था जो देश के कोने कोने में, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो मैदान हो, गांव हो, बसा हुआ शहर हो, सब जगह अगर पहुंचती तो आकाशवाणी की ही थी। और एक से दूसरे से जोड़ने का जो काम आकाशवाणी ने किया उसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती कि कितने अच्छे ढंग से ये काम हुआ और हो रहा है।
1: बिल्कुल। अपने बचपन की तरफ अगर लौटें तो रेडियो को आप किस तरह से अपने बचपन में देखते हैं, किस तरह से प्लेस्ड था रेडियो और कितनी सुनहरी यादें आकाशवाणी से जुड़ी हैं?
0: और यूनुस, कमाल की बात यह है कि अब सारा बचपन जो है वो उस जमाने में, और आज के जमाने में तो सोशल मीडिया और जाने क्या कुछ हो गया है, हम लोगों का बचपन रेडियो सुन सुनकर ही बढ़ा। उसमें जो कुछ भी संस्कार आए, सुनने के भी, सीखने के भी, बोलने के भी, समझने के भी, ये सब संस्कार आकाशवाणी ने दिए। और जिसको सुनते सुनते कि ये आवाजें कानों को इतनी अच्छी लगती हैं, फिर वो फिल्म म्यूजिक की तो मैं बाद में बात करूंगा,
1: जी
0: जिनको हम सुनते थे, चाहे रेडियो ड्रामा हो, अनाउंसर हो, अनाउंसर उस वक्त जो है वो पूरे शहर में एक सुपरस्टार हुआ करते थे,
1: जी
0: उनकी
1: जी
0: आवाज सुना, अनाउंसर, न्यूज रीडर्स, ये सब जो है। तो अगर किसी से कहा जाए कि आप रेडियो में काम करते हैं, अच्छा अनाउंसर है आप, ये
1: दर्जा
0: अनाउंसर का वो
1: होता
0: दर्जा
1: था
0: था मतलब, और
1: जी।
0: वो पॉपुलरिटी थी, तो मतलब आप स्टेशन डायरेक्टर हो तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई
1: हाँ
0: जानता ही नहीं आपको,
1: जी
0: लेकिन अगर अनाउंसर है आप, अच्छा तो ये मतलब बड़ी पहचान हुआ करती थी कि आप रेडियो में अनाउंसर है। फिर रेडियो सिंगर होना,
1: जी
0: रेडियो आर्टिस्ट होना, ये बड़ी बातें थी। तो हम जब बचपन में सुना करते थे, तो जयपुर में मेरा सारा बचपन बीता, तो ये सब हुआ। और फिर उसी केंद्र को सुनते सुनते युववाणी इंद्र शुरू शुरू हुआ था,
1: जी जी
0: तो जयपुर के जो पहले युववाणी वाला बैच था उसमें हमें सौभाग्य मिला कि हम पार्टिसिपेंट के तौर पर एक
1: क्या
0: कवि के रूप
1: बात
0: में,
1: है
0: एक
1: जी।
0: ड्रामा आर्टिस्ट के रूप में ऑडिशन दिया, क्लियर हुए और फिर उसका हिस्सा बने। तो वही युववाणी कार्यक्रम जिसकी शुरुआत ही हम कलाकार थे, पार्टिसिपेंट थे, फिर उसी को हमने एज अ प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव
1: जी
0: उसको प्रोग्राम को संभाला आकाशवाणी ज्वाइन करने के बाद। और फिर जो मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ ये कि आज
1: हाँ
0: मैं विविध भारती में बैठ के ये बात बड़े गर्व से कहना चाह रहा हूँ कि बचपन में फिल्म म्यूजिक, और उस जमाने का फिल्म म्यूजिक का तो खैर कहना ही क्या,
1: जी
0: तो जिनको जिस चैनल को सुन सुन के, वो संगीत सरिता, वो सारे कार्यक्रम और बड़ी बड़ी आवाजें, बड़े बड़े संगीतकार, फिल्म म्यूजिक, तो जिन जिनको सुन के हम लोग बड़े हुए, विविध भारती चैनल को मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि मैं उसी चैनल में आऊंगा,
1: जी
0: और न सिर्फ आऊंगा
1: बल्कि हेड करेंगे।
0: उसका कार्यक्रम का मतलब मुझे संचालन करने का मौका मिलेगा, उसको निर्धारित करने का मुझे मौका मिलेगा, प्लान करने का मौका मिलेगा, और पूरे चैनल को मैं अपने ढंग से चला पाऊंगा, देख पाऊंगा। तो ये मेरा सौभाग्य था कि जिस चैनल को सुनते सुनते मैं बड़ा हुआ,
1: वाह वाह वाह,
0: उसी चैनल से मैं रिटायर हुआ, और अच्छे ढंग से रिटायर हुआ, कि मेरी एक अच्छी टीम थी जिसमें यूनुस, एक से एक टेबल, मैं क्या नाम लूं, और पूरी अच्छी टीम, और उनकी वजह से हम अच्छे अच्छे प्रोग्राम शुरू कर सके, चला सके, और आज भी वो चैनल बहुत पॉपुलर है दुनिया
1: क्या
0: भर का।
1: बात है क्या बात है। मुझे याद आता है आपके साथ काम करने का वो पूरा दौर। कितनी प्यारी आपने बात कही है, युववाणी से आपकी शुरुआत हुई और जयपुर के पहले युववाणी के बैच में आप रहे हैं। न जाने कितने लोगों की यादें ताजा हो गई होंगी। मेरी अपनी खुद की याद इसलिए ताजा हो गई कि मैंने भी अपनी रेडियो की शुरुआत युववाणी से ही की है, तो वो जो जहन में युववाणी की सिग्नेचर ट्यून बजने लगी जिस तरह की वो होती थी। पर क्या ये रेडियो तक का रास्ता आसान था या वो रास्ता बहुत सारे डिबेट्स और कल्चरल एक्टिविटीज से होता हुआ पहुंचा है?
0: हाँ नेचुरली ये आप एकदम अचानक आकाशवाणी में नहीं जा सकते, को एक सांस्कृतिक लिटरेरी बैकग्राउंड तो आप में होना ही पड़ेगा,
1: बिल्कुल,
0: उसके बगैर आप आकाशवाणी में एंटर नहीं कर सकते, कम से कम आर्टिस्ट के तौर पर या पार्टिसिपेंट के तौर पर। और उस वक्त तो शर्तें और भी ज्यादा, वो आकाशवाणी का एक तरह से जयपुर आकाशवाणी ड्रामे के मामले में नंबर वन था।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बड़े दिग्गज,
0: बड़े दिग्गज लोग, नंदलाल शर्मा जी, फिर ओम शिवपुरी, ये सब लोग वहां पे,
1: गंगा प्रसाद जी,
0: हाँ हाँ, तो ये सब जो उसका मेयार था वो ऐसा था कि पूछे मत। जब हम आकाशवाणी में एंटर, उससे पहले हम लोग रंगमंच, कवि सम्मेलन, साहित्य, ये सब कर चुके थे
1: जी,
0: और
1: जी,
0: कर रहे थे, है ना। तो उसके साथ ये हम ऑडिशन देने गए, उत्तर से सेलेक्ट हुए और पार्टिसिपेंट के तौर पर उसमें हिस्सा लिया। तो ये सफर जो है आकाशवाणी का सफर, पहले मेरा अपना रचनात्मक सफर शुरू हुआ और वो फिर आकाशवाणी के जरिए आगे बढ़ा। ये
1: बहुत ही शानदार बात है। जयपुर में जब आप पढ़ रहे थे तो आपने कहा कि रंगमंच और बाकी कल्चरल एक्टिविटीज में आप शामिल थे, तो रंगमंच की अपनी एक्टिविटीज के बारे में बताइए।
0: रंगमंच का यूं था कि मैं थोड़ा अपना पारिवारिक पहले बैकग्राउंड बताऊं कि मैं, हमारे परिवार में संगीत का परिवार रहा है। हमारे पिताजी बाकायदा गायक रहे और आकाशवाणी जयपुर के उस वक्त ए ग्रेड आर्टिस्ट में से वो सुगम संगीत के गीत, गजल, ये सब गाना उनका रहा। और न सिर्फ वो गायक थे बल्कि उन्होंने जयपुर में एक राष्ट्रीय तरुण कलाकार परिषद और श्रुति मंडल, ये दो सांस्कृतिक मतलब कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कौशल भार्गव साहब के साथ मिलकर खड़ी की, जिसने साल भर में बड़े बड़े कंसर्ट, म्यूजिकल कंसर्ट और बड़े बड़े उस्ताद, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े गुरु, तो इन सबको हमने बचपन से उनको आमने सामने बैठ के सुना, उनके आसपास घूमे, कई लोग हमारे घर भी आए। तो वो माहौल जो था बचपन का, वो सांस्कृतिक माहौल हमें बचपन से मिला।
1: हम यहाँ एक पल के लिए रुकना चाहता हूँ कि जिस किसी को भी आपके बारे में बताएं तो लोग सोचते हैं कि आपका ताल्लुक तो कहीं आंध्रा से होना चाहिए, तो जयपुर से होते हुए लोगों को थोड़ा ताज्जुब होता है, इसके बारे में।
0: बिल्कुल सही है, वो नाम से भी बिल्कुल है कि, और ये सही है कि हम लोग मूल रूप से आंध्रा के ही हैं, तेलंगाना के हैं, हमारे पिताजी माताजी सब वहीं के रहे, लेकिन मेरा ननिहाल नागपुर और मेरी पिताजी जो पोस्ट सेंट्रल ग्राफ्स में डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनकी पहली पोस्टिंग भी नागपुर में ही थी, तो मेरा जन्म भी नागपुर में हुआ। लेकिन आंध्रा में हमारा संपर्क लगातार, हम लोग नहीं रहे कभी भी, माताजी पिताजी कभी रहे थे, हम लोग बचपन में कभी शादी ब्याह में गए, साल में एक आध बार घूमने गए, तो आंध्रा उससे पहले हमारे पिताजी माताजी वहां से निकल चुके थे नागपुर, और नागपुर के बाद एक पूरा डिपार्टमेंट पिताजी के सेक्शन का वो जयपुर शिफ्ट हुआ, तो पिताजी जयपुर शिफ्ट हुए, तो हम बहुत बचपन में ही, हम बच्चे लोग जो थे वो जयपुर शिफ्ट हो गए उनके साथ, और फिर मेरी सारी परवरिश, पढ़ाई लिखाई सब जयपुर हुई। तो ये है आंध्रा और जयपुर का।
1: बिल्कुल, ये मुझे लगा कि ये जरूर इस बात के बारे में बात कर लेनी चाहिए। तो गुलाबी नगरी एक तरह से आपके बनने का, एक बुनियाद का शहर रहा है, और आज भी बहुत सशक्त परंपरा रंगमंच और संगीत की जयपुर में रही है। तो आपके जमाने में वो कौन से कलाकार थे जो रंगमंच में बहुत जबरदस्त तरीके से सक्रिय थे? मुझे लगता है कि ओम शिवपुरी वाला दौर था।
0: ओम शिवपुरी उस वक्त एनएसजी जा चुके थे।
1: ओके,
0: हाँ, और हम उस वक्त छोटे थे और हम लोग रंगमंच में एक्टिव हुए हुए थे, देख ही रहे थे, सुन ही रहे थे, और एक सीखने का प्रोसेस जारी था
1: जी।
0: तो जो हमारी बचपन की यादें हैं, मतलब शुरुआती दिनों की यादें हैं, उस वक्त ओम शिवपुरी और सुधा शिवपुरी का तुगलक,
1: क्या बात
0: है, जो इब्राहिम अलकाजी का डायरेक्ट किया हुआ, वो क्लासिक प्ले था, क्लासिक प्ले, और इन दोनों का जो रोल था, मतलब ये मैं इन्हें कह सकता हूं कि ये ओम शिवपुरी, उनको फिल्मों में वो जगह नहीं मिली, उनको वो क्रेडिट नहीं मिला, उनको वो काम नहीं मिला जिसके हकदार थे, वो दिलीप कुमार थे, वो
1: बिल्कुल
0: रंगमंच के दिलीप कुमार थे, वो क्रेज था उनका, और वो जो अदायगी, उनका प्रेजेंटेशन, उनकी डायलॉग डिलीवरी, सब कुछ। तो बचपन से ये ओम शिवपुरी, सिद्धार्थ शिवपुरी, मोहन महर्षि, ये सब लोग, और दिल्ली से प्लेस बराबर आते रहते थे, हम लोग देखते थे अंधायुग
1: जी,
0: ये सब देखे हमने, और एवं इंद्रजीत, ये सब नाटक जो बादल सरकार के सारे। तो रंगमंच की एक अच्छी खासी परंपरा जिसमें जयपुर के लोग तो करते ही थे, दिल्ली से भी बड़े बड़े थिएटर ग्रुप, दिल्ली और कलकत्ता के लोग आते थे, थिएटर फेस्टिवल भी होते थे और क्लासिकल म्यूजिक के कंसर्ट्स भी होते थे।
1: बिल्कुल, आज जयरंगम जैसी चीजें चल रही हैं, तो कैसा लगता है आपको?
0: बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मैं गया हूँ उनके एक फेस्टिवल में, और जहाँ से मकरंद देशपांडे वगैरह हर साल जाते हैं वहाँ पे टीम लेकर के और प्लेज लेके, तो वो एक तरह से थिएटर का माहौल जो है वो रिवाइव कर रहे हैं, और अच्छी ऑडियंस भी आती है वहाँ पे, और अच्छा चल रहा है मुझे
1: जी। और बातें करेंगे आपके बचपन की, हम यहीं इसी वक्त में थोड़ा ठहरना चाहेंगे। मुझे लगता है कि जिस जिस दौर की हम बात करें, उस दौर की याद के नाम एक गाना होना चाहिए, तो हाय रे वो दिन क्यों ना आए,
0: हाँ,
1: अनुराधा
0: बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा
1: है ना, ये गाना सुनते
0: मेरा पसंदीदा गाना है
1: बिल्कुल।

0: हमने ये गाना सुना, हाय रे वो दिन क्यों ना आए, शैलेंद्र का लिखा, पंडित रविशंकर का स्वरबद्ध किया ये गाना, अनुराधा फिल्म का, ऋषिकेश मुखर्जी की ये फिल्म थी। उस दौर में फिल्म म्यूजिक और फिल्मों से किस तरह का ताल्लुक था, जयपुर में फिल्में देखने की और टॉकीजों की भी एक बड़ी शानदार सी परंपरा रही है।
1: जयपुर में एक से एक थिएटर थे
0: जी,
1: और उस वक्त ये राज मंदिर, कभी नाम सुना हो?
0: बिल्कुल
1: हाँ, तो राज मंदिर मेरे ख्याल से भारत का अकेला ऐसा थिएटर था जो बिल्कुल राज मंदिर, और उसमें राज वाला वो भी था
0: जी,
1: शाही अंदाज उसका, तो वो लोग देखने आते थे। फिल्म तो बाद में, थिएटर पहले देखते
0: हाँ,
1: थे।
0: वो टूरिस्ट मैप पर था
1: वो थिएटर का अपना क्रेज था उसका
0: जी।
1: तो राज मंदिर, जेम, पोलो विक्ट्री, ये सब उस वक्त फिल्में भी, मतलब आज कहीं नहीं इतने करोड़ उतने करोड़, मतलब 100 दिन चली, ये बड़ी बात होती थी।
0: बिल्कुल
1: है ना, इसने 100 दिन पूरे किए। तो उस वक्त वो जमाना था जब जब हम लोग फिल्में देखते थे, तो ये सब बड़े बड़े थिएटर थे। और फिल्मों का तो खैर दौर ही अलग था, हम कभी कभी स्कूल से भी भाग के देखा करते थे ये सब भी होता था
0: जी, और ये तो हुआ है, लेकिन स्कूल से भाग के देखना भी हुआ है।
1: उपकार जैसी फिल्म हमने देखी थी,
0: वाह वाह,
1: और कई फिल्में थी, और लंबी लंबी लाइनें
0: जी,
1: और आपको टिकट मिल जाए बड़ी बात, तो ये वो दौर देखा है हमने, जबकि थिएटर में जाकर फिल्म देखना और स्कूल से भाग के भी देखना और टिकट के लिए धक्का मुक्की होना, ये सब दौर देखा है। और फिल्म म्यूजिक का तो ये था कि सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट वही था, घर में रेडियो चल रहा है, विविध भारती चल रहा है, फिल्मी गाने कहीं लता जी हैं, कहीं आशा जी हैं, कहीं रफी जी हैं, कहीं मुकेश हैं, कहीं मन्ना डे हैं, तो ये सब चलता था। और हमारे क्योंकि संस्कार में म्यूजिक भी था और म्यूजिक ही था
0: जी,
1: मैं अपने घर में नहाने में सबसे ज्यादा टाइम लेता था।
0: अच्छा, क्योंकि गाना चलता था
1: ये, गाना चलता नहीं था
0: जी,
1: मैं गाता रहता
0: था, खुद गाते थे
1: तो वो घर वाले भी बार बार तो मुझे फिल्मी गानों का शौक
0: जी,
1: गुनगुनाने का शौक वो बचपन से था। फिर वो संस्कार में ऐसा है कि फिर उस पर धुने भी बनाने लगा और बाकायदा परफॉर्म भी करने लगा, वही का अलग दौर। फिल्मी गानों का ये असर, फिल्म म्यूजिक का मेरी जिंदगी

0: पड़ा रहा।
1: क्या बात है, और तब से ही ये गायकी वाला मामला आपका?
0: हाँ, मेरे कहने गायकी तो हमारे परिवार में पिताजी बड़े भाई साहब आज भी गायक हैं, वो सिखाते भी हैं, तो संगीत और गायकी का एक वो जो अंग है वो हमारे संस्कार में है। लिखना पढ़ना साहित्य में मैं बाद में आया उस तरह से।
1: जी, रंगमंच वाली आपकी एक्टिविटीज में वो कौन से नाटक याद आते हैं जिनका यहाँ जिक्र हो जाए?
0: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया
1: जी।
0: वो एक लड़कपन का दौर था हमारा, मतलब बीए का दौर ही था। हम उम्र लोगों ने हमने एक टीम बनाई और मैंने उसका नाम दिया ग्रुप का विकल्प
1: जी।
0: वो अभी भी चल रहा है, वो हमारे जो दोस्त है वो चला रहा है, हरि नारायण उसका नाम है। तो हम चार लोगों ने मिलकर एक विकल्प नाम की संस्था बनाई और उसके साथ मैं लिखता था और डायरेक्ट करता था और एक आध कभी कभी छोटा मोटा रोल जरूरत पड़ी तो कर लिया। तो उससे हमने एकांकी से शुरुआत की और उस वक्त मैं ज्यादातर राजनीतिक व्यंग और पॉलिटिकल सटायर और ह्यूमर यही मेरा विषय रहा, तो उस पर ज्यादा काम हुआ और उस तरह के नाटक मैंने लिखे भी। नाम से ही समझ जाओगे कि होशियार समाजवाद आ रहा है,
1: वाह वाह,
0: नेता कुर्सी प्रसाद सिंह,
1: क्या बात है।
0: और एक नाटक जिसको बहुत ज्यादा जिसके हमने शोज किए भूमिका, जिसको उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी का ड्रामा कॉम्पिटिशन में बेस्ट ड्रामा का अवार्ड भी मिला, और एक नाटक मराठी, क्योंकि हम जिस कॉलोनी में रहते थे तो वो बहुवर्षीय कॉलोनी थी, मतलब एक छोटा भारत था वो।
1: हाँ हाँ हाँ हाँ,
0: उसमें गुजराती, मराठी, सिंधी, पंजाबी, सिख, मुस्लिम, सब मतलब कोई भेदभाव ही नहीं था। मतलब आज इस घर में घुस गए, कल उस घर में घुस गए, सब मिलजुल के खेल रहे हैं, होली हो, ईद हो और गणेशोत्सव हो। तो गणेशोत्सव यहाँ के बाद कई लोगों को पता लगता है गणेशोत्सव क्या है, ये हमने जयपुर में देख चुके हैं।
1: वाह वाह,
0: तो उनकी एक्टिविटीज में शामिल होना, सब कुछ करना, तो मराठी लोगों के साथ उठना बैठना बचपन से रहा, तो मराठी नाटकों का मैंने अनुवाद भी किया।
1: गजब।
0: तो एक नाटक था शाम फड़के का, कॉमेडी, काका की शाचा, जिस पर मराठी में फिल्म भी बनी।
1: हाँ हाँ,
0: तो उसका मैंने कौआ चले हंस की चाल,
1: क्या बात है,
0: इस नाम से किया, और वो जयपुर का पहला नाटक था जो टिकटेड हाउसफुल रहा।
1: वाह,
0: रविंद्र मंच पर टिकटेड हाउसफुल वो पहला नाटक था जो विकल्प ने किया, हमने किया और खूब प्रसन्न किया और उसके बहुत शोज हुए।
1: हम जब असरानी साहब के बारे में सुनते हैं तो वो भी काफी रंगमंच पर सक्रिय थे और जयपुर में थे, जयपुर की एक बड़ी शख्सियत रहे, कभी उनसे आमना सामना हुआ उस दौर
0: नहीं
1: में?
0: मेरा ये रहा कि वो असरानी साहब से बहुत अरसे बाद एक किसी फंक्शन में यहाँ पे मिलना हुआ।
1: अच्छा,
0: लेकिन उस दौरान में नहीं, वो जयपुर से जा चुके थे
1: उस दौर में जब आप
0: तो वो तो हमसे काफी से, तो लेकिन उनकी एमआर रोड से 5 बत्ती के पास में ही सब बताते थे कि ये असरानी साहब के भाई की दुकान है,
1: जी
0: वो उनकी एक कपड़ों की दुकान थी।
1: बिल्कुल।
0: फिर हमारे जो सीनियर पिंचू कपूर, आपने नाम सुना होगा,
1: जी जी बिल्कुल,
0: पिंचू कपूर, ओम शिवपुरी, ये सब ये हमारे सीनियर लोग, मतलब जो निकल चुके थे हमारे जमाने से पहले ही।
1: हाँ
0: तो
1: हाँ।
0: लेकिन इनको सुन सुन के, मतलब ये हमारे लिए वो स्टार थे कि जयपुर के ये लोग हैं जिन्होंने नाम कमाया, बड़े लोग थे ये।
1: क्या प्यारी बात है। अच्छा, जब आप आकाशवाणी से जुड़े और युववाणी करने लगे उस समय भी तो जयपुर आकाशवाणी जो है वो एक बहुत ही बुलंद संगठन था और बहुत बड़े बड़े लोग आकाशवाणी से जुड़े थे, किन हस्तियों के सानिध्य में सीखने को मिला आपको?
0: बहुत बड़े नाम थे और बहुत जयपुर, मैंने कहा ना जब नाटक में तो नंबर वन हुआ करता था, हवा महल में मैक्सिमम उसके प्लेस हुआ करते थे, और उसके अलावा वहां पे जो आधा आधा घंटे के या एक एक घंटे के नाटक हुआ करते थे वो कमाल थे। मतलब उसमें नंदलाल शर्मा, आपके नाम सुना,
1: बिल्कुल,
0: गणपतलाल डांगी,
1: हाँ,
0: जिनका हवा महल में
1: काफी आज भी हवा महल में उनके नाटक ब्रॉडकास्ट होते हैं,
0: रंजना चौधरी, तो ये एक से एक नाम थे और एक से एक आर्टिस्ट थे और जिनके प्लेज लोग बहुत पसंद करते और इंतजार करते थे ये।
1: जी, और आकाशवाणी जयपुर जो है वो जयपुर अजमेर था तब भी।
0: हाँ, क्योंकि अजमेर इंडिपेंडेंट स्टेशन नहीं था
1: जी,
0: वो सिर्फ रिले सेंटर था, तो जयपुर अजमेर ही बोला जाता था उसको।
1: अच्छा,
0: और आज भी शायद वही होगा कि अजमेर सिर्फ रिले सेंटर है, वहां पे कोई रिकॉर्डिंग या उस तरह का इंडिपेंडेंट ब्रॉडकास्ट नहीं होता है, अजमेर को लिंक किया हुआ है यह है।
1: जी, तो आकाशवाणी में नौकरी का रास्ता किस तरह से खुला?
0: हाँ, मैं उस वक्त एक और पहलू भी था मेरा कि मैं एमए मैंने किया ही किया था
1: जी,
0: और मैं उस वक्त ये राजस्थान पत्रिका,
1: बहुत ही मशहूर
0: हिंदुस्तान
1: अखबार,
0: का उस वक्त राजस्थान का नंबर वन अखबार था हिंदी का, और उसका एक संडे एडिशन शुरू हुआ था
1: जी
0: वो राजस्थान में पहली बार ही हुआ था, पता नहीं दिल्ली और जगह होगा, उसका नाम ही इतवारी पत्रिका था, हर इतवार को आता था, उसका नाम रखा था इतवारी पत्रिका। कर्पूर चंद कुलेश साहब राजस्थान पत्रिका के मालिक भी थे और बड़े पत्रकार थे, तो उन्होंने शुरू किया था, उसमें उन्होंने श्री गोपाल पुरोहित उसके संपादक थे और मैं उनके साथ सहायक संपादक के तौर पर लगा। 3 साल मैंने वहां काम किया और वो हर

0: बार उसमें कॉलम भी लिखता था, इंटरव्यू भी करता था, ये सब होता रहा। उसी दौरान ये आकाशवाणी की ये वैकेंसी निकली थी यूपीएससी की, तो मैंने भी अप्लाई कर दिया और संयोग से सेलेक्ट हुआ। यूपीएससी में इंटरव्यू दिया, सब हो गया और पहली पोस्टिंग मेरी आई जालंधर।
1: अच्छा,
0: ये 1980 की बात है,
1: क्या बात है।
0: 19 नवंबर, हाँ 1980 में, तो पहली पोस्टिंग मेरी जालंधर हुई। मैंने वहां ज्वाइन किया, 1 साल वहां काम किया, फिर
1: तो वहां
0: जयपुर।
1: तब पता चला था कि ये वो स्टेशन है जहां जगजीत सिंह गाया करते थे।
0: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सब, और जगजीत सिंह, सुदर्शन फकीर,
1: जी,
0: इन लोगों के नाम से
1: ऐतिहासिक स्टेशन है
0: वो,
1: जलंधर।
0: और वहां पे पंजाबी के बड़े बड़े लोग थे, मतलब
1: बिल्कुल,
0: पंजाबी राइटर्स, सोहन
1: यस
0: सिंह मीशा,
1: जी,
0: और मतलब ऐसे नाम जो बाद में साहित्य अकेडमी में अवार्ड जिनको मिला, सुरजीत पातर, ये सब लोग वहां पे मतलब एक्टिव लोग थे, पार्टिसिपेंट के तौर पर आते थे, सुरजीत पातर लुधियाना से, सब कुछ। तो जलंधर भी उस वक्त पंजाब का जयपुर था, एक तरह से
1: बिल्कुल।
0: पंजाब का जयपुर था वो। वहां बड़े अच्छे नाटक, बड़े अच्छे आर्टिस्ट, और बहुत एक्टिव शहर था।
1: जी
0: तो मेरा बहुत अच्छा वक्त गुजरा, और मेरे जो सीनियर थे वो सारे पंजाबी लोग थे, मतलब हिंदी वाला मैं अकेला था वहां पे।
1: हाँ
0: हिंदी का
1: हाँ
0: प्रोग्राम मैं ही संभालता था वहां पे, हिंदी का पैक्स था वहां पे मैं, लेकिन एक से एक प्रोग्राम, और पंजाबी ऐसी भाषा थी कि जो समझने में उतनी मुश्किल नहीं
1: दिक्कत
0: थी,
1: नहीं
0: मतलब।
1: थी जी।
0: तो मेरा अच्छा वक्त गुजरा जी,
1: कितने वक्त तक आप जलंधर
0: एक
1: में
0: साल
1: रहे
0: एक साल
1: जी, और किन हस्तियों से आपका बहुत करीबी ताल्लुक रहा लिटरेचर की?
0: मैंने बताया ना, सोहन सिंह मिश्रा,
1: जी
0: और फिर उर्दू के भी कई लोग थे वहां पे,
1: जी
0: जो सुरजीत पातर, वो उस जमाने में उनसे मिलना हो गया था, जो बाद में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिले, मेरे सब कुछ में
1: बिल्कुल।
0: विशा साहब को मिला। हाँ,
1: तब तक आपका लिखना शुरू हो चुका था
0: लिखना तो मेरे जयपुर में शुरू हो चुका था,
1: जी।
0: लेकिन मैं उस वक्त मैं गीत लिखता था, शुरुआत मेरी मंच से हुई, गीत लिखता भी था, छपते भी थे, सब कुछ। और गीतकार के तौर पर मैं राजस्थान में जगह जगह कवि सम्मेलनों में भी जाया करता था। उदयपुर में जब कवि सम्मेलन हुआ, तो पहला जो मेरा बड़ा ब्रेक था, या पहचान या आत्मविश्वास जिसे मिला, तो नीरज जी का तो बोलबाला था उस वक्त, गीतों के राजकुमार थे,
1: बिल्कुल
0: पूरे उनके
1: बिल्कुल।
0: नाम से पूरा क्राउड इकट्ठा होता था, हजारों लोग इकट्ठा हो जाते थे।
1: सुबह तक
0: तो
1: लोग सुनते
0: हाँ,
1: थे और सबसे
0: तो
1: लास्ट में उन्हें
0: हाँ
1: पढ़वाया
0: तो
1: जाता था
0: जी, और मेरा वो शुरुआती दौर था,
1: जी।
0: तो नीरज जी थे वहां पे, वो मुख्य कवि तो थे ही थे। तो मैंने जब वो गीत पढ़ा अपना, तो ये नीरज जी ने आशीर्वाद देने का उनका तरीका था, उन्होंने बहुत प्यार दिया, पहचान, और अपने गले की माला मेरे गले में जब मैं पढ़ रहा हूं तभी आके डाल दी।
1: अरे
0: तो ये
1: गजब,
0: एक आशीर्वाद था जो मुझे
1: क्या
0: मिला।
1: बात
0: जो
1: है। क्या वो गीत याद है आपको?
0: हाँ, जो वो मेरे काफी पढ़ाई इधर उधर तरन्नुम
1: जी
0: में सुना हूँ उसको
1: जरूर सर, जरूर, बिल्कुल
0: जी।
1: स्वागत है।
0: जिंदगी की बस्ती में

0: नवगीत का शुरू हुआ था, तो ये
1: जी
0: अंत देख, बात क्या करे कोई हाँफती हवाओं
1: हाफती हवाओं से
0: से,
1: क्या बात है।

0: क्या बात है, क्या बात है।
1: थैंक यू,
0: जाहिर है कि
1: धन्यवाद।
0: इस रचना से नीरज जी की प्रशंसा तो मिलनी ही थी, और ये आपके लिए बहुत यादगार लम्हा रहा
1: वो
0: होगा।
1: बिल्कुल, और एकदम शुरुआती दौर में इतने बड़े हस्ती का
0: जी
1: आशीर्वाद मिलना और प्रोत्साहन मिलना, तो वो एकदम यादगार और बहुत आत्मविश्वास देने वाला लम्हा था, एक सफर को आगे बढ़ाने वाला होता था।
0: जब आप घर लौटे इस कवि सम्मेलन के बाद, तो

0: पिताजी की कैफियत थी, उन्हें क्या बताया?
1: वो बहुत खुश हुए, लेकिन मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे पिताजी, मैंने कहा वो गायक थे और संस्था चला थे सब कुछ, लेकिन एक अलग तरह के पिता थे वो, बिल्कुल बहुत कम बोलना, मतलब उनसे हमारा संवाद जो है ना
0: मिनिमम,
1: हमारे नाटक भी देखते थे, आते थे देखते थे, लोग खुश हो रहे हैं तालियां बजा रहे हैं या सब कुछ, या कभी सलून में भी आते थे कभी, तो वो आके देखा और चले आए घर पे। अखबार में भी कॉलम लिखता था, हर वक्त संडे आता था, पढ़ते थे सब कुछ था, लेकिन वो खुद अपनी तरफ से कभी, वो दौर था तो हो सकता है कि आज तो अगर हम अपने बच्चों से दोस्त की तरह से बात करते हैं,
0: जी
1: पिताजी का एक डिस्टेंस हमेशा रखते थे या
0: तो आपके
1: था।
0: जहन में हमेशा ये सवाल रहता होगा कि अच्छा
1: हाँ
0: लगा है कि नहीं, क्या
1: हाँ
0: चल रहा है मन
1: तो
0: में।
1: बस वो उनको सूचना जरूर हो, और हमारे संवाद माँ से होता था,
0: जी
1: उनसे खूब मतलब हंसी मजाक बोलना चलना साहब, नाराजगी या गुस्सा या सब कुछ पिताजी से घर में जो था, लेकिन वो खुश तो होते थे, बहुत खुश
0: जी
1: होते
0: जी
1: थे,
0: जी
1: लेकिन वो डायरेक्ट इस तरह से बोलते नहीं थे,
0: वो
1: बताते
0: दौर
1: नहीं
0: भी ऐसा था कि पिताओं से
1: थे।
0: संवाद बहुत कम हुआ करता था। मां की स्मृतियां हमारे साथ बांटिए कि उनसे क्या कुछ आपने सीखा है, और आपकी शख्सियत में उनका क्या योगदान है, और आपकी कामयाबी उन्हें कितना खुशी दी
1: नहीं
0: देकर
1: बिल्कुल, ये
0: गई।
1: पारिवारिक रूप से अगर देखें तो पिता ने माहौल दिया,
0: जी
1: पिता ने माहौल दिया, मतलब अगर मैं कलाकार बना हूं या कलाकार कला के क्षेत्र में हूं तो वो पिता के संस्कार हैं, पिता ने जो माहौल दिया बचपन से, अगर आप देखें तो कुमार गंधर्व, भीमसेन जोशी, रविशंकर, बुद्धदेव मुखर्जी, राजन साजन मिश्र, अमजद अली खां, बड़ा
0: बाप
1: कोई
0: रे,
1: नाम लीजिए, कोई नाम लीजिए जिनको हमने बचपन में आगे बैठ के
0: आमने
1: सुना
0: सामने
1: है,
0: देखा। जी
1: आमने सामने देखा, उनके आसपास घूमे बैठे, गिरिजा देवी, बेगम अख्तर,
0: बाप रे,
1: कोई नाम लीजिए, तो वो सब हमने देखा है और उनके साथ उठे बैठे हैं, कई लोग हमारे घर आए है ना, तो ये माहौल पिताजी ने दिया, उसके बगैर हमारे संभव नहीं था कि हम उस दुनिया को देख सकते, इन बड़े लोगों को देख सकते, इन हस्तियों, तो वो उनको सुन सुन के भी संस्कार हुए, संगीत जो है वो इस तरह से भी संस्कार में आता है, एक तो बाकायदा आप गुरु से सीखते हैं और एक सुन के भी सीखते हैं, तो वो हमने उस तरह से सीखा, तो पिताजी ने माहौल दिया, संस्कार दिया, माँ ने जो है वो एक पूरा प्रोटेक्शन कहना चाहिए। मैं बात करूं तो हमारी कॉलोनी में जो मैंने कहा ना वो एक मिनी भारत था वो,
0: जी जी
1: लेकिन मेरा बचपन बिल्कुल विपरीत था, मैं अपनी कॉलोनी के चंद शैतान बच्चों में से एक था।
0: ये तो नया खुलासा है हमारे लिए।
1: मतलब खेलना कूदना ही तो सही है ही, सभी बच्चे करते सब कुछ, लेकिन छेड़ने की आदत जो है ना,
0: हाँ,
1: किसी के साथ भी मजाक कर लेना, किसी को
0: तंग
1: आते
0: कर
1: जाने को
0: लेना।
1: तंग करना या मस्ती करना,
0: जी
1: तो कहीं ना कहीं एक या दूसरे दिन में कोई
0: शिकायत आती थी।
1: शिकायत माँ के पास आती थी कि आज इसने ये क्या, और मेरा बचपन का नाम छोटू था।
0: अच्छा, क्योंकि आप छोटे थे इसलिए।
1: हाँ, मेरे बड़े भाई साहब थे, मैं
0: जी
1: नंबर दो था, तो
0: जी
1: पहले नाम ऐसे ही रखे जाते घरेलू
0: बिल्कुल
1: नाम,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: बड़े भाई साहब श्याम और मेरा नाम छोटू।
0: जी,
1: खैर, तो वो छोटू की शिकायत जो है
0: रोज आ रही है।
1: मतलब हर दूसरे दिन या हर दिन जो है वो, आज इसने ये किया, आज इसने वो किया, ये सब चलता रहता था, तो वो माँ थी जो
0: प्रोटेक्शन।
1: संभालती थी, और कभी कभी वो पिता तक पहुंच जाती थी बात, और
0: हाँ।
1: पिताजी जिस ढंग से पेश आते थे वो तो वो मैं भूल नहीं सकता।
0: उसका जिक्र ना ही करें तो अच्छा।
1: तो ये एक अच्छा बचपन बीता,
0: जी
1: और माँ ने जो है वो, क्योंकि पिताजी का यही था कि वो दिन में नौकरी करना, आना, फ्रेश होना, चाय पीना और कपड़े वपड़े बदल के सीधा रविंद्र मंच,
0: अरे
1: मतलब घर में
0: गजब।
1: वो पारिवारिक उसके पिता नहीं थे,
0: हाँ, वो अपनी दुनिया
1: वो
0: उनकी।
1: अपनी दुनिया थी उनके, बस आए सुबह ऑफिस चले गए, शाम को आए और फ्रेश हुए, चाय वाय पी और फिर सीधा रविंद्र मंच, फिर वहां से लौटे, खाना वाना खाए, सो गए, मतलब
0: हाँ।
1: बच्चों से भी उनका उस तरह संवाद नहीं होता था, तो वो माँ थी जिनसे मैंने कहा ना कि वो तो परिवार में पारिवारिक माहौल का जो और पारिवारिक मजबूती जो है, खुलापन भी, छूट भी, वो सब माँ से मिली।
0: क्या बात है। और क्या आपकी रचनाओं में मां झलकती हैं?
1: उस तरह से तो डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन कहीं कहीं जैसा बचपन हमने गुजरा, तो वो एक लोअर मिडिल क्लास का जो मिडिल क्लास मतलब सरकारी कर्मचारी जो है
0: बिल्कुल
1: उनकी कॉलोनी थी, तो हम उसी में, तो लेकिन बहुत खुशहाल, मतलब मैं अपने आप को अगर आप देखूं तो हो सकता है आर्थिक रूप से हम लोग बहुत लोअर मिडिल क्लास ही कहना चाहिए उस वक्त, लेकिन एक बहुत ही सांस्कृतिक रूप से समृद्ध खुशहाल परिवार थे, और मुझे अपने बचपन की बहुत अच्छी यादें हैं, मैं खुशहाल हूं जी।
0: क्या बात है। इतनी सुंदर बातें हो रही हैं और इतनी जज्बाती बातें, तो मुझे लगता है कि यहाँ आशीर्वाद फिल्म का गाना सुनते हैं,
1: हाँ,
0: एक था बचपन,
1: एकता बचपन
0: क्योंकि
1: जरूर,
0: ये जो
1: बिल्कुल
0: बचपन
1: बिल्कुल
0: के जो दिन है उनके
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: उनके नाम ये गाना है।
1: बिल्कुल जी।

0: बचपन की बातें हमने की रेड्डी साहब, और ये वो बातें हैं जो इसलिए जरूरी थी कि वो कौन से तत्व थे जिन्होंने आपको बनाया। लेखन की दुनिया में उस समय में जब आप धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे थे, तो आपके आदर्श कौन थे और क्या कोई था जो आपकी रचनाओं को सुधारे या जो आपको मार्गदर्शन दे वहां पर जयपुर में?
1: जी, जयपुर में जैसे मैंने कहा कि मैं गीत से शुरू हुआ था, तो मेरे दो बड़े लोग थे जो मेरे काव्य गुरु भी मैं जिन्हें मान सकता था और जो मुझे मार्गदर्शन भी देते थे, आशीर्वाद भी देते थे। एक थे तारा प्रकाश जोशी
0: जी,
1: और एक हरिराम आचार्य। हरिराम आचार्य ने फिल्मों में भी लिखा।
0: जी जी,
1: मेहंदी रंग लाई,
0: डांसिंग जी के साथ उनके गाने हैं बहुत सारी फिल्मों के।
1: और तारा प्रकाश जोशी जी आईएएस ऑफिसर थे।
0: अच्छा।
1: लेकिन गीत में उनका कोई जवाब नहीं था, मतलब इतने बड़े गीतकार थे वो राजस्थान के। मतलब एक पंक्ति यूनुस में बताऊंगा उनकी, विरेक गुरु तुम्हें देखते से, मेरा वेतन ऐसे रानी, मेरा वेतन
0: ऐसे रानी,
1: ऐसे रानी जैसे गर्म तवे पर पानी।
0: ओ हो, क्या अद्भुत है। हा? क्या अद्भुत है,
1: जैसे गर्म तवे पर पानी,
0: क्या बात है।
1: ऐसी पंक्ति मतलब मैंने नहीं सुनी।
0: क्या बात है, क्या बात
1: नहीं सुनी। तो ऐसे लोग मेरे आदर्श थे, मेरे गुरु थे, जिनके साथ
0: गजब,
1: बैठता
0: गजब,
1: था।
0: गजब, ये जीवन में कभी भूलेगा नहीं, ये इतनी अद्भुत है।
1: मेरा वेतन ऐसे रानी जैसे गर्म तवे पर पानी,
0: तुरंत खत्म। वाह वाह।
1: तो और हरिराम आचार्य जी के तो
0: बिल्कुल मेरी भी मुलाकात रही
1: है। तो ये लोग थे जिनसे सीखा। लेकिन मेरे साथ अच्छी बात रही आप संस्कारों में, जिसने मुझे आगे थोड़ा गंभीर लेखन की तरफ रखा, सिर्फ मंची नहीं बनाया, वो ये कि मैं बाकी विधाएं भी पढ़ता था। मेरे निर्मल वर्मा, भीष्म साहनी, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, ये सब मतलब फिक्शन भी, उपन्यास भी, आलोचना भी, नामवर सिंह जी भी, मतलब हिंदी में तो एमए किया था, तो हिंदी साहित्य से बराबर जुड़ाव। और फिर बचपन से ही वो हमारे कॉलोनी में, हमारा अखबार परिवार में सिर्फ अखबार था, मतलब किताबें विताबों को वो नहीं था उतना। तो एक कॉलोनी के आगे डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी हुआ करती थी, उसमें सारे अखबार आते थे, मतलब अखबार तो थे ही थे,
0: पत्रिकाएं
1: भी, दिनमान, साप्ताहिक हिंदुस्तान, कादम्बिनी, तो ये मैं इन सबको चार्ट जाया करता था वहां जाकर के, घंटों घंटों वहीं बैठता था। तो और बाकी लोग जो आके चले गए, और मैं अपने अभी इसको पढ़ रहा हूँ, फिर उसको पढ़ रहा हूँ, फिर उसको, मतलब तीन चार टेबल पे मैं, मेरे दो तीन घंटे निकल जाते थे।
0: जी जी।
1: तो बचपन से वो पढ़ने का भी शौक था, संगीत का भी शौक था, तो ये सब चीजें जो है संस्कार में। और फिर जैसे होता है कि ये तो मेरे आदर्श थे और बड़े थे, बाकी फिर उर्दू शायरी की तरफ यूं हुआ कि गीत करते करते फिर हम उम्र लोगों के साथ उठना बैठना है ना, सुनना सुनाना, और फिर मुशायरे भी वहाँ हुआ करते थे जयपुर में, तो बड़े बड़े मुशायरों को सुनना, तो हम उम्र लोगों की टोली में यंग शायर भी थे जिनके साथ उठते बैठते थे। तो जब मुशायरे सुने और उसमें जो शेर का जो दो मिसरों में, दो पंक्तियों में जो
0: सारी बात
1: कह देने का जो जादू वो मुशायरों में देखा, तो फिर वो उस विधा ने मुझे आकर्षित किया, मैं उस तरफ झुका और फिर गजलें कहने लगा। अमरूर लोगों को हमारे जो साथ में थे, अरशद अब्दुल हबीब, इनाम शरर, मजा साहब, तो ये सब लोग सुनते थे, वो सराहते थे और कि ये अच्छा है, अच्छा है। और फिर मैंने बाकायदा गजल के लिए उर्दू स्क्रिप्ट सीखी, मौलवी साहब आते थे, मुझे पढ़ाते थे, सिखाते थे, और फिर मैं बाकायदा गीत से गजल में शामिल हो गया। गजल को मैंने अपनाया।

0: लोगों के साथ उठते बैठते सुनते सुनाते उनसे आश्वस्ति मिली। और एक हमारे बुजुर्ग होते थे, कहना चाहिए टोंक में रहते थे वो, तो वो भी आया करते थे वो, और शाम को बैठे और एक दूसरे को सुनना सुनाना। तो उन्होंने जब ये पहली बार सुनी गजल, तो वो भी चौंक गए, मतलब क्योंकि ये ट्रेडिशनल ढंग की गजल नहीं
1: बिल्कुल
0: है ना।
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: बोले ये, और ये जो जिसको कि गजल की जबान में या उर्दू में टेक्निकली रदीफ कहते हैं, है ना, जो गजल के पंक्ति के आखिर में आती है
1: जी
0: और वो रिपीट होती है हर शेर में, से डरता है। अब ये रदीफ जो है वो अनसुनी सी थी, मतलब
1: और कभी इससे पहले मैंने सुना नहीं
0: हाँ,
1: है,
0: तो खुद
1: और
0: मैंने
1: मुश्किल
0: भी
1: भी है,
0: हाँ
1: बहुत
0: हाँ
1: मुश्किल भी
0: हाँ
1: है इसको
0: मुश्किल भी है,
1: निभाना।
0: तो उसको निभा ले जाना। और उसको तो वो भी हैरान हुए कि ये यार तुम ये रदीफ ले आए और उसको तुमने शेर भी कह दिए और अच्छे शेर कह दिए सब कुछ है। और फिर वो शेर उसने तो मुझे मतलब सबसे ज्यादा प्यार दिया, पहचान दी। तो वो गजल मैं अगर कहें
1: जरूर सर, अरे स्वागत है,
0: तो
1: बिल्कुल
0: जो पंकज जी ने गाई उसकी धुन अलग है,
1: आपकी धुन
0: हाँ,
1: अलग है
0: जो मैं
1: जी,
0: सुनाता हूँ और जिसने मुझे मुशायरों में पहचान दी वो ये गजल।
1: स्वागत है।
0: यहाँ हर शख्स

0: मिट्टी का फना होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है, यहाँ हर शाम। और ये खास शेर है वो।
1: स्वागत है।

0: बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है। खिलौना है जो मिट्टी का फना। यूनुस, इसकी एक शेर और सुनाता हूँ।
1: जरूर सर,
0: ये
1: स्वागत
0: बच्चे वाला जो शेर है उसको सबसे ज्यादा प्यार मिला,
1: जी,
0: ये शेर भी उतना ही सच्चा है।
1: बिल्कुल
0: हम देखते हैं कि हर जिंदगी में हर इंसान की कभी न कभी वो पल आता है कि वो ऊपर वाले से पनाह मांगता है कि बहुत
1: बिल्कुल
0: बहुत हो गया, अब नहीं
1: जी
0: रहा, अब नहीं, बहुत हो
1: जी
0: गया, है
1: जी
0: ना, ये
1: जी
0: आता है। फिर
1: सबके
0: करते हैं,
1: साथ, सबके साथ
0: अरापति खरापति भी खुदकुशी करते हैं, उनके पास क्या नहीं होता,
1: जी।
0: लेकिन वो जिंदगी ऐसे मोड़ पे ले आते कि वो बस बहुत हो गया।
1: हाँ,
0: लेकिन जब ऐसा पल आता है
1: तो आप कहते हैं अजब ये जिंदगी
0: ये,
1: की
0: तो फिर
1: कायदे।
0: हमारे क्या रिएक्शन होते हैं।
1: वाह
0: और कोरोना में तो हमने देखा ही कि कैसे
1: जी,
0: जान बचाते, फिर रहे थे हम
1: बिल्कुल
0: लोग। तो ये शेर है जो सबका सच है,
1: वाह
0: अमीर हो गरीब सबका। यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, अजब ये जिंदगी की कैद है दुनिया का हर इंसान, अजब ये जिंदगी की कैद है दुनिया का हर इंसान, रिहाई मांगता है और रिहा होने से डरता है, रिहाई मांगता है और रिहा होने से डरता है। खिलौना है जो मिट्टी का फना, होने से डरता
1: क्या बात है
0: है।
1: सर, हम
0: थैंक
1: बहुत खुशनसीब
0: यू।
1: हैं कि विविध भारती के स्टूडियो में आप
0: नहीं,
1: मौजूद हैं
0: मेरे
1: और
0: आप लोगों का
1: आपसे ये
0: प्रेम
1: सुन
0: है
1: रहे
0: और
1: हैं।
0: मेरी खुशकिस्मती है। थैंक यू।
1: ये अद्भुत गजल है और हजारों बार तो हमने पंकज जी की आवाज में सुनी होगी, पर जब आपके साथ काम करते थे तब तो हिम्मत नहीं होती थी ये कहने की कि आपसे ये गजल सुननी है। आज ये मौका आया है, बहुत अच्छा लगा, ये बहुत ही अनमोल पल है। रेडियो की तरफ वापस लौटते हैं, और जलंधर में 1 साल बिताने के बाद आप कहाँ गए?
0: उसके बाद मैं अपने होम टाउन जयपुर।
1: जी।

0: मेरे साथ ये भी रहा और अभी भी होता है ये कि मैं शुरू से ही होम सिक रहा।
1: जी जी बिल्कुल।
0: मतलब जलंधर मुझे कोई कमी नहीं थी, बहुत अच्छा
1: हाँ,
0: शहर था, बहुत प्यारे लोग थे, अच्छा
1: अच्छा खान पान था।
0: खान पान था, अच्छा मौसम था,
1: जी
0: सब कुछ अच्छा था, बहुत अच्छा
1: जी
0: था,
1: जी जी
0: केंद्र भी बहुत अच्छा था, लोग भी अच्छे थे, मैं खुश था, सब भी था। लेकिन एक होम सिकनेस होती कि वो मुझे अपने शहर जाना है वापिस, है
1: जी
0: ना। तो मतलब मैंने रिक्वेस्ट की और वो सुन ली गई, मान ली गई, और मैं वापस अपने शहर में आ गया जयपुर।
1: वाह
0: तो मैं
1: वाह।
0: वहां फिर वापस शायद 5 साल जयपुर रहा
1: तो ये
0: उसके।
1: बहुत
0: हाँ
1: ही अनमोल पल रहे होंगे कि जिस स्टेशन में आप बतौर कैजुअल आया करते थे,
0: हाँ
1: युवाणी
0: हाँ हाँ
1: करते थे, वहां आपकी वापसी
0: बिल्कुल
1: होती
0: सही
1: है और
0: बात।
1: अब आप प्रोड्यूसर बनते हैं।
0: और ये भी कमाल थी कि जिस केंद्र में मैं कैजुअल के लिए ऑडिशन देने गया हूं है ना,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: वहीं
1: बिल्कुल
0: मैं एक प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव तौर पर एंटर हो रहा हूं
1: जी
0: और ज्वाइनिंग के लिए सब कुछ है।
1: जी
0: तो और क्या टीम थी वो वहां पे,
1: बिल्कुल
0: करीब बड़े लोग, अच्छे लोग, तो उनके साथ मिलना जुलना हुआ और वो एक अलग अनुभव था। और मुझे जयपुर, मेरा क्रिएटिव जैसा विविध भारती मेरा बाद में हुआ,
1: जी जी जी
0: और इसमें मैंने प्रोडक्शन कम किए लेकिन प्रोग्राम में उनकी परिकल्पना, उनको संवारना या उनको इम्प्लीमेंट करना, ये सब रहा। मेरा क्रिएटिव जो बेस्ट था
1: जी
0: वो जयपुर में था।
1: जी जी जी
0: नाटक लिखना, कंपोज करना,
1: बिल्कुल
0: प्रोड्यूस करना, इंटरव्यूज करना, वो सब जयपुर हुआ। मतलब वो मेरी जो पूरी जलंधर में मुझे आकाशवाणी की जानकारी सब हुई, सब कुछ हुआ। एक लिमिटेड काम था, ये हिंदी का कार्यक्रम अधिकारी था, हिंदी का लिमिटेड उसमें सब कुछ था। जयपुर मेरे पूरा खुला मंच था,
1: बिल्कुल। और फिर आप उस शहर में पले बड़े थे तो
0: पला
1: आप
0: बड़ा
1: सब
0: था।
1: जानते
0: और
1: थे
0: फिर
1: और
0: उसने मुझे, मैंने कहा ना कि मेरे क्रिएटिविटी के सारे पहलू उसमें खुले,
1: जी
0: मेरा लेखक भी खुला, मेरा संगीतकार भी खुला, मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव भी तो तब था ही था। सब कुछ नाटक लिखे, निर्देशित किए, संगीतबद्ध किए, हाँ, म्यूजिकल शो पूरा उसमें हुआ। अभी तो नहीं हो रहा है, उस वक्त जयपुर में और जयपुर के पूरे आकाशवाणी के दौर था कि वो आमंत्रित श्रोताओं के सामने प्रोग्राम
1: कॉन्सर्ट्स होते
0: कर,
1: थे
0: कॉन्सर्ट होते थे,
1: जी।
0: तो उसके लिए भी मतलब तैयार करना, उसके लिए प्लेज लिखना, तैयार करना, गाने लिखना, ये सब जयपुर में हुआ।
1: वाह क्या बात है। तो उस दौर में कौन से नाटक आपने रेडियो के लिए बनाए, उनको कुछ याद कीजिए थोड़ा सा।
0: उसमें एक महत्वपूर्ण नाटक है, राजेंद्र यादव की कहानी थी टूटना,
1: जी जी
0: उसका मैंने रेडियो नाटक रूपांतर किया
1: वाह
0: और उसको प्ले किया और बहुत पसंद किया गया है लोगों के द्वारा। और ये तो हुआ टूटना, एक ज्ञान प्रकाश विवेक की कहानी थी अंधा सूरज,
1: क्या बात है
0: उसका किया।
1: वाह।
0: और इसके अलावा गीत गोविंद,
1: अरे गजब।
0: ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात जो उपलब्धि थी, उसके आश्चर्य की बात ये थी कि गीत गोविंद का आपने ड्रामेटिक नाट्य रूपांतर किया। वो नाट्य रूपांतर तो हिंदी में हुआ, मतलब
1: बिल्कुल
0: उसका
1: बिल्कुल
0: कैरेक्टर जो राधा कृष्ण सखी ये सब कुछ है, गीत गोविंद मूल रूप से संस्कृत में है,
1: बिल्कुल
0: जयदेव जी का।
1: जी।
0: हाँ, उसके जो गाने हैं, उसके जो गीत हैं, वो मूल संस्कृत में, और मूल संस्कृत में मैंने कंपोज किए, रिकॉर्ड किए, गाए लोगों ने
1: संस्कृत में।
0: संस्कृत में।
1: अरे
0: तो
1: बाप रे
0: गाने संस्कृत में हैं
1: जी
0: और उनके इंटरप्रिटेशन करते हुए उनको एक तरह से समझाने के लिए मैंने कैरेक्टराइजेशन किया कि लोग, आम लोग समझ चुकी इस गाने का क्या मतलब है, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कौन कैरेक्टर है, ये राधा का दुख है, ये कृष्ण की पुकार है
1: हाँ,
0: ये
1: तो बहुत
0: हम
1: मुश्किल काम है।
0: बहुत मुश्किल। तो वो एक मेरे लिए वो मील का पत्थर जैसा हुआ और लोगों को भी हैरानी हुई कि लोगों ने उसका आनंद भी लिया और
1: जी
0: समझे भी, मतलब
1: वाह
0: गीत
1: वाह।
0: गोविंद को ओरिजिनल, क्योंकि मैं ये समझता था कि उससे पहले गीत गोविंद रघुनाथ पाणिक रही उड़ीसा में,
1: जी जी
0: तो वो करते रहे और वो बहुत मशहूर है, बहुत पॉपुलर है, वो सब कुछ है, लोग गायक के रूप में वो पॉपुलर है वो वहाँ पे। लेकिन मैंने उनका सुना है और वो तो कमाल है, मतलब वो भी, लेकिन मुझे ये लगा कि उनमें वो लोक तत्व ज्यादा है, मतलब कि बंगाल या उड़िया का, उनके कंपोजिशंस में भी, उनके गाने में भी। तो मैंने उसको बाकायदा एक, क्योंकि फिल्म का तो था ही था, तो सुगम संगीत के तौर पर मैंने उसको कंपोज किया और गाने वाले भी बहुत अच्छे थे, तो उस तरह से वो एक लोगों को लगे कि ये गाना है,
1: क्या बात है, ये तो बहुत मुश्किल है क्योंकि
0: तो वो गाने के
1: संस्कृत
0: तौर
1: से।
0: पर वो हुआ और लोगों ने सुना और पसंद किया।
1: वाह वाह वाह। तो ये पूरा
0: इसी
1: जयपुर का
0: तरह
1: दौर
0: से
1: था
0: अभिज्ञान शाकुंतल
1: जी।
0: कालिदास का, तो वो मैंने उस रेडियो एडॉप्टेशन किया
1: वाह
0: उसको, वो किया। तो ये दो बड़ी वो थे कहना चाहिए।
1: क्या शानदार बातें हैं, ये तो बहुत मुश्किल वाले काम आपने वहां किए। इसके अलावा वहां विकल्प भी चलता रहा आपका, नाट्य समूह।
0: नहीं, विकल्प ये दौर मेरा पहला था, मतलब रेडियो आने से पहले का था।
1: हाँ
0: विकल्प अपने ढंग से चलता रहा, वो बीच बीच हम लोग करते भी रहे, लेकिन वो सब

0: नहीं रही।
1: जी, क्योंकि
0: हाँ
1: रेडियो में आप पूरी
0: हाँ
1: तरह से अपने
0: हाँ
1: आप ने अपने आप
0: हाँ
1: को झोंक दिया था।
0: हाँ मतलब बीच बीच में हम करते रहे नाटक, लेकिन वो जो 10 साल लगातार जो किया वो रेडियो में आने से पहले किया हमने।
1: जी, और बाद में फिर आप पूरी तरह से रेडियो में व्यस्त हो गए।
0: हाँ उसके बाद भी एक नाटक जो आला अफसर मुद्रा राक्षस का,
1: जी,
0: जो गूगल का
1: इंस्पेक्टर
0: उन्होंने,
1: जनरल का।
0: हाँ वो नौटंकी शैली में उन्होंने किया, तो उसका भी मैंने कंपोजिशन भी किया,
1: वाह,
0: डायरेक्शन भी किया और वो भी किया
1: तो
0: जनरल।
1: संगीत जो है वो एक तो घर से मिला था, लेकिन ये एक लगातार चलता रहा कि कंपोजिशंस भी करनी है आपको लगातार,
0: हाँ इसमें करनी ही वाला बात नहीं था, मतलब अंदर से
1: जरूरत।
0: होता था,
1: जी,
0: अंदर से होता था कि ये मैं करूं, मतलब मेरी कोई मजबूरी नहीं थी कि
1: बिल्कुल,
0: हाँ कि कोई और भी कर सकता था, लेकिन अंदर से कहीं होता था कि ये
1: ये मैं करता
0: हाँ
1: हूं।
0: इसको जैसे लिखने का जो है वो अंदर से ही होता है कि
1: बिल्कुल,
0: आप तो उसी तरह से वो, चाहे वो गीत गोविंद हो, जयपुर में उस वक्त 5 बड़े संगीतकार थे
1: जी
0: जो स्टाफ में थे, मतलब म्यूजिक डायरेक्टर, म्यूजिक कंपोजर भी एक पोस्ट होती
1: बिल्कुल
0: है
1: होती है।
0: ना,
1: जी
0: जानते हो, और विविध भारती में नहीं है वो, लेकिन मेन सेंटर्स पे बॉम्बे में हो या किसी भी सेंटर में कंपोजर की भी पोस्ट होती है,
1: जी
0: उस
1: जी
0: वक्त 4 मौजूद थे, और वो 4 लोग भी परेशान होते थे कि हम हैं और ये आदमी कंपोज कर रहा है। तो उसमें मेरे उस वक्त स्टेशन डायरेक्टर थे गिरीश चतुर्वेदी,
1: जी,
0: तो उन्होंने मुझे छूट दी।
1: कि नहीं, आप करो।
0: हाँ मतलब वरना ये होता नहीं है ये,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और 4
1: बिल्कुल,
0: कंपोजर हैं स्टाफ में मौजूद हैं
1: तो आप
0: और
1: उनको।
0: उस वक्त आप अपना काम खुद कर रहे हैं,
1: जी,
0: तो उन्होंने छूट दी, और उसकी वजह से वो मैं एज ए कंपोजर भी रेडियो पर, मतलब फिर गाने भी हुए, सब कुछ हुआ।
1: हाँ
0: एक बार मैं बताऊं कि जो महादेवी वर्मा का गीत
1: हाँ
0: मैं नीर भरी दुख की बदली,
1: हाँ
0: और ये सब, मतलब ये सब हमने किए, मतलब जो एक वो जैसे यहां मंथन शुरू हुआ था ना,
1: जी
0: हमने 10 मिनट का प्रोग्राम होता था,
1: जी
0: एक अच्छा गीत या अच्छी कविता किसी के
1: हाँ
0: लेके उसको कोई पढ़ता था, और गीत होता था कोई गाता था,
1: वाह
0: तो उस
1: वाह
0: तरह का एक
1: वाह,
0: प्रोग्राम तो वो मैं करता था, तो उसमें महादेव वर्मा का और भारती जी का, फिर बाद में गालिब की गजलें कंपोज की,
1: क्या बात है,
0: कबीर को कंपोज किया,
1: वाह
0: इनको
1: वाह,
0: स्टेज किया, स्टेज शो किया, तो ये सब मेरे संगीतकार के रूप में मेरे
1: ये
0: ये
1: चीजें
0: हुआ।
1: चलती रहीं लगातार, ये बहुत अद्भुत बात है। ये एक अलग पूरा एक पक्ष है, हमारे सुनने वालों को ये जानकर अच्छा लगेगा कि आप मंच पर तो गाते ही हैं, लेकिन आप अपने निजी जीवन में भी कुछ फिल्मी गीतों से आपका बड़ा लगाव है जो आप गुनगुनाते हैं, तो हमारे लिए कुछ गुनगुनाइए।
0: चलिए मैं गुनगुना देता हूं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है,
1: वाह वाह,
0: कभी

0: ये था जाने माने शायर और विविध भारती के भूतपूर्व केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग। इस बातचीत का दूसरा भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंधल, संपादन सहयोग रीमा जोशी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
1: आज के मेहमान।

जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ। आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
1: वंदे मातरम सुजला।
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
1: शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम।
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष। प्रसारण प्रति शुक्रवार

सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम, एक जय घोष।

अभी आप सुन रहे थे देश की सुरीली धड़कन, विविध भारती मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रम। श्रोताओं, हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, FM 103.7 MHz पर। शाम के 5 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम युवावाणी।

सोच मत साकार कर, अपने कर्मों से प्यार कर, मिलेगा तेरी मेहनत का फल। कर्म करता रहे, आगे बढ़ता रहे, किसी और का इंतजार ना कर। कुछ करना है तो डट कर चल, चलता चल, चलता चल। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं विचारों के साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज पर स्वागत है आपका। आप सुन रहे हैं युववाणी, मैं हूँ कंचन रोशन। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की बात से। दोस्तों, निश्चित रूप से हमें विज्ञान, तकनीक, आधुनिकता के साथ आगे बढ़ते हुए अपना जो लक्ष्य है उसको हासिल करना चाहिए, लेकिन एक अहम विषय भी रह जाता है, जिसे हम यूँ कहें कि आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी, जो भी आज फोकस मांग रहा है हम सब युवाओं का, हम सब युवा पीढ़ी का। हमें आध्यात्मिक विचारों को भी अपनाते हुए आगे बढ़ना होगा, जिससे कि आध्यात्मिक विकास को भी हम सुनिश्चित कर सकें, आने वाली पीढ़ियों को भी दे सकें। युवाओं के लिए आध्यात्मिकता का अर्थ और परिभाषा निश्चित रूप से बदली है। आज का युवा ध्यान, योग, प्रकृति और आत्मखोज को एक आध्यात्मिकता का माध्यम मानता है। निश्चित रूप से हमें इस एक क्षेत्र में भी आगे बढ़कर काफ़ी अच्छा करते हुए जीवन को व्यतीत करना होगा। आजकल के तनावपूर्ण जीवन, अकेलेपन और डिप्रेशन से मुक्ति पाने के लिए भी हम सब युवाओं के लिए आध्यात्मिकता को एक मानसिक रूप से अच्छे स्वास्थ्य का संकेत के रूप में भी मानना चाहिए। सोशल मीडिया और इंटरनेट ने युवाओं को आध्यात्मिक गुरुओं, पॉडकास्ट और जो ध्यान के ऐप्स हैं उनसे भी जोड़ा है, और निश्चित रूप से बहुत ही इन सब चीज़ों को सुलभ भी बनाया है। हम लोगों की पहुंच तक ये सारी चीज़ें हमें उपलब्ध भी है, और इसका हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, ना कि इनको हमें नेगेटिव में लेना चाहिए। जो हमें फ़ायदा पहुंचा सके, हमसे जुड़े लोग भी इससे लाभान्वित हो सके। युवा ब्लाइंड फेथ यानी कि अंधविश्वास के बजाय तर्क यानी कि लॉजिक पर विश्वास करता है, जो निश्चित रूप से हम मानते भी हैं और आज का सच भी है। वहीं हम अपनाते भी उन्हीं चीज़ों को है जो लॉजिकली हम लोगों के लिए सही होती है। व्यक्तिगत रूप से शांत और सकारात्मक हम उन्हीं चीज़ों में महसूस कर पाते हैं और उन्हीं चीज़ों को फेवर में भी चलते हुए आगे बढ़ पाते हैं। और इन्हीं सब चीज़ों को अगर हम यूँ कहें कि आध्यात्मिक माहौल भी हमें परिवेष्टित, पुष्टित करता है और आगे बढ़ने के लिए हमें तैयार भी करता है। ध्यान और सांस लेने की तकनीकें मानसिक अशांति को कम करने में सहायक होती है, जिसे हम कहते हैं मेडिटेशन। निश्चित रूप से ये हमारे तनाव को कम करने वाला साबित होता है। सकारात्मक ऊर्जा जो कि आध्यात्मिक ज्ञान, नशे और गलत संगति से दूर रखकर सात्विक जीवन की प्रेरणा देता है। आध्यात्मिक ज्ञान ही है जो हमें इस प्रकार की आज के जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनसे दूर ले जाकर काफ़ी हद तक हमें अच्छा

माहौल दे सकता है। ये जीवन के उतार चढ़ाव में संतुलन और उद्देश्य खोजने में भी काफ़ी हद तक हमारी मदद करता है। तो निश्चित रूप से हम सब युवाओं को आध्यात्मिक रूप से जुड़े रहकर संगठित रूप से इसमें आगे बढ़ना चाहिए और काफ़ी सारे लोगों को भी इसमें जोड़ने की एक शपथ हमें लेनी चाहिए। आगे भी हमारी आध्यात्मिकता को लेके बातें जारी रहेगी। पहले सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: दोस्तों, हम बात कर रहे थे आध्यात्मिकता की। आध्यात्मिक विचारों में बात करेंगे बीके शिवानी दीदी के आध्यात्मिक विचारों की। मुख्य रूप से आत्म परिवर्तन, सकारात्मक सोच, राजयोग, ध्यान के माध्यम से मानसिक शांति पर केंद्रित हैं इनके विचार। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन संभव है। जहां विचारों की शुद्धता और भावनाओं पर नियंत्रण से जीवन में सुख, शांति और स्वास्थ्य प्राप्त किया जा सकता है। निश्चित रूप से दोस्तों, इसी प्रकार की विचार हमें भी अपनाते हुए आगे बढ़ना होगा। हमारा जीवन हमारे विचारों का प्रतिबिंब है। जो हम सोचते हैं वही हमारे साथ घटित होता है। सकारात्मक और उच्च विचार जीवन को बदलते हैं, जबकि नकारात्मक विचार मानसिक और शारीरिक दुखों का कारण भी बनते हैं। निश्चित रूप से हमें सकारात्मकता के साथ चलना चाहिए। हमें खुद को एक देह शरीर नहीं बल्कि एक शांत प्रकाशवान आत्मा के रूप में देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। हर परिस्थिति में क्यों के बजाय क्या यानी कि हल पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिससे कि मानसिक तनाव को हम कम कर सकेंगे। दूसरों को बदलने की कोशिश के बजाय खुद में बदलाव और दूसरों को स्वीकार करने से जो हमारे रिश्ते हैं संपूर्ण विश्व के साथ बेहतर होते चले जाएंगे। अतीत को सुलझा हुआ समझें और भविष्य को लेकर निश्चित रहने के साथ ही हम वर्तमान को सुंदर बना सकेंगे। ईश्वर एक निराकार प्रकाश का बिंदु है, जो कि प्रेम, शांति और ज्ञान का सागर है। इसी प्रकार की थीम के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। उनके विचार ब्रह्म कुमारी के माध्यम से ध्यान और सात्विक जीवन शैली अपनाने पर जोर देते हैं। दोस्तों, ये तो हुआ हमारा आध्यात्मिक पक्ष। अब हम सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत।

दोस्तों, अब बात करते हैं रोजगार समाचारों की। सीआरपीएफ कांस्टेबल भर्ती का 9,195 पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 20 अप्रैल से 19 मई तक जारी है। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप ऑफिशियल साइट पर विजिट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर भर्ती का भी नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके आवेदन शुरू हो चुके हैं, जिसके लिए अंतिम तिथि 20 मई है। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार निर्धारित तिथि से पूर्व आवेदन कर सकते हैं। इसकी भी अधिक जानकारी के लिए आप अधिकृत साइट पर विजिट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही कॉलेज शिक्षा विभाग के सरकारी कॉलेजों के लिए 3,540 पदों पर संविदा शिक्षक भर्ती 2026 का विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके लिए 3 जून

तक इच्छुक व योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप विभाग की ऑफिशियल साइट पर विजिट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बात हुई हमारे रोजगार समाचारों की, अब हम चलते हैं फिर से संगीत की दुनिया में, सुनते हैं ये सॉन्ग।

0: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर,
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
2: RBI कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। दोस्तों अब बात करते हैं भारत में डिजिटल मार्केटिंग की। निश्चित रूप से इन क्षेत्रों में आजकल बहुत स्कोप है, अत्यधिक ऊंचा और भविष्य के लिए ये सुरक्षित क्षेत्रों में गिना जाता है, क्योंकि 15% की वार्षिक वृद्धि दर के साथ उद्योग तेजी से इस प्रकार से बढ़ रहे हैं। ये मुख्य रूप से ई कॉमर्स, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में पारंपरिक मार्केटिंग से डिजिटल की ओर बदलाव के कारण भी संभव हुआ है। इसमें सोशल मीडिया, कंटेंट स्ट्रेटजी, AI आधारित कैंपेन जैसी भूमिकाओं के लिए भी भारी मांग दिन ब दिन

बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अगर हम बात करें सोशल मीडिया मैनेजर, कंटेंट मार्केटर, पीपीसी विशेषज्ञ, ईमेल मार्केटर या फिर डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर के रूप में काम करने की, तो निश्चित रूप से अलग अलग भूमिकाओं में अलग अलग रोल्स सामने आते हैं और आज के समय की मांग के अनुसार इस प्रकार की हमारे पास स्किल होना और इस एक क्षेत्र में संभावनाएं बहुत बढ़ चुकी हैं। हम अपना खुद का कंसल्टिंग व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, विभिन्न क्लाइंट्स के लिए फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, फैशन, रियल एस्टेट, इस प्रकार से अब ऑनलाइन उपस्थिति बढ़ाने के लिए डिजिटल मार्केटिंग जो है प्रोफेशनल को नियुक्त कर रही है, जिसमें भी काफ़ी हद तक संभावनाएं आज भी जारी हैं। दोस्तों, AI ऑटोमेशन, वीडियो मार्केटिंग और व्यक्तिगत ग्राहक अनुभव जो है पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस की हम बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग के लिए भविष्य जो है अलग प्रकार से आकार ले रहा है। तो आगे भी हमारी बातें जारी रहेगी, पहले सुनते हैं ये गीत।

को याद दिलाते रहना है कि इस प्रकार से कि मैं एक शुद्ध प्राणी हूँ, हर विचार जो मैं बनाता हूँ, हर शब्द जो मैं बोलता हूँ, हर क्रिया जो मैं करता हूँ वह मेरी पवित्रता का एक प्रतिबिंब है। मैं अपने आसपास की स्थितियों की ऊर्जा से प्रभावित नहीं हूँ। मेरी पवित्रता मुश्किल बातें भी मेरे पक्ष में कर देती है। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार के विचार के साथ आज के युवाणी का समय हो चला है समाप्ति की ओर। आपकी दोस्त को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

युववाणी, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। श्रोताओं, आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है, लीजिए सुने कार्यक्रम पणिहारी।

एक सबू बड़ी आपने स्वयं रवास्ते सत्य रजित अठे वेला कि आपरो जिको मन में आक्रोश है, मन में जिको भय है, या क्या करे कि आपा कोई भी काम करने वास्ते डरा भी बहुत आ। उनो कारण कही है, डर रो कारण सिर्फ एक ही है कि आप आ सोचा कि अरे यूं क्यों तो यूं हो जाए, परिवार वाला ने ओ किया तो आ हो जाए, यूं क्यों तो यूं, मतलब कई मन गढ़त बातें दिमाग में आती रहे जिकी की कई बार होवे कई बार नहीं भी होया करे, पर फिर भी हारे बात तो जीती है ना, आ बात तो आप सब समझा। तो हार और जीत रो एक दूसरा रा रूप है, तो इन्हें बिना आप की नहीं कर पावला, इन बिना आप कुछ सोच भी नहीं सका। आपा सोचा खिलाड़ी हमेशा जीते जीते, और जिको सामने वाले हारे, एक नहीं हारी तो दूसरो जीती की कर, चाहे वो सामने की टीम हो चाहे स्वयं ही क्यों नहीं हो, है ना। लेकिन सोच में, आप आचार विचार में, आपरी बाता में, आपरी किया करे की मन री शक्ति में, आप आत्मविश्वास रे मायने, ए सब चीज़ा रे होना बहुत ही समावेश भरो होना चाहिए, जिनसो की आपने लागे कि वाकई एक संयम री जिंदगी जीवा, जद ही एक सत्य री जीत है। इनसु आपा कई लोगों ने समझावा, इनसु आपा कई लोगों री भावना ने समझ सका, और एक अच्छी सोच, अच्छा विचार, ठंडो मन, दिमाग शांत, आत्मविश्वासों, अगर कोई भी काम अगर आपा करा तो बहुत ही अच्छो होया करे, उन परिणाम हमेशा उत्कृष्ट ही होया करे, उनमें कोई दो राय नहीं हुए बहना। इन वास्ते जरूरी है कि आप बातचीत कर रहे हैं ना, एम कठिन कठिन मतलब तो अपने स्वयं रो निकले ही है, आप चाहे माना नहीं माना। जो बार पास सोच रहे अरे बहुत थक गया, तावड़ो भी पड़े है, शाम रखी करन मन नहीं वे, कोई हल्को फुल्को कर ला, तो अभी आपकी सोच है, आपका विचार है, पर उन्हें खुशी मनु करो ना, आपके साथ सब भी खुश हो। कई बार थोड़ी सी गलती हो जाए तो हंसना टाल लो कि नहीं रे बिरा तावड़ो घणो पड़े, कहीं है होयो जी कोई चोको बुका तो कोने ना आपा, तो ए छोटी बड़ता हल्का फुल्की बातों कर लां, जिनसु एक तो खुशी रो माहौल बने रहे, एक आप लोगों रे प्रति असमझ हो जावे ना, तो मैं कहूँ आप देश, आप समाज, आप स्वयं, आपरा परिवार हंसी खुशियों, जिंदगी एक ही बार मिलिया करे ना, और उन्हें आप बहुत ही हंसी खुशियों, बहुत ही स्नेह प्रेम विश्वास हो जीता, तो इनसे बड़ी बात अपन वास्ते होया ही नहीं कर। तो देखो आप सोचो ला बहना बात ही बात करें तो कि गीत वगैरह भी अपने कार्यक्रम में है, पर आप बीच में ले वाला संदेश।

0: प्रत्येक सोमवार को रात्रि 8 बजे सुनिए सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम दिल से। इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश भेजने के लिए आपको लिखना है अपने पसंदीदा गीत के बोल, फिल्म का नाम, अपना नाम और अपने शहर या गांव का नाम, और भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9649004762 पर। शाम 5 बजे तक प्राप्त आपकी फरमाइशों का प्रसारण किया जाएगा उसी रात 8 बजे आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है दिल से।
1: तो बहना अब प्यारो सो लोकगीत सुनो, ग्यारसी देवी ने गायोड़ो बोली प्यारी लागे।

तो बहना अब आप सुने हो और गीत और आप बातचीत भी अड़े ही कर रिया। और जो मैं आपने बताया कि हार या भय इन अपने अपनी जिंदगी में अपने लोगों के बीच में खत्म करना है, तो आप एक अच्छी सोच, खूब मेहनत करो, खूब आगे बढ़ो और आपकी कोई भी समस्या है समाधान हर समस्या होया करे बहना, चाहे वो छोटा बच्चा हो लेन, चाहे बड़ा बुजुर्ग हो, चाहे आपके दोस्त संगी साथी रह साथ है, ये सब आप बात एक दूसरा शेयर करो, एक दूसरा ने बात बताओ, एक दूसरा री परेशानियाँ एक दूसरे तो उनमें कई है, उनमें कई अड़ी बातचीत निकल जा कि जिन्हों सॉल्यूशन हो जा, जिन्हें एक अपन लाग जाकर हाँ इन चीज़ों तो आप इन तरीकों आप करा ला तो वो आप री जीत हो जाला, आप हासिल कर पाओला। ये सब बातें कही है बिना बहुत ही है। और जिकी चीज़ खासकर अगर अपन में कोई हुनर है और आप कहीं देखा उन्हें दबान रखा कह कर हाँ ठीक है आ रही हो, अब देखा मारू इतना लोग आगे है, मारू यूं है, मारू है, पर आप खुद बनाने लगा दो चार और लोग थोड़ा सा आपने एक आत्मविश्वास आप बढ़ा दे, एक आपने पॉजिटिविटी मिल जाए आप खुद में और क्रियाशील बनना चाहो आप, चाहे वो खान पान में हो, चाहे आप सिलाई बुनाई में हो, चाहे आप साफ सफाई में हो, चाहे आप एड़ी एड़ी चीज़ें आजकल अपनी बहना बता रही है, चाहे वह बागवानी हो, चाहे कोई भी हो, सिलाई कढ़ाई तो है ही। तो आज आप मैंने देख देख देख देख ने कितना आगे बढ़ रहे हैं और आप अपने मन में भी सोचा अरे ओ वो तो मैं बना सकूँ, हाँ बना सका, पर आप क्रियाशील जदे बना ला जदे एक दूसरा ना आप सीखा वाला है ना। और दूसरी बात अगर आप एक चीज़ अच्छी बनाई और लोगों ने पसंद आएगी और वो कह दे कि अगर हमारी 10 चीज़ बना दे तो वह चीज़ अगर 100 रुपया या अपने मेहनत और हो तो आप उन्हें अगर 200 रुपया भी देवा और वो अगलान कहता भाई देख इमें मेहनत है, इमें इतना सामान ला गया है, इन्हें मैं इतना रुपया लूँ, तो अगलो कही कही हाँ देवाने तैयार हाँ, तो 10 चीज़ों अपने एक बार खुशी खुशी 2,000 रुपया मिल गया है ना। और पूछ वो एक स्वरोजगार बन जाए। आजकल जी की बहन आप देख रहे हैं चाहे वह पापड़ बड़ी मूंग ले चाहे सिलाई में देख लो, चाहे और तो और कई अड़ा जो आजकल तो फोन माते बात करो और वे लोग आपने सिखाने वास्ते आ जावे, अड़ी इतनी सुविधा वहाँ हुई है, तो उन वास्ते आप इन सब में आप जी को है कि भाई वर्चस्व बनाना है तो ऐसा सब चीज़ें ने सीखता हुआ आप भी मेरे साथ जुड़ो। ज़रूरी नहीं है कि हर बात गलत है, ज़रूरी नहीं है कि हर लोग गलत है, ज़रूरी नहीं है कि आप सोच में गलत

गलत है या आग वाले सोच में गलत है, आप एक पॉजिटिविटी रखो दिमाग में। दूसरी बात, एक अच्छा विचार रखता हुआ आप आगे चले ला, और हाँ अगर आपने ठीक लागे तो ठीक है, नहीं लागे तो उन्हें साफ स्पष्ट शब्द में मना करो, ताकि कही है कि आप जी को करनी चाहो नहीं तो उनसे आप एक खुद ही कमाई भी हो सके, और जो आप पक्के वहाँ की बात गणी करे पर करण में अंतर, बात सही है पर आप सोचने तो देखो, आप करने तो देखो। आज आप एक उदाहरण छोटी बच्ची रो बार में बताऊँ आपने, आप सोचता रह जाओला। तो इन वास्ते जरूरी है कि कोई भी काम करने वास्ते आप तैयार रहो, ठीक है? तो आप चला अगले गीत रीत रहे।

श्रोताओं, प्रत्येक गुरुवार को युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत होता है ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। अपनी फरमाइश भेजने के लिए हमें ईमेल कीजिए हमारी ईमेल आईडी youthexpressnagaur@gmail.com पर। इसमें आप लिखिए अपनी पसंद की फिल्म का नाम, गाने के बोल, आपका नाम, आपके शहर या गांव का नाम और भेज दीजिए हमारे ईमेल आईडी पर youthexpressnagaur@gmail.com पर। और सुनिए अपने पसंदीदा गीत।

हाँ तो बहना आप गीत सुनियो हो तावड़ो मन दो पड़ जा बहुत ही अच्छो। आप क्या करें कि मौसम के अनुसार चलना तो थोड़ा मन भी शांत हो जाए। अबे आप बातचीत करें कि अपनी मोटिवेशन अपनी शक्ति अपना आत्मविश्वास। तो आज खेल कूदरी एक बच्ची के बारे में मैं आपने बताना चाहूँ जिको कि आप हमेशा पढ़ो भी है और फिर भी जानकारी सिर्फ इन वास्ते बता रही हूँ कि आप आज सोचो कि वह जिकी बच्ची जिना की हाथ पैर नहीं है उनके बावजूद वह एक ओलंपिक गेम में कितो बड़ो अपने भारत रो नाम रोशन करियो जिनो नाम है शीतल देवी। और आपने ध्यान है उन्हें जन्म 10 जनवरी 2007 में हुयो और वह है कंपाउंड पैरा आर्चर। और दुनिया री वह एड़ी बच्ची है कह सका आप तीरंदाज है। इतो जिको निशानो है ना उन्हें खतरनाक है कि हाथ ही नहीं है और सर्वोच्च स्तर में तो इतनी प्रतिस्तर बड़ा इतना लोगों के बीच में इतना क्या करे कि कितना कॉम्पिटिटर हो गया उनके सामने उन्हों एक गोल्ड मेडल मिलना बहुत ही बड़ी बात है जिना की हाथ नहीं है बहना। और वह सोचो आप सीधो निशानो कितो लगायो है जिनसो की उन्हें जीत हासिल हुई है ना। और एक जम्मू कश्मीर में हुयो और इन्हें कहवे कि भाई बचपन ही उन्होंने एक कई किया करे कि फोको मिलिया एक तरह रोग हुए जिनसु कहे कि बचपन री मुझ उन्होंने जिको आगे बढ़ते रहे वो प्रोसेस चालिया नहीं और उन हाथ में एकदम ही छोटा रह गया। और शीतल देवी 2019 में भारतीय जिकी नौसेना है ना उनमें ने भी खोजा बनी उन्हें अपने पैरा और कंधा रा उपयोग कर तीरंदाजी में ठेठ आगू आगे अपना कदम बढ़ाया। और सोचो कि अगर आप बात सोचा नहीं अगर बहुत बड़ी बात है ना कि अगर हाथ नहीं है पग नहीं है और आपका विचार अड़ा है कि नहीं मैंने जीत हासिल करनी है मैंने सीधो निशानों साधना है तो आप सोचो कि इन बच्ची का हाथ नहीं है उनके बाद भी वह तीरंदाजी की तरह सीखी कितनी उन्हें प्रतिस्पर्धा जीतनी पड़ी कितनी वह दुख पाई हुई कितों तो उन्हें सिखाने वाला कई बार परेशान भी होता हुई कई बार उन्हें ताना भी सुनना मिली हुई पर फिर भी उन्हें एक लक्ष्य दिख रही हो जो क्या करें नहीं कि अर्जुन री आँख दिखती है और इन तरह इन्हें भी एक आँख दिख रही स्पर्धारी कि मैंने आगे बढ़ना है। तो एज का विचार है एज की बातें हैं एज की सोच है एज की मोटिवेशन लोगों में मिल लिया करे अपनी जिंदगी में बहुत ही कारगर होया करे है ना। तो इन वास्ते इन सभा ने अपनाओ और मारी आपसू आई गुजारिश है जिको आपरो मन करे अच्छी बात में अच्छा लोगों के बीच में बैठो और आपकी सोच आपरा विचार मैंने सामने

तो बहना गर्मी भी हो रही है और अपने स्वास्थ्य रो ध्यान रखता हुआ थोड़ा सा कैरी पाना पी लिया करें। पर कैरियाँ बहुत आ रही है, आप अचार वगैरह तो खूब बना रहे हैं, पर आप सोचा कि थोड़ा सा कैरी पाना भी बना ला। कैरी पाना आप जानो ही हो कि भाई जो उन आपा कैरी ने थोड़ी सी उबाड़ पर उन्होंने पानी निकाल उन मायने हल्को सो जो भी आपने सीधो नमक है, काड़ो नमक है या क्या करें आपा पुदीना है वो डालना आपा पीवा तो इनमें लू नहीं ला गया करें, है ना। इन्हीं तरह एक होया करें अमलवाड़ा, अमलवाड़ा मिठाई है, आमली ने भेजा दो रात्रा उनमें अगर आपने थोड़ी सी खटाई ज़्यादा लाग रही है हो गई है भाई या तो चीज खटाई है तो हल्को सो गुड़ या थोड़ी शक्कर डालने उन्हें भिजो दो और पचे सुबह उन्हें अच्छो सो मैश कर और उन्हें वही पानी डालो और हल्को सो पुदीनो सेंधो नमक और ये डालो ला तो जो ही आप बाहर निकलो और आप इन प्रयोग सुबह भी कर सको, दोपहर आप रोटी जिम रहे तो भी कर सको, शाम रा सोता समय भी कर सको तो इनमें बहुत ही बड़ो फायदा होया करे, लू नहीं लागे करे। तो छोटी छोटी जीजा छोटा छोटा घरेलू उपाय जिनसे अपने फायदा हुए तो वो अपने जरूर करना चाहिए। और बहना सबसे बड़ी बात है चाहे कोई भी समय हो कोई परिस्थिति हो आप हार नहीं मानो, हमेशा जीतरी रास्ते देखते रहो तो आपकी जीत अवश्य वाला। और कही है कि बातें करने मन है पर घड़ी कर रही है इशारो आपसे इजाजत ले उन्हों। तो आप फिर मिला ला शनिवार ने और पाता करा ला तो जद तक आप प्री बहन ने तिराव से करा राम राम।

0: अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
2: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। ग्रेड ए धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,461 रुपए प्रति क्विंटल, हाइब्रिड ज्वार के लिए 4,023 रुपए प्रति क्विंटल, बाजरा के लिए 2,900 रुपए प्रति क्विंटल और अरहर दाल के लिए 8,400 रुपए प्रति क्विंटल होगा। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
2: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इससे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इम्पोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3,00,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 5,000 रोजगार सृजित होगा। ये आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल को भी सशक्त करेगी। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये नागपुर हवाई अड्डे के लिए एक क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव CV जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोफ ने कहा कि रूस ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने वांछित नार्को आतंकवादी इकबाल सिंह उर्फ शेरा को गिरफ्तार कर लिया है। लंबे राजनयिक और कानूनी प्रयासों के बाद पुर्तगाल से उसके प्रत्यर्पण में सफलता हासिल की गई है। 2020 से फरार इस आतंकवादी को पाकिस्तान समर्थित नार्को आतंकी मामले में गिरफ्तार किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू किसानों और अन्य संस्थाओं को भारी नुकसान हुआ था। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलो भार वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीता है। उधर थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में PV सिंधु, मालविका बंसोड़, देविका सिहाग, लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। IPL क्रिकेट में रायपुर में आज शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद कोलकाता के लिए

0: मुकाबला प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं बेंगलुरु जीत दर्ज कर शीर्ष पर आना चाहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 103.7 MHz पर श्रोताओं, ये है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। शाम के 6:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। श्रोताओं, FM 103.7 MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम माटी के स्वर।

अभी आप सुन रहे थे जमुना प्रसाद परमार के स्वर में ये लोकगीत। FM 103.7 MHz पर श्रोताओं आप सुन रहे हैं लोकगीत का कार्यक्रम मार्टी के स्वर। लीजिए सुनिए कालूनाथ के स्वर में ये अगली प्रस्तुति।

अभी आप सुन रहे थे लोक गीतों का कार्यक्रम माटी के स्वर, जिसमें आज के कलाकार थे जमुना प्रसाद परमार, कालूनाथ और साथी। श्रोताओं, आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। शाम के 6:30 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार। तत्पश्चात होंगे राजस्थान

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खरीफ विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के तीनों संकायों का परीक्षा परिणाम जारी किया। नतीजों में छात्राओं ने एक बार फिर बाजी मारी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, यमुना का पानी पाइपलाइन के जरिए राजस्थान लाने के लिए समय सीमा तय की गई और प्रदेश के पश्चिमी और दक्षिणी पूर्वी जिलों में प्रचंड गर्मी से जनजीवन प्रभावित। फलोदी और जैसलमेर में अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचा। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि सरकार ने किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए ये निर्णय किया है। उन्होंने कहा कि इस खरीफ सीजन के लिए किसानों को करीब 2,60,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सबसे अधिक 622 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी सूरजमुखी के बीजों के लिए की गई है। इसके अलावा कपास के दाम 557 रुपए और तिल के 500 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाए गए हैं। नई दरों के अनुसार ग्रेड ए धान का समर्थन मूल्य 2,461 रुपए, हाइब्रिड ज्वार का 4,023 रुपए और बाजरा का 2,900 रुपए प्रति क्विंटल होगा। अरहर दाल के लिए 8,450 प्रति क्विंटल एमएसपी तय की गई है। इस सीजन में सरकार द्वारा 824 लाख मीट्रिक टन से अधिक फसल की खरीद का अनुमान है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की लागत से कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो एलएनजी इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज 12वीं कक्षा के तीनों संकायों का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है। देश भर में कुल 85.20% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। परीक्षा परिणामों में एक बार फिर लड़कियों ने बाजी मारी है। छात्राओं का नतीजा 88.86% रहा, जबकि छात्रों का परिणाम लगभग 82% रहा। बोर्ड के अनुसार विज्ञान, वाणिज्य और कला संकाय की इन परीक्षाओं में 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी शामिल हुए थे, जिनमें से 15,07,000 से अधिक बच्चे सफल रहे हैं। वहीं अजमेर रीजन का कुल परीक्षा परिणाम 86.78% रहा। यहां 88,000 से अधिक विद्यार्थियों ने ये परीक्षा दी थी, जिसमें से 76,469 विद्यार्थी सफल हुए हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने विश्वास जताया है कि कृषि शिक्षा के जरिए देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। वे आज कोटा में कृषि विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे।

0: थे। श्री बागड़े ने कहा कि किसानों को उन्नत बीज और नई तकनीक से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया। राज्यपाल ने युवाओं से स्वरोजगार अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कृषि क्षेत्र में ड्रोन, एआई और स्टार्टअप जैसे नवाचारों को अपनाने को कहा। दीक्षांत समारोह में 358 विद्यार्थियों को डिग्रियां और 14 को स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। राज्यपाल ने इस अवसर पर विश्वविद्यालय की नई प्रयोगशालाओं और अकादमिक भवनों का लोकार्पण भी किया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कई आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए संशोधित कार्यक्रम जारी किया है। नए परीक्षा कैलेंडर के अनुसार वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा 2026 का आयोजन आगामी 28 जून को किया जाएगा। वहीं लिपिक ग्रेड द्वितीय और कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा 2025 5 जुलाई को होगी। बोर्ड ने पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती परीक्षा 2026 की तारीख में आवश्यक कारणों से बदलाव किया है। अब ये परीक्षा 24 जुलाई को आयोजित की जाएगी। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि पिछले कैलेंडर में दी गई अन्य परीक्षाओं की तारीखें यथावत रहेंगी। राज्य पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी ने प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 में फर्जीवाड़ा और रिकॉर्ड में हेरफेर करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपितों में मुख्य अभियुक्त राजेश कुमार और राजस्थान लोक सेवा आयोग का कर्मचारी मान सिंह शामिल है। जांच में सामने आया है कि राजेश ने अपनी जगह डमी अभ्यर्थी बैठाकर परीक्षा पास कर नियुक्ति प्राप्त की थी। बाद में उसने आयोग के रिकॉर्ड में फोटो बदलने के लिए मान सिंह से 8 लाख रुपए में सौदा किया। एसओजी ने राजेश को इसी महीने की 18 तारीख तक पुलिस रिमांड पर लिया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि यमुना जल समझौते को लेकर हरियाणा सरकार के साथ महत्वपूर्ण सहमति बनी है। उन्होंने आज नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक के बाद श्री शर्मा ने मीडिया को बताया कि यमुना का पानी पाइपलाइन के जरिए राजस्थान लाने के लिए समय सीमा तय कर दी गई है।
1: किसाऊ के पानी को लेकर के सहमति बनाने का सभी राज्यों में किस तरह से बन सकती है उसके लिए बातचीत हुई है। एक हरियाणा राजस्थान का यमुना का पानी उसकी पाइपलाइन उसके लिए गाइडलाइन तय की है कि जल्दी से जल्दी वो कैसे हो उसके लिए समय तय हुआ है। एक हरियाणा और राजस्थान का RRTS का मामला था उसमें सहमति बनी है कि वो हमारे राजस्थान तक दिल्ली हरियाणा और राजस्थान तक वो पहुंचे। इन सारे विषयों को लेकर के चर्चा हुई है।
0: बैठक के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि किशाऊ बांध परियोजना के काम में तेजी लाने पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस बांध के बनने से हरियाणा, राजस्थान तथा दिल्ली में पानी की समस्या का स्थायी समाधान होगा। राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद नीति के तहत 5 जिलों के लिए 18 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें दौसा, चूरू, डीडवाना, कुचामन, फलोदी और बालोतरा के जिला उत्पाद शामिल हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में आज जयपुर में हुई बैठक में परियोजनाओं के पहले चरण के लिए 10 करोड़ 76 लाख रुपए जारी किए गए। इस राशि से दौसा और डीडवाना कुचामन में पत्थर उद्योग, चूरू में लकड़ी उत्पाद, फलोदी में सोना मुखी भंडारण और बालोतरा में टेक्सटाइल डिजिटल प्रिंटिंग के लिए आधुनिक केंद्र और लैब बनाई जाएंगी। इससे स्थानीय उत्पादों की गुणवत्ता सुधारकर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाया जाएगा। मुख्य सचिव ने आज ही स्वायत्त शासन विभाग और PHED के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अमृत 2.0 योजना के तहत प्रदेश के शहरों में संचालित सीवरेज और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। और अब मौसम। प्रदेश के उत्तर, पश्चिमी और पूर्वी भागों में पड़ रही प्रचंड गर्मी से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। आज जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा और बीकानेर जिले लू की चपेट में रहे। मौसम विभाग के अनुसार आज फलोदी सबसे गर्म स्थान रहा, जहां पारा 46.8 8 डिग्री सेल्सियस मापा गया। जैसलमेर में दिन का तापमान 46.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। वहीं बाड़मेर, बीकानेर और चित्तौड़गढ़ में पारा 45 डिग्री के पार पहुंच गया। जिला मुख्यालयों सहित कस्बों में दोपहर के समय बाजार सूने नजर आए। राजधानी जयपुर में भी लू

0: की गई। अतिरिक्त महानिदेशक वीके सिंह ने बताया कि इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले 7,000 से अधिक लोगों के चालान किए गए। प्रदेश भर में इन दिनों डिजिटल जनगणना 2027 को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज भीलवाड़ा में जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने स्वगणना कर लोगों को इसके लिए प्रेरित किया। शहर में जगह जगह हमारी जनगणना हमारा अधिकार जैसे नारों वाले पोस्टर लगाकर लोगों को इस अभियान से जोड़ने के लिए जागरूक किया जा रहा है। वहीं झुंझुनू में आज प्रगणकों के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए गए। झुंझुनू जिले में मिलावटखोरी के खिलाफ चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई में बड़ी संख्या में खाद्य पदार्थों के नमूने अमानक पाए गए हैं। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर ने बताया कि पिछले साल जनवरी से इस वर्ष 2026 तक जिले में विशेष अभियान के तहत कुल 837 सैंपल लिए गए थे। इन सैंपल्स में से 223 नमूने निर्धारित गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय कल नई दिल्ली में अल्पसंख्यक कल्याण विकसित भारत के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य समावेशी शासन को मजबूत करना, नीतिगत पहुंच बढ़ाना और पूरे देश में अल्पसंख्यक समुदायों के लिए प्रौद्योगिकी आधारित कल्याणकारी उपायों को बढ़ावा देना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खरीफ विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के तीनों संकायों का परीक्षा परिणाम जारी किया। नतीजों में छात्राओं ने एक बार फिर बाजी मारी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, यमुना का पानी पाइपलाइन के जरिए राजस्थान लाने के लिए समय सीमा तय की गई और प्रदेश के पश्चिमी और दक्षिणी पूर्वी जिलों में प्रचंड गर्मी से जनजीवन प्रभावित। फलौदी और जैसलमेर में अधिकतम तापमान 46 डिग्री से ऊपर पहुंचा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप ऋतिका गुप्ता से 12 जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं लक्ष्मी चंद नागर। हाड़ौती अंचल का 12 जिला प्राचीन मंदिरों, शेरगढ़ किले और अन्य पर्यटन स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। इस कृषि प्रधान क्षेत्र को वराह नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इन दिनों 12 जिला भीषण गर्मी और हीटवेव की चपेट में है। दिन का तापमान हाल ही में 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने से लोग बेहाल हो रहे हैं। वहीं अस्पतालों में मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है। चिकित्सा संस्थानों में लू और तापघात के रोगियों के उपचार के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। साथ ही जीवन रक्षक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। 15 दिन के ग्राम रथ अभियान के तहत जिले की चारों विधानसभा क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। ग्राम रथ अंता, अट्रू, छबड़ा और किशनगंज शाहबाद क्षेत्र के गांवों में इन योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। साथ ही ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 के बारे में भी ग्रामीणों, किसानों और पशुपालकों को बताया जा रहा है। एलईडी मोबाइल वैन के जरिए ऑडियो वीडियो प्रस्तुति हो रही है। वहीं नुक्कड़ नाटक और संध्या चौपालों में भी लोगों की अच्छी भागीदारी रही है। अब तक अंता, मियाड़ा, अटरू, रिछंदा, किशनगंज और छबड़ा सहित विभिन्न पंचायतों में ग्राम रथ पहुंचने पर ग्रामीणों ने उत्साह के साथ स्वागत किया और विभिन्न जनहित योजनाओं के बारे में जानकारी ली। जिला प्रभारी मंत्री ओटाराम देवासी ने अंता की तुलसा पंचायत में ग्राम रथ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में श्री देवासी ने बताया कि इस अभियान के तहत सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही आम लोगों की समस्याओं और सुझावों पर भी गंभीरता से काम किया जा रहा है। इसके लिए ग्राम रथों में शिकायत और सुझाव पेटिका लगाई गई है। जिला प्रभारी मंत्री ने बामला ग्राम पंचायत पर रात्रि चौपाल में लोगों की समस्याएं सुनी। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बाल मुकुंद असावा ने पिछले दिनों 12 जिले के कलेक्टर के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जिले के विकास की प्राथमिकता बताई। श्री असावा ने सहरिया, बहुल, शाहबाद क्षेत्र का दौरा कर शैक्षणिक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने बास्तुनी के जनजातीय बालक छात्रावास का निरीक्षण कर विद्यार्थियों से बातचीत की। उन्होंने भीषण गर्मी के दौर को देखते हुए छात्रावास में पर्याप्त संख्या में कूलर और पंखे लगाने तथा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने छात्रावास परिसर की नियमित रूप से साफ सफाई करने को भी कहा। प्रमुख जनगणना अधिकारी और जिला कलेक्टर

0: बीते दिनों स्वगणना कर जनगणना प्रक्रिया 2027 के पहले चरण का शुभारंभ किया। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा लोगों से अपना ब्यौरा ऑनलाइन दर्ज करने की अपील की। जिले में जनगणना कार्य को सुव्यवस्थित संपन्न कराने के लिए 2242 प्रगणक और 377 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है। जिले में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय की ओर से आमजन की सुविधा के लिए 5 से 7 मई तक पासपोर्ट सेवा शिविर का आयोजन किया गया। भारतीय विदेश सेवा के क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी विपुल देव ने बताया कि पासपोर्ट सेवाओं को अधिक सुलभ, सरल और अनुकूल बनाने के उद्देश्य से क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस पहल के माध्यम से जिले में निवास करने वाले नागरिकों को अपने स्थानीय क्षेत्र में ही पासपोर्ट बनवाने की सुविधा प्रदान की जा रही है, जिससे उनके समय और संसाधनों की बचत सुनिश्चित होगी। इसी क्रम में मोबाइल पासपोर्ट वैन के माध्यम से 3 दिवसीय पासपोर्ट शिविर का आयोजन कलेक्ट्रेट परिसर में किया जा रहा है। इसमें प्रतिदिन 40 पासपोर्ट आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। अठरू बारा विधायक राधेश्याम बैरवा ने 4 मई से अपने विधानसभा क्षेत्र में आपका विधायक आपके द्वार जनसुनवाई कार्यक्रम शुरू किया। करीब 1.5 महीने तक चलने वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य गांवों और वार्ड स्तर पर लोगों की समस्या का त्वरित निस्तारण करना है। जिला कलेक्ट्रेट भवन पर पिछले दिनों हवाई हमला होने की आपात स्थिति की मॉक ड्रिल की गई। इस दौरान हवाई हमले की सूचना से समूचा क्षेत्र सायरन की आवाजों से गूंज उठा। बचाव और सुरक्षा दलों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किए। जिला कलेक्टर के साथ ही पुलिस अधीक्षक ने राहत और बचाव कार्य की कमान संभाली। साथ ही जिला मुख्यालय पर ब्लैक आउट कर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और घरों की लाइटों को बंद करवाया गया। विश्व विरासत दिवस के उपलक्ष्य में 12 मई संगोष्ठी का आयोजन हुआ। 12 जिले की विरासत और हमारे प्रयास विषय पर संगोष्ठी रखी गई। कार्यक्रम में कला संस्कृति विभाग के सहायक प्रशासनिक अधिकारी संदीप सिंह जादौन ने बताया कि जिले की ऐतिहासिक धरोहरें 12 की सांस्कृतिक पहचान है। इसके साथ ही 12 जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल खरीफ विपणन सीजन 2026-27 सारू 14 शाखा रा सरकारी मूल माय बढ़ोतरी री मंजूरी दीनी। CBSE 12वीं कक्षा रा इम्तिहान रो नतीजो जारी कीनो, लड़कियां बाजी मारी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो, यमुना नदी रो पानी पाइप लेन रे जरिए राजस्थान लावण री मियाद तय करी ची। और प्रदेश रा आतुणी और लंकाऊ उगनी हलका माए जबरदस्त गर्मी। फलौदी और जैसलमेर माए पारो 46 डिग्री सेल्सियस रे पार पुग्यो। समाचारां सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। केंद्रीय मंत्रिमंडल विपणन सीजन 2026-27 सारू खरीफ री 14 शाखा रा सरकारी मूल माय बढ़ोतरी री मंजूरी दे दीनी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव आज नई दिल्ली माय आ जानकारी दीनी। वे बतायो कि मौजूदा खरीफ सीजन सारू किसाना ने करीब 2,60,000 करोड़ रुपया रो चुकारो करियो चावेला।
2: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
1: श्री वैष्णव बतायो कि सब 32,622 रुपया प्रति क्विंटल री बढ़ोतरी सूरजमुखी रा बीजा सारू करी ची है। इसा गई कपास रा दाम माए 557 रुपया और तिल्ली रा मोल माए 500 रुपया प्रति क्विंटल री बढ़ोतरी करण रो फैसलो करी चियो। इन फैसला पाछे ग्रेड ए धान रो मोल 2,461 रुपया, हाइब्रिड ज्वार रो मोल 4,023 रुपया और बाजरा रो मोल 2,900 रुपया प्रति क्विंटल फैला। तुअर्री दाल रो सरकारी मोल 8,450 रुपया प्रति क्विंटल तय करी चियो है। श्री वैष्णव बतायो कि इन सीजन माय सरकार का न्यू 824 लाख मीट्रिक टन 32 शाखा रे खरीदी रो अनुमान है। केंद्रीय मंत्रिमंडल 37,500 करोड़ रुपया खर्चों कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनावां सारू खास

0: बनाने ही मंजूरी देनी।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नॉन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इससे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो एलएनजी इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3,00,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE 12वीं कक्षा री परीक्षा रा नतीजा रो आज ऐलान कर दिनो। ओ इम्तिहान देवनवाला मायू 85.20% पास फेंक्या। इम्तिहान माए लड़कियां रो नतीजो 88.86%, जबकि लड़का रो नतीजो 82.13% रहो। बोर्ड रे मुजब विज्ञान वाणिज्य और कला संकाय माए लीरीजी परीक्षा माए 17,68,000 विद्यार्थी शामिल फिया, जमायू 15,07,000 पास फेंक्या। अजमेर रीजन इम्तिहान देवन वाला मायू 86.78% पास फेंक्या। अजमेर रीजन माए इम्तिहान देवन वाला 88,118 विद्यार्थियां मायू 76,469 पास फेंक्या। हालांकि अजमेर रीजन माए लाडला साल री तुलना माए ई साल पास फेवन वाला रो प्रतिशत कम रहो। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आवता दिना ली जावन वाली न्यारी न्यारी भर्ती परीक्षावां रो नुवो कार्यक्रम जारी कीनो है। इन मुजब वन पाल सीधी भर्ती परीक्षा 2026 28 जून न फैला, जबकि सेकेंड ग्रेड क्लर्क और जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2025 5 जुलाई न ली जावेला। पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती परीक्षा 2026 24 जुलाई न फैला। राज्य पुलिस रो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप SOG प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 माय फर्जीवाड़ो करण और रिकॉर्ड माय हेराफेरी करण रा आरोप माय 2 जना ने गिरफ्तार कीना है। पकड़ी गया आरोपिता माय राजेश कुमार और राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर रो कर्मचारी मान सिंह शामिल है। जांच रे दौरान राजेश कानियू वानी ठौड़ दूजा न बिठार परीक्षा पास कर और नौकरी हासिल करण री ठा पड़ी। इन पाछे वहाँ का न्यू RPSC रा रिकॉर्ड माए फोटो बदली करण सारू मान सिंह 8,00,000 रुपया माए सौदो करण रेठा पड़ी। SOG आरोपित राजेश कुमार ने 18 मई ताई रिमांड माथे ले लीनो है। राज्यपाल और विश्वविद्यालय रा कुलाधिपति हरिभाव बागड़े कहो है कि खेतीबाड़ी में जुड़ी भणाई लिखाई रे जरिए देश माए खाद्य सुरक्षा तय करी जा सके है। वे आज कोटा माए कृषि विश्वविद्यालय रा 9वां दीक्षांत समारोह माए बोल रहा है। श्री बागड़े कहो कि किसाना ने उन्नत बीज और नुवी तकनीक जोड़ और खुदरेपण उबा करया जा सके है। राज्यपाल नौजवाना नौकरी करण वाला रे बजाय नौकरी देवन वाला बनवा सारू कहो। वह खेतीबाड़ी माए ड्रोन AI और स्टार्टअप काम लेवन सारू कहो। जलसा माए कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणाई नौजवाना तालीम ने किसाना और देश का भला सारू काम लेवन बाबत कहो। दीक्षांत समारोह में 358 विद्यार्थियों ने डिग्रियां और 14 विद्यार्थियों ने सोनारा तमगा देर नवाजी किया। ऐसा समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। यमुना नदी रा पानी जुड़िया करार रे बारा माए राजस्थान और हरियाणा सरकार बीच खास सहमति बनी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज नई दिल्ली माए जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और हरियाणा रा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सागे मीटिंग पाछे आ जानकारी दीनी। श्री शर्मा कहो कि यमुना नदी रो पानी पाइप लेन रे जरिए राजस्थान लावण री मियाद तय करती रीची है।
2: किसाऊ के पानी को लेकर के सहमति बनाने का सभी राज्यों में किस तरह से बन सकती है उसके लिए बातचीत हुई है। एक हरियाणा राजस्थान का यमुना का पानी उसकी पाइपलाइन उसके लिए गाइडलाइन तय की है कि जल्दी से जल्दी वो कैसे हो उसके लिए समय तय हुआ है। एक हरियाणा और राजस्थान का RRTS का मामला था, उसमें सहमति बनी है कि वो हमारे राजस्थान तक दिल्ली हरियाणा और राजस्थान तक वो पहुंचे। इन सारे विषयों को लेकर के चर्चा हुई है।
0: मीटिंग पाछे हरियाणा रा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतायो कि किसाऊ बांध बन जावणो हरियाणा राजस्थान और दिल्ली माए पानी री समस्या हमेशा सारू खत्म भए जावेला। राज्य सरकार एक जिला एक उत्पाद नीति रा तहत 5 जिला सारू 18 करोड़ रुपये बत्ता खर्च वाली परियोजना

0: મંજૂર કિની હૈ મુખ્ય સચિવ વી શ્રીનિવાસ રે સદારતમાં રાખીજી મીટિંગ માય દોસા ચૂરુ ડીડવાના કુચામન ફલૌદી અરબાલોત્રા માય આ કામા સારું 10,76,00,000 રૂપિયા જારી કરી ચ્યા ઇને તેત દોસા અર ડીડવાના કુચામન માય ભાટા ઉદ્યોગ ચૂરુ માય લકડીઓ બણ્યા સામાન ફલૌદી માય સોના મુખી ભંડારણ અરબાલોત્રા માય ટેક્સટાઇલ ડિજિટલ પ્રિન્ટિંગ સારું નુઆ સેન્ટર અર લેબ ખોલ્યા ચાવેલા રાજ્યમાં કાનૂન વ્યવસ્થા મજબૂત બનાવણ અર અપરાધિયા માથે કાબૂ કરણ સારું પોલીસ મુખ્યાલય રે ઓરું 2 દિન રો નાકાબંધી અભિયાન ચલાઈ ચ્યો અભિયાન રા તેત 727 ઠોણા ગાડિયા રે જાંચ કરી ચી અતિરિક્ત મહાનિદેશક વી કે સિંહ બતાયો કે જાંચ રે દૌરાન 7,000 ચાલાન કરી ચ્યા પ્રદેશ માં ડિજિટલ જનગણના 2027 રે બારા માં જાગરૂકતા અભિયાન ચલાયો જા રહ્યો હૈ ભીલવાડા જિલ્લા માં આઈ કલેક્ટર એસપી સાંસદ અર વિધાયક ખુદ ડિજિટલ જનગણના કીની શહેર માં ન્યારી ન્યારી ઠોણા હમારી જનગણના હમારા અધિકાર સરીખા નારાવાળા પોસ્ટર લગાર લોગાને ઇનો જુડબારી સીખ દી જા રહી હૈ ઝુંઝુનુ માં આઈ આજ પ્રગણકાં સારું ખાસ શિબિર લગાઈ ચ્યા અરે બે મોસમ પ્રદેશ રા ઉત્તરાધ આતુણી અર ઉગણી હલકા માં જોરદાર ગરમી પડ રહી હૈ मौसम विभाग रे मुजब आज फलौदी सब गर्म रहो जठे पारो 46.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज करी चियो जैसलमेर माय दिन री बगत तापमान 46.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड करी चियो बाड़मेर बीकानेर चित्तौड़गढ़ माय पारो 45 डिग्री सेल्सियस ने पार कर कियो जैसलमेर बाड़मेर बालोतरा और बीकानेर माय लू रा हालात रहा राजधानी जयपुर माय लू सरीखा हालात बीच कई ठोणा प्रशासन सड़का माथे पानी रो छिड़काव करवायो मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर पाकिस्तान नु लागोड़ी सरहद कने रा हल्का माय काले जबरदस्त लू बाजण सारू चेतायो है इस आगे कई जिला सारू ऑरेंज एर येलो अलर्ट जारी करी चियो है इन बीच राज्य रा उत्तराद उगनी हल्का माय कठे कठे आज ही आंधी चाली और बिरखाफी झुंझुनू जिला में मिलावटखोरी रे खिलाफ स्वास्थ्य विभाग री कार्रवाई रे दौरान मोटी तादाद माय खान पीन री चीजा रा नमूना मानक रे मुजब नहीं मिलिया मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर बतायो कि जनवरी 2025 हूँ मार्च 2026 ताई जिला माय खास अभियान रात लिया जया 837 नमूना मायू 223 ते मानका माथे खरा नहीं उतरिया सलूमबर्रा पीएमसी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय माए विधायक शांता अमृतलाल मीणा आज संविधान कक्ष और डिजिटल बाल पुस्तकालय जनता ने सौंपया इ मौके विधायक विद्यार्थियों नुआ सुबितान और फायदो लेवन बाबत कहो वे डीएफएमटी मधु टीन शेट लगावन रा काम रे शुरुआती कीनी युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय गृह मंत्रालय सागे मिलर विकसित वाइब्रेंट ग्राम प्रोग्राम 2026 सारू माई भारत प्लेटफॉर्म माथे राष्ट्रीय स्तर री सवाल जवाब री होड़ सरू कीनी है प्रश्नोत्तरी होड़ आवता महीना फेवन वाला सीमावर्ती ग्राम सहभागिता कार्यक्रम माए नौजवाना रा चयन कार्यक्रम रो पहलो दौर है ई ऑनलाइन होड़ माए 20 मई तई भाग लियो जा सके है आईपीएल क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स बीच मुकाबलो फैला ओ मैच अब थोड़ी देर पछे 7:30 बजे रायपुर में शुरू फैला अंक तालिका में फिलहाल कोलकाता नाइट राइडर्स 8वीं ठौड़ माथे है जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दूजा पायदान माथे है आखिर में खास समाचार एक फेर सुन ली रहो केंद्रीय मंत्रिमंडल खरीफ विपणन सीजन 2026-27 सारू 14 शाखारा सरकारी मूल माय बढ़ोतरी री मंजूरी दीनी सीबीएसई 12वीं कक्षारा इम्तिहान रो नतीजो जारी कीनो लड़कियां बाजी मारी मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो यमुना नदी रो पानी पाइप लेन रे जरिए राजस्थान लावण री मियाद तय करी जी और प्रदेश रा अतुणी और लंका उगनी हल्का माय जबरदस्त गर्मी फलौदी और जैसलमेर माय पारो 46 डिग्री सेल्सियस रे पार पुग्यो इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो नमस्कार
1: FM 103.7 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं शाम के 7 बजे हैं अब प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती बाड़ी

खेतीबाड़ी कार्यक्रम सुनानिया सेंग किसान भाया ने आप रे मांगीलाल भैरा घना है तोर कोडू राम राम भाया देखो जद भी चौपाल दिन आवा हैंग हूँ पहली आप सुन राम राम करा और राम राम रे पछे आप री घर बीती पर बीती अतया और सागे सागे आप रे खेती रे काम आने वाली कई बात चिता है जी को तेवड़ पर रावा कि भाई फलान जी हूँ ऐ बात चिता करा भाइयों ए बात चिता करा और ए बात सगली है जी कि आप रे काम री बात या करे। तो आज देखो हूँ दो छोटा छोटा बिंदु है बे घरों तेवड़ पर आयो कि एक तो अपा जी का खेत भवा हाँ बी टाइम जी को बीज काम में लेवा वो बीज है जी को प्रमाणित हुए तो बहुत बढ़िया रहे। अब इस बारे में इन्हें जी की सगली बात है बा बात अब यार आपा करा और सागे सागे बीज उपचार आप देखा हाँ कि बीज रो उपचार करा तो कहीं कहीं फायदा हुए क्या अपन ने जी को बीज रो उपचार करना चाहिए ए दोनों बात चिता आप करा ला। तो सेंगो पहली जी की बात आपने बताऊं कि भाई चोखा और प्रमाणित बीज आप खरीदा बीरो कहीं फर्क पड़े और आपने क्यों खरीदना चाहिए कहीं आपनों उद्देश्य होना चाहिए ला रहे। आप देखा हाँ कि अच्छा और प्रमाणित बीज है जी का चोखी पैदावार देवे अधिक पैदावार देवे बेंगी पैदावार 20-25% दूसरा बीजों ज़्यादा उया करे और ए उच्च गुणवत्ता वाला उया करे इन वास्ते आप देखा हाँ तो यह अनुवांशिक रूप में शुद्ध भी उया करे। अब देखा हाँ कि भाई जी का उन्नत प्रमाणित बीज है बेंगी ठा किया पड़े कि यह उन्नत प्रमाणित बीज है जी को प्रमाणित है और ये बीज री विश्वसनीयता है जी की है अच्छी। प्रमाणित बीजारो जी को मुख्य विशेषता है बीके मायने आप मोटी मोटी विशेषता बात करना तो उच्च अंकुरण ए बीजार मायने कम शु कम 80% ज्यादा बीज है जी का अंकुरित हुए यानी कि नुकसान कम हुए और बीज अंकुरित ज्यादा हुए बेकार कम जावे शुद्धता। दूसरी फसलों या खरपतवारों ए बीज है जी का आपने बचावे रोग प्रतिरोधी क्षमता एंक मायन हुए बीमारियां और कीट कम लागे उचित नमी बीजा रे मायने नमी री मात्रा है जी को मानक रे अनुसार हुया करे इन वास्ते ए जी को उगण में और अंकुरण में बढ़िया रिया करे। अब प्रमाणित बीज री पहचान किया करा ई बात माते पाछी है जी को अपन थोड़ी सी बात कर ला कि नीलो टेग पैकेट रे माते सर्टिफाइड सीड रो नीलो टेग लागियोड़ो होनो चाहिए। टेग रे माते जानकारी भी दियोड़ी है कि फसल रो काई नाम है किस्म किसी है अंकुरण रो काई प्रतिशत रही शुद्धता किती और समाप्ति तिथि यानी कि एक्सपायरी डेट किती है बे आपने सगली ध्यान देख परी और थैली लानी चाहिए। आपा ई बात रो विशेष ध्यान रखा कि एक तो टेग नीलो हुए और बीरे सागे सागे एक्सपायरी डेट यानी कि डेट बार नहीं योड़ो होना चाहिए। आप देखा तो अंग्रेजी दवाएं आप जी की लेवानी कई बार बीमारी सीमारी रमाइने तो बिंग माते आप आवश्यक रूप में देखा करा कि भाई यार डेट बार तो कोनी योड़ी तारीख निकलियोड़ी तो कोनी बी यही आप है जी को बीज ले तो थका भी ई बात रो ध्यान रखा कि ई थैली रमाते एक्सपायरी डेट है जी की निकली तो कोनी यदि निकल गई तो पस बे बीजा ने जी को आप नहीं लेवा क्योंकि दुकानदार देखो कि उसके कहीं डब्बो भी नहीं देखे और उसके कोई देख भी लेवे तो देखे भाई कहीं है किसान तो कम पड़ियो लिखियो वेला और ले जाए और ले जाए आप रुपये दे खेता मैं आदो पर दो उगी आप कह दे भाई और कोई कारण रह गया। तो ऐ सब बात अपन ध्यान रखनी है आप ध्यान रखा कि एक्सपायरी डेट यदि निकल गई वे तो पछे आप वो बीज नहीं खरीदा बीज खरीदा कटूँ ई बात रो भी आप ध्यान रखा कि जिया नेशनल सीड कॉरपोरेशन है NSC बटू खरीद सका राज्य बीज निगम को केंद्र है कोई तो बटू खरीद सका या पछे कृषि विज्ञान केंद्र या पंजीकृत कोई सहकारी समितियां है बैंकों आप है जी को बीज खरीद सका। और एक बहुत बड़ो इंक मायने मारो आपने सुझाव है कि पैकेट खरीदन रे बाद में दुकानदार कनु आप पक्को बिल इनवॉइस है जी को जरूर लवा वो आनाकानी करे या पछे कहवे कि भाई बिल लेव तो थागे

10-20 रुपया थैली दीड बत्ता लाग सके। तो बिन क्या भाई लागे तो लागे बत्ता, तू तो माने पक्को बिल दे। वीरू कहूँ है कि काल ने अपने वो बीज फोरो निवड़ जावे तो कमो कम बिन पाछो बीरो खुदरो बिल काटोड़ हुए जी को ले जा बतामा। और बिन के माई ने थैली रे माते जी की बातें चीतां लिखोड़ी है कि भाई देख ले एक योग 80% है जी को अंकुरण हुई, इनके माइन मार 30% अंकुरण हुई, बता कहीं कारण रियो। तो बीरो अपन कहीं है कि बहुत बड़ो फायदो मिले, इन वास्ते अपन ध्यान रखा कि हमेशा है जी को बिल पक्को साथ में ले रहा। और एक छोटी सी बात किसान भैया आप और कर लिया, बीज उपचार री आप बैठता था कहीं यहाँ बात मैं थाने बताई कि भाई एक तो अच्छा और प्रमाणित बीज रे बारे में आप बात करा ला, और दूसरी बात है जी को बीजोपचार रे बारे में करा ला। बीजोपचार आप जी की बाजारों मोल बीजारी थैलियाँ लावा बिंग के मायने करियोड़ आवे, और यदि अपने घरेलू पारंपरिक बीज हुए तो बिंग के मायने आप बीज उपचार खुद कर सका। बीज उपचार रा जी का प्रमुख फायदा है, लाभ है, बे इण भात है कि बीमारी और कीटा से सुरक्षा हुए। ए बीज है जी का शुरुआती अवस्था मायने फफूंद जिया की बिल्ट है, रॉट है, और मृदा जनित जी का रोग है बैंकों ए सगला ने है जी को ओ बीज उपचार बचावे। और बीज उपचार करियोड़ा जी का बीज है बैंको बेहतर अंकुरण और विकास हुए। उपचारित बीज को जमाव चोख हुए, जड़ा मजबूत बने और शुरुआती पौधारी शक्ति है जी की बढ़े, उपज रे मायने वृद्धि हुए, स्वस्थ पौधा और कम बीमारियां होने रे कारण फसल री गुणवत्ता और पैदावार दोनों है जी को शानदार हुए। समान फसल विकास अब देखा तो खेतरे मायने सगड़ा बीज है जी को समान रूप अंकुरित हुए और पौधा एक जेड़ा विकसित हुए जिको कटाई करण रे मायने आसानी हुए, लागत रे मायने कमी। ए बीज बुआई रे तुरंत बाद में कीटनाशक रे छिड़काव री आवश्यकता कोनी राखे, बिसु खेती जी की लागत है बा कम आवे और पर्यावरण रे अनुकूल भी हुए। ए सीधा खेत रे मायने कीटनाशक छिड़कण री तुलना रे मायने बहुत कम रसायन यानी कि 99.5% के मायने रसायन कम छिटकनो पड़े, तो वो देख लो एक तरह पर्यावरण रे वास्ते बहुत ज़्यादा अनुकूल रहे। अब बीज उपचार री विधि, बीज उपचार यदि अपन घरे करनो है तो अपा आम तौर में तो यह तरीका अपना सका। सूखो उपचार है बिंग मायने फफूंद नासी पाउडर है बीरो बीज रे साथ मिला और जान ट्राइकोडर्मा आवे बिन बीज रे साथ मिलाई सका। गीलो उपचार है बीजा रे मायने दवारो घोल है बी मायने डूबो उपरो और आप पाछे सुकापरी और काम में ले सका। और कंद उपचार आलू जैसे कंदों को आप रसायना रमायने घोल परो और पाछी सुखा प्रिय रे जी को प्रयोग में ले सका। अभी मायने थोड़ी सी सावधानी रखनी है कि आप हमेशा रसायन उपयोग करणु पहली दस्ताना या मास्क है जी को जरूर पहन लिया। तो किसान भैया देखो ए तो ही बाता चीता अच्छा और प्रमाणित बीज रे बारे में और बीजो उपचार रे संबंध रे मायने। अब थोड़ी एक बात कर ला, अबार जी को टाइम चले है आप देख रिया हो और सुन भी रिया हो अनुआने कि गर्मी है जी को जचार पड़ रही है सब जगह। राजस्थान रे मायने कई कई ठोड़ पारो 42, 43, 44, 45 तक पहुंच गयो है। इतनी गर्मी रे मायने आपा खुद या पछे आपना दाव डांडा छोटा जी का जिनावर है पालतू बे परेशान हो सके। इरो आपा विशेष तौर ध्यान रखा आपना जी का पालतू पशु है बेने आपा छायादार जगह रे माते बांधा जटे स्थान ठंडो हुए और उचित हवारो प्रबंधन भी आपा भी जगह रमाते रखा। और हो सके तो थोड़ी सी साफ रेत बिछावरी नीचे और बिने थोड़ी सी आली कर दिया तो कहीं है कि एक ठंडक सी महसूस हो रहे और सीधी लू नहीं लगे। ऐसे बातें चितारों भी आपा ध्यान रखा। और भाया देखो बातें चिता आपा औरों भी करा लेकिन अब देखो कि हर दिन गांव गांव त्रे जापरार बठारा जी का किसान है वे खेती कर रिया है, खेती रे मायने कई तरीकों खेती करे ए सगली बातें चीता मैं पूछ परी रिकॉर्ड कर लिया करा। तो आज हूँ देखो के गयो गांव शिंगड़री कांकड़ में और बठे मने मिलिया नरेंद्र जी बागड़िया। तो वेणसु जी की बातचीत करी वह आप ते करा पूछती आप भी सुनो

0: और देखो कि भाई कई बातें सीधा करी।
1: राम राम शाह,
0: राम राम शाह, नरेंद्र
1: कहीं सा शुभ नाम?
0: कुमार।
1: नरेंद्र कुमार जी। तो नरेंद्र कुमार जी अटक गई रहा
0: हाँ ना, शिंगड़ गई।
1: सिंगड़ गई। आ सिंगड़ की कांकड़ है गई?
0: हाँ,
1: क्या लून देगी है?
0: लोन दे के पास में शिंगड़ कांकड़ है।
1: लून देगी करने सिंगड़ की कांकड़ है। तो कहीं काम धंधा करिया करो,
0: खेती बाड़ी करा।
1: खेती बाड़ी वालों काम करो। खेती बाड़ी में हमार देखो कि गर्मी रो टाइम चले है भाई। थांगे तो अट बारानी जमी है ला
0: हाँ,
1: के पीवत है?
0: पीवत कौन बरा नहीं है,
1: बारानी जमी है,
0: बरसा दी खेती करा।
1: बरसादी खेती करो। तो पचे अबार खेतान में कहीं काम काज चले?
0: अब आर की इन्हें फेरी है।
1: फिरी तो हो पर एक किया करे ने नरेंद्र जी के गर्मी री जूते ही है जी को खेतान मायन करे तो बढ़िया रहे। तो आप कहीं गर्मी री जूते ही करिए?
0: अब पहला कर दी मां तो जोते, बाद में
1: अच्छा
0: फरवरी में
1: फरवरी में ही कर दी। कितना बीघा खेत बतायो?
0: खेत आया 39 बीघा
1: 40 बीघा खेत है। बहुत ही बढ़िया। और देखो अब थोड़ा एक दिन पहले की बात करा तो आप जी को गर्मी री जूते ही तो कर दी। गर्मी री जूते ही रहा कहीं कहीं फायदा हो खेतान मायन कहीं फायदा हुआ?
0: जैसे लट्टा हुआ, कीड़ा हुआ, फसल नुकसान पहुंचा हुआ, जूते क्रिया बाद में जमीर मायने खत्म हो जाए, तावड़ तो पे जाना नष्ट हो जाए।
1: बिल्कुल बोल रही बात। देखो के गर्मी री जूते ही अपन करा ही वहां ते आग भाई जमीर मायने कोई एड़ो कीड़ो लट है जिको अपन फसल ने नुकसान पुगावे
0: हाँ
1: तो वो खत्म हो जावे।
0: हाँ
1: यार सागे सागे है जी को कहीं एक बार की जमीर मायने ही छो की पान लाग जावे तो पाची बरसात हुए जना पानी जलन की क्षमता भी थोड़ी
0: हाँ विकसित हो जाए।
1: ठीक हो जावे। बहुत ही बढ़िया। और हमारे देखा थोड़ा एक दिन पहले देखो के केरा रीर सांगरियाली सीजन चले
0: हाँ
1: तो केर सांगरियाली सीजन के मायने कहीं की है जी को केर सांगरिया थोड़ी?
0: सांगे तब की बार कम हुई,
1: अच्छा
0: मतलब गर्मी कम पड़ने की वजह, और
1: अच्छा अच्छा
0: पश्चिम विश्व आयो ना, गर्मी पड़ी कौन वातावरण सही मिलियो कौन खेजड़िया ने यार, तो सांगरिया कम हुई इस बार,
1: अच्छा इस बार सांगरिया कम हुई
0: 80% कम हो गई।
1: तो मतलब जी टाइम कहीं सांगरिया लागे फाल आवे खेलिया माते
0: हाँ गर्मी
1: बी
0: पड़ने,
1: टाइम कोई है जी को बरसात या आंधी रोड़ो जावे बीर कारणों कम लागे
0: गर्मी कम पड़े जाना।
1: गर्मी कम पड़े जाना। गर्मी तो अब घनी पड़े नहीं।
0: हाँ तो बहुत टाइम टाइम की बात है। हाँ
1: अच्छा टाइम टाइम री बात। हम भी टाइम लाग दी टाइम है जी को गर्मी कम पड़ी
0: जन फसल वही कौन
1: जना
0: आंगरी कम लगी।
1: सांगरी कम लागी तो ये की गड़बड़ तो हुई आनु देवनाली थोड़ी घनी तो हुई ली।
0: हाँ ये थोड़ी बहुत हुई,
1: हाँ थोड़ी घनी तो हुई
0: कहीं खेलने मत हुई, कहीं खेलने मत हुई कौन।
1: कई खेल लिया मत कहीं गेंद हुई गया बजे
0: हाँ मतलब यार गोल गोल।
1: डोडा टाइप का हुई गया।
0: हाँ
1: बात बढ़िया। और अब देखो के जेड अपका दो है
0: हाँ
1: जेड में जे मान लो बिरखा आ जावे टेमो टेम बारिश हो जावे तो आप पचे खेत है जो तो जन काई तैयारी कर रखी है?
0: खेत में मूंग है, बाजरी है,
1: ए बहु
0: गंवार।
1: मूंग बाजरी गंवार है बहु
0: हाँ
1: तो आप पचे नरेंद्र जी खेत बहु जना ट्रैक्टर घर रोई जाए या किराए लो?
0: मैं तो किराए ला मन के लगभग के यार घर रही है।
1: सगड़ा ना करा रहे तो इतनी बीघे 40 बीघा खेती पाओ जन पे था के घर रो किया कौन ट्रैक्टर काई?
0: मैं तो घरों ही लिए कौन, बाकी मतलब घरों में फायदा ही हुआ।
1: और बीज है जी को थे लाओ जी को कठो लाओ बजे
0: घरों बीजा नहीं बस दुकान लानो पड़े।
1: दुकानों मोल लाओ घरों हुए जना घरों बीजो तो मतलब घरों पछे क्या न हुए काई राखो
0: हाँ पहले लाल निशाल वाला
1: क्या राखो?
0: मैं रख दे कट्टो भर,
1: अच्छा
0: और
1: कट्टो
0: फिर
1: भर
0: पाउडर
1: रख दो
0: छिड़क
1: जना
0: दे,
1: वो खराब कोनी हुए
0: पाउडर छिड़क दे ऊपर
1: पाउडर छिड़क पर और रखो बीर कारण वो खराब
0: यार,
1: कोनी हुए।
0: कहाँ कोई दवाई लार मैंने रख दे।
1: यार पाछे है जिको भाव जना पछे पैदावार मा तो कोई फर्क कोन पड़े बराबर पैदावार
0: फर्क
1: दे।
0: तो पड़े मतलब एक बीज आवे वो मंडी मारू लाऊं दुकान में, थोड़े पैदावार ज्यादा आई जाए,
1: अच्छा
0: पैदावार फर्क पड़े।
1: पैदावार में फर्क पड़े। और नरेंद्र जी यहाँ खेतार माइन खाद आदि डालो कहीं
0: खाद आम भैंसे गाय गोबर ही डाला।
1: गाय आरो और भैंस आरो गोबर आलो खाद? तो गोबर आला खाद रे मायने देखो एक तो कहीं वे कहते हैं हिदो ही है जी को कटे ढिगलो करियोड़ो और भेड़ो करियोड़ो वो ही है जी को खेतरे मायने खिंडो या पछ कोई भी ने आलो आलो करपुरो और एकदम ताजो बनो भी ने एकदम कंपोस्ट खाद है जो।
0: ताजो बरसात वजन आलू हो जाए, अगले साल खिंडा था।
1: अच्छा अगले साल खिंडो? नहीं एक तरीको वो है कि भाई एक तो आप कोई
0: हाँ वो
1: खाडो
0: खा
1: वाडो खोद लो।
0: आप ही मतलब आप मीथेन गैस बाहर निकल जाए अगली गोबर में,
1: हाँ
0: जब वो गर्मी पैदा कौन करे।
1: भाई तो बात है भाई तो कह रही हूँ मैं था ने कि और कोई जहाँ कचरो है और अनुन कोई
0: हाँ मतलब सड़ जाओ
1: पत्तियां
0: फिर।
1: है और है सगली बीमारी मिलार

तो किसान में देखो राधे श्याम सांचोरा और हमारी पार्टी रो गायडो और लोक भजन आपा सुनियो। और अब देखो कि जे आपा गर्मी री बात करी, गर्मी रे मायने शरीर ने ठंडो राखण खातर या लू सू बचवण खातर आपा मोटो अनाज उया करे ना, जे की बाजरी है, ज्वार है या रागी है, बिंग की छाछ और राबड़ी बण्योड़ी है जी को अमृत रे समान मानी गई है। आ देखो पारंपरिक देशी पेय है और यूं पेट ने ठंडक मिले और लू भी आपा बच सका। मोटा अनाज और गर्मी रमाई ने छाछ राबड़ी रो जिको फायदो है, शरीर रमाई ने ठंडक बनी रहे, छाछ में बनी राबड़ी पेट री जलन ने शांत करे और बॉडी रे टेम्परेचर ने जिको बराबर रखे, पाचन रमाई ने भी सुधार रहे। यूं मौजूद इंग मायने जिका मौजूद फाइबर है या प्रोबायोटिक्स पाचन ने बेहतर बनावे, मिनरल री जिकी है भरपाई बाबी टेमो टेम उभो रहे, गर्मी रमाई ने पसीना रे साथ शरीर रू निकलन आला जिका इलेक्ट्रोल्स है बीरी भरपाई भी इरू ऊंती रहे और लू सु सुरक्षा हुए खास तौर। तो ऐ तो बात चीता ही कि भाई आप ध्यान रखा गर्मी रे मायने खावण पीवण रो भी, और अपना जिका जिनावर है बेने भी आप है जिको एड़ी चीजा खुआवा जिको कहीं है कि बैंक शरीर में गर्मी नहीं हुए और पेट रे मायने बैंक ठंडक रहे। और अब देखो कि बाजार भवारी पानड़ी अपन के नायोड़ी है नागौर मंडी रे मायने आज सगली जिनसारा भाव है जी को इणभा था आप सुन ली रहो। और यदि आपने नागौर मंडी रे मायने लापरार आपरी कोई जिन्स है जी को बेचनी है भाव जी ठीक लागे तो आप जरूर लार बेचो। मूंग नागौर मंडी रे मायने 5,000 लेर 8,100 रुपये प्रति क्विंटल, तिल काला नागौर मंडी रे मायने 8,000 लेर 9,000 तई बिके है लई जे है, और सफेद तिल है जिका 9,000 लेर 10,000 तई बोली लागे। जवार नागौर मंडी रमाइन 3,000 लेर 4,600 तई रहे, गवार 5,000 लेर 5,475 रुपया प्रति क्विंटल तई बिके, तारामीरा री बोली 4,900 रमाइन नीचे तो ऊपरे रमाइन 5,450 रुपया तई लागे। जीरो नागौर मंडी रमाइन 14,000 लेर और 21,000 रुपया तई लीरीज है तो आप देख लो, क्योंकि अबार जिकी लाडली शियाड़ू फसल गई रबी री फसल बिंग मायने भाई लोग आ रहे जीरो खूब हुयो और भाई लोग जे उड़ी कह के भाई जीरो भावड़ा ठीक है, हालांकि घना ठीक तो कौनी पहली हल्ला अबे की कम है, लेकिन यदि आपने लागे कि भाई ठीक है तो आप बेच सको या ले सको। मेथी दाना 5,000 लेर 5,800 रुपये प्रति क्विंटल तक रिया, और ईशब गोल्ड री बोली 11,000 लेर 14,000 तई, सौंफ 7,000 लेर 14,500 तई, और चिनारी बोली 4,700 लेर 4,925 रुपया तई, असाड़ियों 5,000 लेर 5,600 और चिंदी सुआ 6,000 लेर 7,000 तई। इरे सा गई चौपाल रो टाइम हुए पूरो, तो आपरा मांगलाल भाई ने दिरो सीख करा राम राम।

खेती बाड़ी अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। श्रोताओं, आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। लीजिए सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: जल संरक्षण के सारे काम सुख समृद्धि के रचे आयाम।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गर्मी के इस मौसम में आपके विचार की प्रासंगिकता और भी अधिक बढ़ जाती है। जी हाँ श्रोताओ, जल अमूल्य है, इसे बूंद बूंद बचाना हमारी जिम्मेदारी है। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
2: छत्तीसगढ़ रायपुर से नरेंद्र कुमार जाटव, संदीप जाटव, अनीता जाटव और राधिका रानी जयपुरिया जी ने लिखा है, मिठाइयों का सम्मेलन कहानी बहुत पसंद आई, आपको बधाई।
1: आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू।
2: ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में।
2: तो श्रोताओ, कल हमने चर्चा की थी गर्मी से बचने के कुछ उपायों पर
1: जी,
2: और ये भी जाना था कि 12 बजे से 4 बजे तक खास तौर से हमें गर्मी के मौसम में बाहर क्यों नहीं निकलना चाहिए। तो अजीत जी, जरा श्रोताओं को ये भी जानकारी दे दें कि आज की चर्चा किस विषय पर होगी।
1: विमलेश जी, आज हम ये चर्चा करेंगे कि गर्मी के मौसम में हमारा खान पान कैसा होना चाहिए
2: जी।
1: लेकिन श्रोताओं, इससे पहले कि हमारी चर्चा आगे बढ़े, एक रोचक लेकिन महत्वपूर्ण बात आपको हम बताना चाहते हैं, और वो ये कि परंपरागत धारणाओं के अनुसार गर्मी के मौसम में सबसे कठिन दिन कब आते हैं।
2: जी अजीत जी, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि वो समय अब आने ही वाला है। आज 13 मई हो गई, बस कुछ दिन और। जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं नवतपा की। उत्तर और मध्य भारत में इसका प्रभाव विशेष रूप से दिखाई पड़ता है। इन दिनों हमें अपना बहुत ही खास ध्यान रखना चाहिए। अजीत जी, नवतपा किसे कहते हैं ये तो बताइए जरा।
1: जी विमलेश जी, नवतपा का अर्थ है 9 दिनों तक तपना, यानी 9 दिनों तक भयंकर ताप।
2: जी,
1: ये वो अवधि है जब हमारे परंपरागत खगोल ज्ञान और मान्यता के अनुसार सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है, और इन दिनों में लगभग 9 दिनों तक प्रचंड गर्मी पड़ती है।
2: तो श्रोताओ, आइए अब जानते हैं कि सामान्यतः ये समय कब आता है। आमतौर पर मई महीने के अंत यानी लगभग 25 मई से जून महीने की शुरुआती यानी 2 जून तक। जलवायु परिवर्तन के कारण ये समय थोड़ा इधर उधर हो सकता है। इस समय विशेषकर उत्तर भारत में लू चलती है और आसमान साफ होता है, इसलिए छाया की भी गुंजाइश नहीं होती है।
1: जी, बता दें श्रोताओं कि यह प्राचीन अनुभवों के आधार पर परंपरागत मान्यता है। वैसे नवतपे में गर्मी बड़ी खतरनाक हो जाती है, लेकिन इसे वरदान भी माना गया है। क्यों?
2: नवतपे में जितनी गर्मी पड़ेगी, माना जाता है कि मानसून उतना ही अच्छा आएगा।
1: जी,
2: आइए अब करते हैं चर्चा गर्मी के मौसम में खान पान की।
1: तो विमलेश जी, आपसे ही शुरुआत करें।
2: जी अजीत जी, श्रोताओ, गर्मी के मौसम में खास ध्यान ये रखना चाहिए कि हमारा आहार पौष्टिक लेकिन हल्का हो।
1: और हाँ, इस मौसम में नींबू पानी, छाछ, दही जैसे प्राकृतिक उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करें।
2: सबसे जरूरी बात तो ये है श्रोताओ कि खाली पेट घर से न निकलें।
1: जी,
2: अब बात करते हैं मौसमी फलों के बारे में। अजीत जी, मुझे लगता है कि प्रकृति को सचमुच हमारी बहुत चिंता रहती है।
1: जी बिल्कुल, इसलिए तो प्रकृति को माँ भी कहा गया है।
2: जी सही कहा, जैसे माता को हमारी चिंता रहती है, वैसे ही प्रकृति भी हमारी चिंता करती है। श्रोताओ जरा सोचिए ना, गर्मी के मौसम में ही खरबूजे, तरबूज जैसे फल प्रकृति क्यों उगाती है, खीरे और ककड़ियाँ क्यों उगाती है, आम और दूसरे मौसमी फल क्यों होते हैं, ये फल सर्दियों में क्यों नहीं उगते।
1: विमलेश जी, आमतौर पर लोग कहेंगे कि इसमें भला सोचने की क्या बात है, ये गर्मी के फल हैं तो गर्मी में तो होंगे ही।
2: जी अजीत जी, आम लोग ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ फल जैसे खरबूज, तरबूज, ककड़ी और खीरे में 80-90% तक पानी होता है।
1: जी,
2: इन्हें खाने से हमारे शरीर में पानी की मात्रा बनी रहती है। इतनी अधिक पानी की मात्रा होने के कारण ये पचने में भी आसान होते हैं।
1: जी विमलेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा, प्रकृति को सचमुच हमारी चिंता रहती है, तभी तो वो ऐसे फल उगाती है जिनसे कि हम स्वस्थ रहें। हमें प्रकृति माता को जरूर धन्यवाद देना चाहिए।
2: जी,
1: लेकिन दुखद है कि प्रकृति हमारे स्वास्थ्य की जितनी चिंता करती है ना, उतनी प्रकृति के स्वास्थ्य की चिंता हम नहीं करते।
2: तो श्रोताओ, कैसी लगी हमारी ये जानकारी, जरूर बताइएगा। और अब सुनते हैं आज का प्रश्न।
1: तो आज का प्रश्न है, प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया।

0: प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है?
0: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है, और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, शीर्षक है गर्मी।
1: ये कार्यक्रम गर्मी के मौसम की जानकारी देते हुए बताता है कि गर्मी के मौसम में हमें अपना ध्यान किस तरह से रखना चाहिए, और गर्मी के मौसम में पैदा होने वाली साग सब्जियाँ और फल कौन कौन से होते हैं जिनका हमें भरपूर सेवन करना चाहिए।
2: बहुत पुरानी बात है, दो बहनें थी, सोना और रूपा। दोनों अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहती थी। गर्मी का मौसम था, दोनों बाग में खेल रही थी।
3: अक्कर बक्कर बम्बी वो 80-90 पूरे 100 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा।
4: अब तेरी बारी है, तेरी
5: तुम्हारी बारी, तुम सुना, तुम सुना।
4: अच्छा ठीक है, मुझे तो कहानी आती है,
5: तो कहानी सुना दो भाई।
4: अच्छा ठीक है। गर्मी का दिन था, एक कौआ प्यासा था, घड़े में पानी थोड़ा था। कौआ लाया कंकर, घड़े में डाले कंकर, पानी आया ऊपर, कौए ने पिया पानी, खत्म हुई कहानी।
5: अच्छी कहानी थी भाई। कौए ने तो पानी पी लिया, पर अब मुझे बहुत प्यास लग रही है।
4: हाँ, प्यास तो मुझे भी लग रही है। वो सामने घड़ा रखा है, चलो वहाँ चलकर देखते हैं।
5: हाँ चलो चलो, वहाँ पे
4: चलो,
5: पानी
4: चलो,
5: होगा।
4: चलते हैं।
2: सोना और रूपा ने घड़े का ढक्कन हटाकर देखा तो उसमें पानी था। दोनों बहुत खुश हुई। रूपा पीने के लिए पानी निकाल ही रही थी कि तभी एक आवाज आई।
6: कौन है
5: दीदी?
6: कौन है
5: दीदी?
4: अम्मा जी, मैं हूँ सोना और ये है मेरी बहन रूपा।
5: अम्मा जी, हमें बहुत प्यास लगी है,
4: हम थोड़ा पानी पी लें?
7: हाँ हाँ, क्यों नहीं, पी लो पानी। बच्चों पानी पी लो, ढक्कन ठीक से लगा देना। पी लिया पानी? प्यास बुझी?
5: हाँ, पर ठंडा पानी था।
4: लेकिन अम्मा, आप कौन है?
7: मैं एक मौसम हूँ। मेरे आने से तुम्हें बहुत प्यास लगती है और बहुत गर्मी भी लगती है, पर मैं अपने साथ तरह तरह के फल भी लाती हूँ, जैसे खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी और भी बहुत सारी चीजें। अच्छा भला बताओ तो मैं कौन हूँ?
5: कौन है आप?
7: नहीं समझे?
5: नहीं।
7: अच्छा, तो फिर ये पहेली सुनो।

0: पंखा जलते हैं।
1: और सारा दिन पानी भी पीते हैं।
0: ऐसा मौसम।
1: अब
0: गर्मी अम्मा
2: है। बिल्कुल ठीक समझी। मैं गर्मी यानी गर्मी का मौसम ही तो हूँ।
0: गर्मी अम्मा, आप कब आती हैं पता ही नहीं चलता।
2: सीधी सी बात है, सर्दी जब जाने की तैयारी करती है, गर्म

0: में बैठते हैं, ठीक है?
1: हाँ चलो ना, चलते हैं।
2: चलो।
3: सोना और रूपा गर्मी अम्मा के साथ जाकर पेड़ की छाया में बैठ गई। इतने में पेड़ से दो आम गिरे।
1: अरे ये क्या गिरा?
0: मैं देखती हूँ, तुम लोग यहीं बैठो।
3: वहां दो आम गिरे थे, बच्चे भी दो और आम भी दो, लेकिन अम्मा ने वो आम छिपा लिए।
2: अम्मा आप क्या छुपा रही हैं?
1: अम्मा ये आपके हाथ में क्या है?
0: मेरे ही मौसम का एक फल है।
1: दिखाओ ना।
0: दूंगी तुम्हें, दूंगी, पर पहले तुम्हें इसका नाम बताना पड़ेगा।
1: इसका नाम
0: सोचो। मेरे मौसम का सबसे स्वादिष्ट फल जो बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद है, खट्टा मीठा रसदार फल। सोचो।
1: स्वाद है,
2: पसंद है,
1: सबसे अच्छा भी है।
2: कौन सा फल है?
1: कौन सा फल?
0: नहीं समझी?
1: नहीं।
0: अच्छा तो फिर सुनो।

0: झट से तुम बोलो ये क्या है, बोलो ना।
1: आ,
2: आ, तुम तो बड़ी समझदार हो।
3: आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम, कुल्फी वाला बर्फ का गोला ले लो, चुस्की ले लो, आइसक्रीम।
2: बच्चों, मेरे मौसम में तुम लोग खूब आइसक्रीम खाते हो, बर्फ के गोले खाते हो, है ना, कुल्फी भी खाते हो ना। अरे तुम्हारा बस चले तो तुम दिन भर आइसक्रीम ही खाते रहो, है ना?
1: अरे कोई खाने को दे तब ना।
2: अरे लगता है बहुत तेज आंधी आने वाली है, तुम लोग जल्दी से घर चले जाओ। और हाँ, ये आम तो लेती जाओ।
1: लाओ अम्मा,
4: लाओ अम्मा,
2: लो।
1: गर्मी अम्मा, आप बहुत अच्छी हैं।
2: तुम्हें मीठे मीठे आम जो खिलाती हूँ।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम गर्मी, और श्रोताओं आइए अब चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। और हमारा अगला कार्यक्रम है कारगिल की शौर्य गाथा।
1: ये कार्यक्रम कारगिल युद्ध से ठीक पहले की परिस्थितियों की जानकारी देता है और वर्णन करता है कि कारगिल युद्ध के दौरान विपरीत और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के होते हुए भी किस प्रकार से भारतीय सेना ने अपार धैर्य और शौर्य का प्रदर्शन करते हुए विजय की पताका फहराई।
2: मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। सुप्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां कितनी जीवंतता से उन पराक्रमी युद्ध सैन्य महानायकों के प्रति असीम श्रद्धा की भावनाओं को जगाती हैं।
3: विजयश्री उन्हीं के लिए निर्धारित होती है जो कठिन और विपरीत परिस्थितियों में भी अदम्य साहस और दृढ़ निश्चय के साथ अविचलित और अडिग खड़े रहते हैं। आज का कार्यक्रम हम श्रद्धा सहित समर्पित करते हैं उन पराक्रमी योद्धाओं को जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी।
2: जी हाँ, आज हम बात करेंगे

0: कारगिल युद्ध की, जो नियंत्रण रेखा के पास जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह ऐसी पहली लड़ाई थी जिसे संचार माध्यमों के द्वारा निरंतर प्रसारित किया गया और परिणाम स्वरूप इस युद्ध का आंखों देखा हाल भारत की जनता के घर घर तक पहुंचाया गया।
1: What you heard right behind you was the sound of Bofors guns directly targeting the top of Tiger Hill, the prelude to the final assault.
2: We just had a shell land very close to us. I doubt if you were able to see anything.
3: देश के विभिन्न मीडिया चैनलों के माध्यम से पत्रकारों ने इस युद्ध का जीवंत रिपोर्टाज प्रस्तुत किया, जिसके कारण जनता द्वारा सेना को अपार समर्थन मिला और फलस्वरूप भारतीय सेना का मनोबल और अधिक बढ़ा, जिसने इतिहास रच दिया। एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय जिसे आने वाली पीढ़ियां गर्व के साथ याद करेंगी। कारगिल का युद्ध 3 मई से 26 जुलाई 1999 तक लड़ा गया।

0: इस युद्ध को ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है, जो मुख्य रूप से स्थल और वायु सेना द्वारा लड़ा गया। उल्लेखनीय है कि इस दौरान भारत की समुद्री सीमाओं पर भी भारतीय नौसेना ने शत्रुओं पर कड़ी निगरानी रखी।
1: दिन था 6 मई 1999 का। समुद्र तल से 16,000 फीट की ऊंचाई पर दुर्गम बर्फीले पर्वतों के बीच एक भारतीय चौकी पर सैनिक मुस्तैदी से पहरा दे रहे थे।
2: बहुत ठंडी आज तो है। वैसे भी ये एक ऐसी जगह है जहां लगता है कि हम दुनिया के किसी और ही कोने में हैं, है ना?
3: ठीक कहते हो तुम। अभी मई महीने में इतनी ठंड है तो पता नहीं सर्दियों में क्या हाल होता होगा।
2: वैसे तुम्हारी पोस्टिंग तो अभी हाल ही में हुई है ना? अरे मैंने तो यहाँ की 2 सर्दियां देख ली हैं।
3: जरा उधर देखो।
2: अब किधर?
3: वहां लगता है कोई इधर ही आ रहा है।
2: कोहरा काफी घना है, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हाँ, इतना कह सकता हूं मैं कि कोई सैनिक नहीं है। उसका पहनावा तो देखो।
3: पहनावे से तो कोई कबायली लगता है। लेकिन इधर क्यों आ रहा है? कोई जासूस तो नहीं? वार्निंग दो इसे।
2: आने दो।
4: ए! कौन हो तुम? रुको, जाओ वहीं रुक जाओ, रुको।
5: कौन हो तुम?
6: साहब मैं एक चरवाहा हूँ साहब, मुझे एक बहुत जरूरी सूचना देनी है। अपने बड़े साहब से मुझे मिलवाओ।
5: क्या सूचना?
6: साहब दुश्मनों के बारे में।
5: अच्छा, यहीं रुको। चलो, कमांडेंट साहब ने बुलाया तुम्हें।
6: नमस्कार सर, मेरा नाम ताशी नामग्याल है।
0: नमस्कार, कहो क्या कहना चाहते हो?
6: सर हम एक चरवाया है।
0: आगे बताओ।
6: सर ये 3 मई की बात है, कुछ दिनों पहले मेरा याक खो गया था। उसे खोजते हुए मैं पहाड़ों पर काफी ऊंचाई में चला गया था। एक ऊंची चट्टान पर खड़े होकर मैंने दूरबीन से नीचे देखा तो एक बड़ा अजीब सा नजारा मुझे दिखाई पड़ा।
0: क्या देखा तुमने?
6: शब मैंने देखा कि पठानी कपड़ों में बहुत से लोग एक जगह पर जमा है।
0: क्या?
6: उनमें बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिक भी हैं। वे बंकर खोद रहे थे और उनके पास बहुत सारे हथियार भी थे। हाँ,
0: कितने लोग रहे होंगे?
6: शब पूरी गिनती तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ इतना पक्का है कि वो बॉर्डर के उस पार से आए हैं और बहुत ही बड़ी संख्या में जमा हो रहे हैं।
0: ये तो बड़ी जरूरी बात बताई तुमने। हो सकता है कि हमें तुम्हारी फिर से जरूरत पड़े। तुम्हारा घर कहाँ है?
6: साहब मेरा

0: है घर कौन? ये कारगिल शहर से 60 किलोमीटर दूर बटालिक शहर के पास है।
1: तो साथियों, इस स्थानीय सजग चरवाहे की सूचना से सेना सतर्क हो गई। जब सेना ने इस बात की छानबीन की तो बात सच निकली। उन्हें पता चला कि सीमा पार से बहुत बड़ी घुसपैठ हुई है।
2: सही स्थिति का अंदाजा लगाने के लिए भारतीय सेना ने मेजर सौरभ कालिया के नेतृत्व में एक गश्ती दल भेजा, लेकिन वो दल कभी वापस ही नहीं आया। 10 जून को पाकिस्तानी सेना ने उनके बुरी तरह से क्षत विक्षत शव वापस भेजे।
1: अब इस बात में कोई संदेह नहीं था कि पाकिस्तान द्वारा बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुई थी। सेना द्वारा गहन जांच में पता चला कि मई 1999 की शुरुआत में ही पाकिस्तानी सेना नियंत्रण रेखा पार करके मुश्कोह, द्रास, काक्सर और बटालिक क्षेत्रों में लगभग 4 से 8 किलोमीटर अंदर तक घुस आई थी और पाकिस्तानी सेना के लगभग 2000 से अधिक पैदल सैनिकों और कमांडो ने यहां अपनी चौकियां बना ली थी।
2: यद्यपि पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा कहा गया कि ये घुसपैठिए कश्मीरी स्वतंत्रता सेनानी हैं, लेकिन छापेमारी में पकड़े गए लोगों और हल्की गोलाबारी में मारे गए सैनिकों के पास मिले सारे दस्तावेजों ने साबित कर दिया कि ये काम पाकिस्तान के अलावा किसी और का नहीं था।
1: दरअसल पाकिस्तान का उद्देश्य था सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इन क्षेत्रों में अपनी सेना भेजकर श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर कब्जा करके लद्दाख को कश्मीर से अलग करना और कारगिल व सियाचिन पर कब्जा करना।
2: ये भारत की सुरक्षा और संप्रभुता पर सीधा प्रहार था और इसलिए भारत को बड़े पैमाने पर कारगिल में एक सैनिक अभियान प्रारंभ करना पड़ा, जिसे कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस सैन्य अभियान का नाम था ऑपरेशन विजय। भारतीय सेना समझ चुकी थी कि विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों में शत्रुओं से युद्ध करना एक बेहद कठिन और दुष्कर कार्य होगा। भारत सरकार द्वारा नियंत्रण रेखा को पार न करने के निर्णय ने भारतीय सेना के कई सामरिक विकल्पों पर अंकुश लगा दिया।
1: भारतीय सीमा में घुसे हुए पाकिस्तानी पूरी तरह से सुरक्षित और अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे। उन्हें पहाड़ों की ऊंचाइयों पर होने का प्राकृतिक लाभ था, जबकि भारतीय सेना घाटी में खुले होने के कारण बेहद असुरक्षित थी। लेकिन युद्ध अवश्यम भावी था और भारतीय सेना ने युद्ध छेड़ दिया।
2: दिन में किए गए हमले खतरनाक हो सकते थे क्योंकि देख लिए जाने का जोखिम था, इसलिए भारतीय सेना द्वारा आक्रमण मुख्य रूप से रात को 0 डिग्री से भी कम तापमान में किए गए। सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी समुद्र तल से 18,000 फीट की खड़ी चढ़ाई को चढ़ना।
3: साथियों, हमारे सामने जो सबसे बड़ी कठिनाई है वो है इन पहाड़ों की खड़ी चढ़ाई पर चढ़ना।
4: लेकिन सर, एक और बहुत बड़ा खतरा है और वो है दुश्मनों द्वारा देख लिए जाने का।
3: ठीक कहते हो, अगर हम चढ़ने की कोशिश भी करें तो वो बड़ी आसानी से हमें अपने निशाने पर ले सकते हैं।
5: जी सर, इसलिए दिन की रोशनी में आक्रमण करना बिल्कुल संभव नहीं है। हमारे पास मात्र रात को ही आक्रमण करने का विकल्प बचता है।
3: सही बात। सुनो, सब इधर आओ।
4: जी,
6: यस सर।
3: ये मेज के चारों ओर।
4: जी सर।
6: उधर से। हाँ
3: जी। तुम्हें याद होगा कि अभी 3 दिन पहले हमारी वायुसेना के विमान इस क्षेत्र में आक्रमण करने आए थे।
4: जी सर।
3: वायुसेना ने हमले के दौरान इस क्षेत्र के चित्र भी खींचे हैं और उन्हें हमारे पास भेजा है।
4: जी सर।
3: इन चित्रों के आधार पर मैंने ये नक्शा बनाया है।
4: जी सर।
3: इस नक्शे के अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि दुश्मनों की चौकी जहां है उसकी विपरीत दिशा से हमें पर्वत पर चढ़ना होगा, यानी दाहिनी ओर से।
4: जी सर, आप ठीक कहते हैं सर। इस तरफ से सर, यहां से पहाड़ की दाहिनी ढाल भी ज्यादा कठिन है सर। दुश्मन सोच भी नहीं सकता कि हम इस तरफ से चढ़ भी सकते हैं।
3: बिल्कुल ठीक। तो साथियों,
7: यस सर।
3: अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मेरा अंदाजा है कि इस चढ़ाई में हमें कम से कम 5 घंटे तो लगेंगे, तो क्यों ना रात 11 बजे से

0: लिए इस अभियान को शुरू किया जाए।
1: जी जी सर।
0: चढ़ाई करने वाली हल्की रस्सियां तैयार कर ली जाएं। हथियारों में राइफल्स, हल्की मशीन गन और हथगोले होंगे।
1: सर, जी सर।
0: कोई शक?
1: नो सर। नो सर।
0: बी प्रिपेयर्ड फॉर द मिशन।
2: यस सर।
3: सर, अब हम चोटी के बिल्कुल पास आ गए।
4: धीमे बोलो, धीमे।
3: जी,
4: उन्हें पता ना चल जाए।
3: जी सर।
4: चोटी पर पहुंचते ही हम सभी रेंगते हुए उनके तंबुओं की ओर बढ़ेंगे।
3: जी।
4: और हथियारों के साथ अपनी अपनी पोजीशन ले लेंगे।
3: ठीक है सर।
4: और फिर तुम विपरीत दिशा में एक हथगोला फेंकना।
3: जी सर। जी सर।
4: बम के फटने की आवाज सुनकर अपने तंबुओं से कुछ सैनिक बाहर जरूर निकलेंगे और तुम्हें उन पर फौरन फायरिंग करनी होगी।
3: जी सर।
4: ठीक है, आगे बढ़ो। बहुत धीरे, आवाज नहीं निकलनी। जैसे धीरे,
3: ओके, धीरे।
4: तबे बस, अब हम चोटी पर आ गए हैं तो अब रेंगना शुरू करो।
3: रेंगेंगे। जी सर।
4: कोई भी उठ कर नहीं जाएगा, सब रेंगेंगे। आवाज नहीं, आवाज नहीं, आवाज नहीं। हर कोई अपनी पोजीशन ले ले।
3: एवरीबॉडी रेडी?
4: यस सर।
3: यस सर।
4: अब हथगोला फेंको।
0: गुड। वो अपने बंकरों से बाहर आ रहे हैं।
2: फायर!

0: इस मिशन में भारतीय सेना को भारी सफलता मिली। दुश्मन के अधिकांश लोग मारे गए और कारगिल की इस चोटी पर भारतीय सेना ने अपना परचम लहरा दिया। ऑपरेशन विजय में भारतीय वायुसेना की बहुत ही अहम भूमिका रही। इस युद्ध में सामरिक महत्व के मुख्य क्षेत्र थे मुश्कोह, द्रास, काकसर और बटालिक।
1: भारतीय सेना ने एक अपूर्व गरिमामय इतिहास रच दिया था।
0: 3 मई से 26 जुलाई 1999 के बीच लड़ी गई इस लड़ाई में 25 सैनिक अधिकारियों और 436 जवानों की शहादत हुई। इसके अलावा 54 सैनिक अधिकारी और 629 जवान घायल हुए।
1: इस युद्ध में 2 सैनिक अधिकारियों और 2 जवानों को परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। ये पराक्रमी योद्धा हैं कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, राइफलमैन संजय कुमार और ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव।
0: देश इन रणवीरों को उनके असीम शौर्य हेतु श्रद्धा से नमन करता है। कारगिल युद्ध की गौरवशाली विजय की स्मृति में 26 जुलाई को अब देश भर में विजय दिवस मनाया जाता है।
2: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। श्रोताओं, ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। रात्रि के 8 बजे है। अब आप सुनेंगे लोक गीतों पर आधारित फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम हेलो गोरबंद।

0: Evei gormin pogam shunya sheng boyeni boyeni dobreni chotani motani urdani berdani jimdani hadi gardani shabani abri ko kiri oru hogi.
1: Hey, loon kiri oru gunan guna.
2: Rom rom sha.
0: Hey, bhai yo.
1: Kai ko kaka.
0: Hey, bhai dekho girmi dob gayi hai ke musham ka khel hai.
1: Haan kaka.
0: Hey, garmi mein garmi padegi, hardi mein hardi padegi, barsaat mein barsaat hogi.
1: Barsaat kad hue la kaka.
0: Hey, Ram ji gari beta ne jora ko Ram ji mate ne jora ko jan sab uji de par ek baat tumhare kaka kehte hain.
1: Kai ko.
0: Ab dekh beta ke pani ki samasya.
1: Haan kaka, pani wale to tuntya mein thoda sok pani aave kaka, hari ko ne.
0: Are hari ko ni to beta jad hari ji की टेम थे ना की तो पानी का खर्चा करते हूँ
1: काका हूँ तो अणु तो कोई डोलू नहीं
0: आई तू तो कौन डोले तो बने के भाई है जी का कहीं ढूंढिया खुली छोड़ देर बच के भाई अब पानी को नहीं आवे अरे पानी कहीं जी की टेम था ने पानी की बचत करनी भी टेम थे डोलू भी ने पानी भी तो ये बचे
1: हाँ पानी तो भी तो ये काका आपने तो कहीं है टांका बनावड़ा है जन टांका माई ने जब पनाड़ा उतारूड़ी नहीं बार पीऊ नाल पानी तो की कमी को नहीं आवे
0: आई सही है बेटा ये कह थे ना की बूंद बूंद पानी की बचाओ
1: हाँ
0: तो जल ही
1: जीवन है
0: हाँ जल है तो
1: कल है
0: हाँ तो ई बात को ध्यान है गर्मिया में हो जन आप पड़े पड़े हरदिया में आप ध्यान कौन सा कभी
1: जा फोड़ा पड़े जन से तो हुए ना
0: हाँ तो फोड़ा पी गर्मिया में पड़ी पी बी टेम हरदिया में पानी आवे घणो ही आवे के कई कणी कोई के चौकिया धोवा कोई के गजिया धोवा कोई के मोटर धोवा कई मत भूल लियो
1: नहीं काका वो अबे तो जो कबे पेल के रूखड़ा लगे नहीं बे मुंडो उतारे थोड़ो पानी आता जे तो बे बरसात आले ताई मौसम ताई जीव तरे जे
0: आ सही बेटा तो काका का केउ ना हाथ जोड़ सब भाइयों को की भाई पानी की बच करो
1: हां
0: पानी भी तो ही ढोड़ो जी की जरूरत है
1: सही काका
0: हैं आ हैं है, मत करो अब चुप बोल ला
1: लो काका का मत करो
0: आईलियो
3: काका जी तुम्हें लगो
0: ए जीवदारो राम जी थोड़ी लंबी उम्र करे गंधन का भिंडार भरे आप रो जाऊं भिजो काके नीर गांव भिजो
3: राम सुनो बलायो
0: ओ हो राम सुनो बलाय में खोई करो
3: काका बैठा यहाँ बल्टी कल्ली बाजे
0: ए बल्टी बाजे तो हाव जे दी राखो माते मात बोझो राखो ठंडो पानी पीता रहो जाज राबड़ी गांधो चिंता
3: रहो राखा यहाँ काका कुल्ले चले है रुता
0: अरे वाह शिवा ए और बच्चों डाबिया खाई करे हो
3: तो काका काम करता ही है एक नौकरी करे है एक प्राइवेट काम करे है
0: अरे जो की बात जैसे चौका ली काट लाया और उम्र की टीक ले ली थे
3: उम्र तो 60 साल ले ली काका
0: अरे वाह वाह ए भाई हो
3: हाँ जी
0: ए काको सवाल करे उसका जवाब बिनोगे कहीं
3: करो देखा काका आज बतावा
0: ए लंबी पूंछ पीठ पर रेखा
3: हाँ।
0: दोनों हाथों उसे काका ने खाते देखा क्या होता है
3: काका वो तो आवे कौन
0: ए लूनी भाई हो
1: काको काका
0: ए भाई को हरा दिया हमने तुम भाई के साथ जाऊता हूँ कहीं
1: हाँ काका भाई ने तुम बार जिताए दो
0: तो भाई को बोलो
1: हेलो
3: हेलो भाई राम राम
1: राम राम सा राम राम सा की करो
3: ठीक है भाई जी बेटा
1: अब बेटा उसे पोता पोती की करे कहीं सेवा चाकरी
3: पोता पोती तो एक बड़ा है तीसरे में है एक छोटे है दो है सारे चाकरी खड़े करे
1: वासा वाजन काके ताने सवाल पूछो बीरो और तायो कोनी
3: वो आयो कौन लोन भाई थे पोता पोते का
1: अरे मारे तो काकी काचर आचर बार हुकावे बीज रजन बात सुख सुख खाए जे बात छचुंदरी वे नी गिलारी
3: ओ गिलारी पोता मारे बो है सच्चे भी तू मान
1: वासा वा आज कहीं होने ला दादा पोता
3: आज भजन होना है
0: राम राम जाई आप रो न्याऊं भिजो खाके नीर गाँव भिजो
4: नाम रोहित है इंदास गाँव चोटी
0: आओ हो रोहित भाई इंदास में गाई करो
5: बताई
0: ए कितनी पड़ी जो
5: सातवीं
0: ए हाथवीं पड़ी जो हो जो की बात है बेचारे जो का पड़ो जो का ली को माइटा कार परिवार का नाम ऊंचा करो बेटा ए किता भाई बहनों थे एक ही पापा कहीं करे थारा रे
5: पापा काम करे
0: एक कहीं काम करे बता काके ने
5: खेत का ट्रैक्टर का
0: अजो ए दार लाड मम्मी राके एक पापा
5: भाई
0: आज दोनों ही राके जो की बात है तेन प्रोग्राम के योग लागे रे
5: अच्छो
0: अजो लागे ए लूनी भाई यो
1: भाई को काका
0: ए भाई मीठा घना बोलता आओ बोलो हेलो
1: हेलो

0: राम।
1: रोहित भाई राम राम।
0: हाँ
1: पढ़ाई में कितो होशियार है तू?
0: चलो
1: रोजी ने स्कूल जावे कने छुट्टिया रख के
0: रोजे
1: बता मिनकी ने उंदरे ने अंग्रेजी में काई केवे? अरे वाह भाई रेट केट सही काका भाई तू होशियार है। आज कहीं उड़े लो
0: हनुमान जी का भजन
1: काका यो
2: बेटा
1: रोहित भाई के हनुमान जी को भजन सुनाओ।
2: अभी अगरबत्ती खाऊं जाऊं तुम्हारी बेटा
1: ओए लो।

0: काका राम राम।
1: ए राम राम शाही, राम राम शाही, आबरो न्याऊ भिजो काकी नीर गांव भिजो।
0: नाम सुमन है काका, गांव श्रीवाला जी है।
1: ओहो हुमन भाई, श्रीवाला जी में वही करो।
0: कहीं करा काका, अब घरों ही काम करा।
1: आज अब घरों काम करो, जिन पहला कहीं करता हो?
0: पहला दस पगिया स्कूल छोड़ दी, हम ससुराल जमार घरों काम करा।
1: आज ओ हारे जब हारू कीजिएगा भाई, धारो
0: हारो दावा सिलवा है।
1: आज पावना कहीं करे भाई?
0: आरती सिर काम करे काका।
1: अरे वाह बच्चा, ये पावना ने की जाका नहीं करी जो?
0: हाँ कौन करे काका?
1: ए भाई,
0: हाँ
1: ए भाने मान की कीता है?
0: दो है काका, एक भाने और एक भानकी।
1: तो नन पटावे तू?
0: पटावा एक बच्ची जावे, बच्चा छोटो है बात।
1: आज कोई बात नहीं बेटा, छोकी बात नहीं मारी बेटा, छोका पटाओ, छोका लीको। ए लूड़ी भाई हो
2: कहीं को काका?
1: ए हुमन भाई कहीं के उनकी बोलो। हेलो
2: हेलो,
0: राम राम लूड़ी भाई।
2: राम राम सर, राम राम सर। सुमन भाई जी धीनो राखो कहीं हो?
0: हाँ लूड़ी भाई गया राखा।
2: हाँ सही है, धीनो वजन छोटा टाबर हो रहा पड़े हो?
0: हाँ
2: यार गर्मिया में जीवन हो रो भावे ने जिन रोजिन हाग रोटी भावे क्यों हो?
0: हाँ थे तकड़ा हो।
2: ओ मैं तो रेडी रेटा, हमारी काकी धीनो गणो ही रखे, अबार राबड़ी गणी बड़ा अंडी भर परी दही राबड़ी दिनों की राउंड कर ले। वहाँ
0: गर्मिया मोई जीवन सही है लूड़ी भाई हो?
2: हाँ सही है भाई जी।
0: हाँ
2: ये बताओ की एडी किसी चीज है जकी ने लोग काटे पीसे बांटे पर खावे
0: ज्ञान कौन लून भाई?
2: काका था बताओ कहीं हो?
1: हम भाई की तरफ जाऊं के भाई को जिताऊं दे। ए हुमने?
0: हाँ काका।
1: आ भाई पूछे के बांट दे पीस दे, लेकिन खाऊं दे नहीं है तो वाह उनती ताश बती हुए।
0: हाँ।
1: बिन बांटे पीस है बजे भावना खेले को नहीं?
0: भावना काका काम करे बेला वजन खेले है।
1: हाँ बताश बती हुई है। लूनी भाई पूछो भाई को क्या सुनेंगे पोगा में?
2: सुमन भाई जी आज कहीं उड़ोला?
0: आज सुनीता स्वामी रे भजन और सुन जाऊं ससंग में।

0: राम सर काकाजी।
1: ए आपरो नाम भिजो कोके नीर गांव भिजो।
0: मोनिका नाम है, लूंडा से बोल रही हूँ काकाजी।
1: ओहो मोनिका भाई लूंडा में कहीं करो?
0: पढ़ाई करती हूँ काकाजी, बीए की।
1: आज बीए की पढ़ाई करती हूँ। आ कितनी क्लास हो गए काकी ने भिजा मेरी बेटा?
0: 13वीं काकाजी, मतलब 12वीं करने के बाद।
1: आज वाह मारी बेटा, ये जोगा पढ़ो जोगा लिखो माइटा कार परिवार का नाम ऊंचा करो बेटा।
0: हाँ काकाजी।
1: ए भाई।
0: हाँ।
1: ए जो पढ़ लिख कर कहीं बिनी बेटा काकी ने?
0: काकाजी आरएस की तैयारी करना चाहती हूँ।
1: ओ कहीं हुए बंदा हाउल बंदा आपसे हुए कि मोटा?
0: हाँ।
1: अरे वाह मेरी बेटा। ए लूनी भाई
2: कहीं को काका?
1: ए भाई कहती है हम तो कहीं कहती ये करती है, फिर वो कहीं कहती है वो अफसर की तेरी करती है, मोटी अफसर बनेगी। बोल हेलो।
2: हेलो
0: हेलो लूनी भाई कहीं करो?
2: राम राम सा भाई जी।
0: राम राम सा, राम राम सा।
2: अरे काको बड़े रहे जो को आ रहे मारो तो अताई में जीव गणो है जना पछ काके रीचे पूरी करनी पड़े अताई करने लावा।
0: हाँ
2: भाई जी एक सवाल बताओ तो।
0: हाँ पूछो।
2: हमारे देश का राष्ट्रगान क्या है?
0: राष्ट्रगान जन गण मन।
2: हाँ इसको किसने लिखा?
0: रविंद्रनाथ टैगोर जी ने।
2: हाँ सही है सा। ऐ थे एकला ही पढ़ो कि थर गांव में अगली बायां पढ़े?
0: सब बच्चियां पढ़ती हैं हमारे गांव में। हमारे
2: बढ़िया सा। आज कहीं होने ला?
0: सुनीता स्वामी जी रो भजन सुना दो, मैं तो ओड चुनर चाली सत।
2: आयो
1: हाँ
2: मोनिका भाई के जो कोई भजन चलाओ।
1: आ, मैं अगरबत्ती खाऊं जाऊं तुम्हारे बेटा।

0: हेलो काका जी नमस्कार।
1: ए नमस्कार शाही राम राम शाही आप रोन्याओं भिजो कोकी नीर गाँव भिजो
0: ना मानग्राम है गाँव गंडला श्रेता का।
1: ओ मानग जी गंडला शिर में कोई करो
0: कहीं करा अबार तो बच्चा अनपढ़ वहाँ बेटा।
1: अरे वाशो की बात है और गांव में भिजवार में सब क्या नहीं हो
0: सब राजी खुशी है काका जी। अगर तो तावड़िया पड़े पलटा
1: ए तावड़िया पड़े तो हाउ जे दीरा को दे ये जा जे राबड़ी ये कांदो है जिमदार हो
0: हाउ से ती घड़ी रात जानवर सुबह कबूरा सुन नेगदार पली पानी वरदान।
1: अरे वाह वाह घर में हाको घनो कई बात है ढाबी हाको घनो करे नहीं हो
0: ए छोटा छोटा भाई रा बच्चा है भतीजा भतीजा
1: आजाओ हो जानी प्रोग्राम के योग लाग गयो
0: प्रोग्राम तो घणो ताजो लागे काका जी पूछो मत भी प्रोग्राम तो एक उबड़ कर एक तो बढ़िया है आपको प्रोग्राम तो पूरी टीम को प्यार भरा नमस्कार माना नाम की तरफ से।
1: ए जरूर जरूर यार ए लूड़ी भाई हो
2: करको काका
1: ए भाई कहूं दे हम तो रोज ना होते हैं तुम बोलो हेलो
2: हेलो
0: हेलो लूड़ी भाई जी नमस्कार।
2: नमस्कार साहब आगे लागू आप रे भी
0: खुश रहो मौज करो
2: और टाबर टोली काई करे
0: टाबर टोली स्कूल जा भाई का बच्चा बच्ची
2: सब लाड रखो टाबर को
0: घना ही कल तो एक बार बाहर जी और करी का नाम बात तो आप प्रोग्राम तो घड़े ही सुना है।
2: अरे बढ़िया सब बढ़िया अबार अंबार लाओ कौन लाओ ते गुल प्यार
0: गंदी गंदी आमड़ी भाई
2: एक आटी बताओ
0: बताओ
2: खाती पीती हूँ नहीं चलती हूँ दिन रहन एक पल जो ना चलू तो सब होते बेचैन कई होता है
0: वो तो लोड़ी भाई पसा दिया सही बताओ
2: बताई दो।
1: ए ये तो हवा नहीं होती है कहीं
2: काका हवा होती है
1: आ, हम जीत गया
0: हवा नहीं आज इतने भी तो गाना सुना तो दोस्त का नाम लेना चाहो
2: ले लो
0: दीपा राम जी तेनाराम जी दो मेरी बहना मैंने सुनी था और एक मेरी भांजी परिंका और एक मेरा भतीजा दुर्गा राम।

0: हेलो काका जी, राम राम।
1: ए राम राम शाही, राम राम शाही, आप रो जाऊं भिजो काके नीर गाँव भिजो।
0: लाल गुड्डू मूली बोलो।
1: ओ हो मूली बाई यो। ए काई मोला मोला घना बोलो काई यो।
0: मोला क्या बोलना, घना जोर बोला।
1: आज जोर बोलो को जी, मोला मोला बोले मैं क्यों काई लू लागी गई बाई ने।
0: मैं नहीं बैठा, लू कौन लगे।
1: अजो ए मूली बाई यो।
0: हाँ काका।
1: ए की बजावड़ी लिखावड़ी घरी बाई।
0: हाँ बारू तक करी।
1: ए बजे बाई
0: घरी। हाँ
1: आये घरी। ओ ए जो परिवेश बदले आगे घर बेच बेचिए
0: करा काका परिवेश।
1: सही है बेटा। और बेटा गांव में परिवार में सब क्या आने।
0: सब ठीक है, बढ़िया है।
1: ए तेने प्रोग्राम के शौक लगे मारी बेटा।
0: प्रोग्राम बहुत ही शौक लगे।
1: ए जो काको एक आडी करे उसका जुबा भिड़ेगी कहीं।
0: हाँ काका आज तेने बताओ।
1: ए सिर पर पत्थर पेट में अंगुली, जल्दी बताओ वरना समझो गड़बड़ी क्या होता है। ए बता भाई।
0: कौन आओ कौन काका।
1: ए लूड़ी बाई यो।
2: काको काका।
1: ए भाई हार ये हम जीत गए, तुमको आउता है कहीं।
2: हाँ मनावे काका, गुल भी दराव जन तो बता दो।
1: आज गुल भी दिराव जन काके ने पहला बांधे काको आज मन नहीं हुआ। ए जने गुल भी दिराऊ।
2: हाँ जन काका, भाई बात करो।
1: बोल भाई को। हेलो
2: हेलो
0: हेलो लोनी भाई, राम राम का।
2: राम राम दा, राम राम सा भाई जी हो। काई काम धंधा करो।
0: गरीब बैठा आगे कौन।
2: माता जी का करे तारे।
0: माता जी गरीब है।
2: माँ को और के उड़ो करो तो।
0: हाँ की उड़ करा था।
2: सब्जी रोटी बनाए जानो।
0: हाँ सब बना जानो।
2: बाजरी की गवा की गली बनाई लो।
0: हो सकली बना ले।
2: एडो वाली राबड़ी बना लो।
0: दो राबड़ी कर रहा है।
2: जिन तो कौन बना ना मने काके के वेतन ही का हूं देखा। काके थाने सवाल पूछन भी रोर तायो कौन हो।
0: कौन नहीं हो।
2: बातो काका अंगूठी हुए कहीं।
1: मूली भाई मेरी जी की अंगूठी हुए मुझे।
2: हाँ हाँ काका।
0: हाँ
2: भाई जी प्रोग्राम केड़ो लगे।
0: प्रोग्राम गुणी चको लगे।
2: अगला ही हुणो कहीं।
0: अगला ही हुणो।
2: आज कहीं हुणो ला।
0: इतल पितल सुना दे
2: काका। आयो
1: आ बेटा।
2: मूली भाई के इतल पितल आलो जान दो।
1: अय्या मारी बेटी।

0: काका धोक दो।
1: ए जीवदारो राम जी धांगी लांबी उम्र करे आबरो न्याव भिजो कोके नीर गाऊं भिजो।
0: मैं वीरू बोलो जटेर माऊ।
1: ओ हो वीरू जटेरा में खाई करे तू। ए गीती मारे भेजा
0: पार्टी में
1: आज बढ़ता ओ जोगा बड़ो जोगा अली को माइटाकार भिरीवार का नाम ऊंचा करो बेचारे। ए दिन भोगाम के योग लागे
0: मने तो थांको प्रोग्राम होगा उन चोको लागे।
1: अरे वाह शिवा कितना भाई बहन हो रे।
0: मैं मारे एक और भाई है।
1: आज दोनों बड़े थे। ए पापा जी मम्मी जी क्या करते तुम्हारे बताओ काकी को।
0: मम्मी घर रो काम करे और पापा बाहर कमावरी।
1: ए जो काको एक सवाल करे उसका जवाब नहीं का
0: दे दूंगा।
1: ए 10 दूनी कितना होता है। हाँ
0: 20।
1: ए 20 मुई 11 रकम कर दे लारे की तेरे दे दा बता।
0: 20 मुई 11 रकम कर लो।
1: आई है वेरी गुड थैंक यू लुणके
2: काको काका।
1: ए भाई तू बीरू होशियार है तू बोल। हेलो
2: हेलो
0: हाँ लुणी भाई राम राम सा
2: राम राम सा राम राम सा भाई रे।
0: थे कहीं करो।
2: अरे मैं तो कहीं करूँ काके रे हगे आई हूँ पानी की बोतल ले रही छातो ले रही हगे गर्मी घनी पड़े थाका नहीं कितनी गर्मी पड़े।
0: मालकन तो घनी गर्मी पड़े काकी कहीं करे।
2: काकी तो अबे बैठी है ठंडे ठंडे काम तो कर ले गाया भैंसियाड़ो और शाम का 5-6 बजे बाहर निकले। तो तारे मम्मी पापा ने हारो दिलो है कई काम में।
0: हाँ रोजी नहीं मैं पापा काम कर दे
2: कई कई काम करे बता दे कहना है।
0: मालकन बार साइड में पौधा लगे पानी डाल दूर
2: चिड़क लेनी पानी
0: पड़ी डाल गए बार गाल
2: मेल दे बहरे कोई कुंडे में ताल के में पानी गाल मेल चिड़क ले तीरा मरे।
0: रख दे
2: आज कहीं सुने लो।
0: आज मैं सुना देशभक्त को गानो
2: कका आयो
1: आ बेटा
2: वीरू भाई ने देशभक्ति वालो सुनो।
1: ओई चलायो मारी बेटा।

0: राम राम काका जी।
1: हे राम राम श्याई, राम राम श्याई, आप रो न्याओ भिजाओ काके नीर गाँव भिजेओ।
0: गाँव गालू है ना शारदा है।
1: ओ हो हरदा भाई गालू में खाई गिरो।
0: खाई करा काका जी ने खाई। हाँ बार तो
1: खाई गिरमी गणी पड़े भाई।
0: गिरमी गणी पड़े
1: ए तू हाल जी तीरा की भाई हो।
0: हाँ काकी खाई करे।
1: ए काकी धर काके ने हाका करे और खाई गिरे। तू आवे जी एक दिन ने।
0: एक दिन ना काका जी।
1: हाँ भाई। ए पावना खाई करे भाई।
0: गरी है।
1: ए गरी खाई करे तो होता है जागता है।
0: जागता है काम करे।
1: ए बाने बाण की खाई करे भाई।
0: बाने बाण की काम बाण के धार जोड़ी है।
1: अच्छा
0: काम करे।
1: अरे वाह लू भाई। ओ
2: कैको काका।
1: ए हारदा भाई कहीं के उनती बोलो। हेलो
2: हेलो।
0: राम राम लून भाई जी।
2: राम राम सा शारदा भाई जी। ओ
0: कहीं करो
2: कहीं करा। देख लो तावड़ मायने काकर तय करने वास्ते आगे रहना पड़े।
0: हाँ तावड़ खड़ो पड़े।
2: तावड़ पड़े जना बार थे कहीं जीमनो चाहिए बताओ। कहीं कहीं सब्जी बनावा और कहीं कहीं जीमा गर्मियां के मायने।
0: अब कहीं सब्जी बनावा कांदा गणा कांदा सा जीमना राबड़ी सास दही
2: नीरो करे वे।
0: हाँ यही नीरो करे।
2: और प्रोग्राम केड़ो लगे थाने।
0: ताजो लगे बहुत बढ़िया लगे।
2: तो ये सब बयान की पढ़ाई कहीं थे।
0: हाँ पढ़ाई हो रही है भाई।
2: आज कहीं होना ला
0: माता जी भजन।
2: काका आयो
1: आप जाओ
2: शारदा भाई के माता जी को भजन चलाओ।
1: मैं अगरबत्ती खाऊं जाऊं तुम्हारे बेटा।
2: हेलो।

0: हमारा भैया वो तो भयंगी बोयंगी शिवगी बशिन को बोगाम।
1: हेलो गोरबन।
0: ए बोगा में कोई भाई घी दे भजन होना चाहूं ता है तो तुम कहीं के उताओ।
1: काका दी इतवार के दिन नगर आकाशवाणी फोन करना है 12 बजे ले प्रार 1 बजे बीच है।
0: ए डावड़ी निमित तो बजाए।
1: नंबर है मिंडी एको पांचो आटो दुओ दुओ चोको मिंडी एको चोको आटो।
0: ए वेरी गुड थैंक यू। ए भाई।
1: हाँ काका।
0: ए की भैया का फोन आया सुमे की कुमी में हम ले नहीं सकिया तो हाथ जोड़ के माँ भी चाहते हैं कि अगले दीदवार का खड़खड़ी जो पन उनका पाना तो बांचो बेटा।
1: हाँ काका उड़ो
0: और
1: इकबाल भाई जिंदल है नागौर हुए विकास भाई काकड़ा हुए गोपाल राम जी बोसरी हुए मोर्सी भाटी गुगरी वाली हूँ काका।
0: एने के उन्हों अगले दीदवार का फोन गिड़गिड़ी जो।
2: इस कार्यक्रम में काका की भूमिका में थे सुभाष कंडारे और लूणी की भूमिका में थी भीकी देवी चौधरी।
0: ओ भाइयो
1: काको काका
0: अब बताओ आज के प्रोग्राम में तकनीकी हयो कच का है।
1: एहे जितेंद्र कुमार।
0: आज के प्रोग्राम के पशुदूत गीता
1: अशोक कुमार गोयल।
0: अब हंदेश लगो मारा बेटा।
1: स्वच्छ रहो स्वस्थ रहो। हेलो गोरमन
0: होते हो तो बाप रे काके ने हो गए
1: लूण की ने दिराव सी गौर करते हैं
0: रोम रोम शाय।

0: हेलो गोरवंद, अभी आप सुन रहे थे लोक गीतों पर आधारित ये फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम। श्रोताओं, आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। रात्रि के 8:45 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार संध्या। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध हटाए। और गुजरात के गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारत्तोलन चैंपियनशिप में ज्ञानेश्वरी यादव ने 2 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
2: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें

0: जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
0: होल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये नागपुर हवाई अड्डे के लिए क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को देश के करोड़ों किसानों को अपने उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि इस निर्णय से देश के किसानों के जीवन में समृद्धि आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं की संवर्धन योजना से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार सृजित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। CBI ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। CBI इस मामले में शुरुआती जांच करने वाले राजस्थान के विशेष कार्यबल के भी समन्वय में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन की खपत कम करने की अपील का बड़ा प्रभाव पड़ा है और पेट्रोल तथा डीजल का उपयोग कम हुआ है। प्रधानमंत्री ने अपने काफिले का आकार काफी कम करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह सहित भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी ऐसा ही कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वाहनों के बेड़े में तत्काल कमी करने का निर्देश दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों की हवाई यात्राओं में 50% की कटौती का आदेश दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्रियों, विधायकों के सरकारी वाहनों की संख्या सीमित करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे

0: और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों, ऊर्जा सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श होगा।
1: During the visit,
2: यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
1: People to people connect.
0: श्री जॉर्ज ने बताया कि चार यूरोपीय देशों की यात्रा के दौरान श्री मोदी तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
2: चार यूरोपीय देशों की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते को इसी वर्ष अंतिम रूप दिया गया है। इस दौरान तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। भारत इन देशों को मेक इन इंडिया अभियान के अहम साझेदार के रूप में देखता है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य व्यापार और निवेश, हरित प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्टार्टअप और आपसी जनसंपर्क को मजबूत करने का रहेगा।
1: पीपल टू पीपल कनेक्ट।
0: संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अमेरिका के स्मिथसोनियन राष्ट्रीय एशियाई कला संग्रहालय से तीन भारतीय प्राचीन वस्तुओं की वापसी का उद्देश्य भारत की चोरी हुई सांस्कृतिक विरासत को पुनः स्थापित और संरक्षित करना है। नई दिल्ली में श्री शेखावत ने कहा कि देश की विरासत जिसे अनैतिक तरीकों से देश से बाहर ले जाया गया था, अब वापस लाई जा रही है।
3: ऐतिहासिक एंटीक्विटीज को जो भारत लाने का क्रम पिछले वर्षों से चल रहा है, उस दिशा में हम आज ऑस्ट्रेलिया से 11 और अमेरिका से 3 और मूर्तियों को भारत में लाने में सफल हुए हैं। इसके अतिरिक्त भी 657 एंटीक्विटीज को आइडेंटिफाई करके हमने अमेरिका के साथ चर्चा की। यूएस एनफोर्समेंट एजेंसीज ने उनको भारत के दूतावास को अमेरिका में सुपुर्द कर दिया है। उनको लाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। 657 एंटीक्विटीज उसके बाद में भारत आएंगे।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल होने वाले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन से पहले आज नई दिल्ली में रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और मालदीव के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि सभी देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई और आपसी हित के बहुपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोफ ने कहा कि रूस ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मार्गों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। ये फैसला वायु क्षेत्र नियंत्रण और विमान ईंधन के ऊंचे मूल्य को देखते हुए किया गया है। ये कटौती इस वर्ष जून से अगस्त तक के लिए होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को सौंपने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार ने इन मामलों में भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। असम सरकार 26 मई को समान नागरिक संहिता विधेयक विधानसभा में पेश करेगी। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा ने पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद ये घोषणा की। डॉ. सरमा ने बताया कि प्रस्तावित विधेयक विवाह की कानूनी उम्र, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों सहित कई मुद्दों पर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि धार्मिक प्रचलन इस विधेयक के दायरे से बाहर रहेंगे।
4: इसे असम की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया गया है। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। साथ ही राज्य के लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली सभी रस्मों, परंपराओं और रीति रिवाजों को भी इससे बाहर रखा गया है।
5: आउटसाइड द स्कोप ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड।
0: पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने पांचवी बार पद ग्रहण करने के बाद स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, शिक्षा, खेल और औद्योगिक विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसमें गरीबी रेखा से ऊपर के राशन कार्ड धारकों को 3 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना, इंदिरा गांधी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय और मॉडल विद्यालय स्थापित करना शामिल है।

0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त नरसिंहपुर जिले के ग्राम मुंगवानी से जारी की। उन्होंने 1,25,00,000 से अधिक लाडली बहनों के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा नगर निगम चुनावों में भाजपा की जीत पर लोगों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत ने फिर स्पष्ट कर दिया है कि जनता ने भाजपा एनडीए सरकार की विकास और सुशासन नीतियों पर अटूट विश्वास व्यक्त किया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 50 अंक बढ़कर 74,609 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 33 अंक की बढ़त के साथ 23,413 पर स्थिर हुआ। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 7 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी 95 रुपए और 70 पैसे पर बंद हुआ। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक ब्रेंट क्रूड $107.62 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था।
0: गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलो भार वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीता है। उन्होंने स्नैच में रजत पदक और कुल 194 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। उधर थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु, मालविका बंसोड़, देविका सिहाग, लक्ष्य सेन और किदांबी श्रीकांत सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए हैं। महाराष्ट्र में आज नाशिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेले के लोगों का अनावरण किया गया। इसमें त्रिशूल दर्शाया गया है और गोदावरी नदी को शिवलिंग के रूप में चित्रित किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये लोगो भारत की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और राष्ट्रीय एकता का सशक्त संदेश देता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध हटाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, ये है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। रात्रि के 9 बजे हैं, प्लीज सुनिए सुगम संगीत। श्रोताओं, सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे स्वाति नाटेकर की गाई चंद गजलें। दिल ने जैसे ठोकर खाई है, दर्द ने बढ़कर थाम लिया, आज किसी ने बातों बातों में जब उनका नाम लिया।

रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं, अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफ़र के हम हैं। लीजिए सुनिए स्वाति नाथ टेगर के स्वर में ये अगली प्रस्तुति कार्यक्रम सुगम संगीत में।

FM 103.7 मेगाहर्ट्स पर श्रोताओं, आप सुन रहे हैं स्वाति नाटेकर के स्वर में चंद गजलें, कार्यक्रम सुगम संगीत में। दिल धड़कने लगा प्यार की राह में, दिल धड़कने लगा प्यार की राह में, प्यार की राह में कुछ दर्द आह सा निकल रहा है। रात कितनी हंसी है, ज़िंदगी मेहरबान है, बात कुछ ऐसी है, ऐसी दास्तां है।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। श्रोताओं, आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। लीजिए सुनिए देश की सुरीली धड़कन, विविध भारती मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रम

फिल्म चांदनी से आप ये गीत अभी सुन रहे थे। ये गीत सुनिए फिल्म सिलसिला से, लता मंगेशकर, किशोर कुमार और सखियों की आवाजें।

लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे कोरा कागज से, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी। और इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम आपके लिए यहीं समाप्त होता है।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें

श्रोताओं नमस्कार, आज के फनकार कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज बात एक ऐसी आवाज की जो अंधेरे में एक रोशनी जगाती है, जो हमें सहलाती दुलारती ही नहीं बल्कि हमारे दिल की धड़कने भी बढ़ाती है। वो आवाज जो हमें जोश भरती है, हमें थिरकने और झूमने पर मजबूर करती है। आज बात इस स्वैग से भरी आवाज के मालिक बेनी दयाल की।

0: आदत से मजबूर।
1: बेनी दयाल, जिनकी आवाज एक ओर सादगी से भरी महसूस होती है तो वहीं दूसरी ओर ऊर्जा का एक जखीरा खोलती है। उनके गीतों की फहरिस्त उनके हुनर का बखान तो करती है, लेकिन उनका हुनर इससे कहीं ज्यादा है। वैसे बात करें उनके शुरुआती दिनों की, तो अगर उन्होंने खुद के हुनर को न पहचाना होता तो शायद ये आवाज हम तक कभी ना पहुंच पाती। ये बात हम कह रहे हैं क्योंकि बेनी दयाल खुद को गायक मानते ही नहीं थे।

वैसे ये बात बेनी के लिए नहीं कही जा सकती, क्योंकि वो बचपन से ही कला से जुड़े रहे और उन्होंने तकरीबन 14 सालों तक भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम जैसे नृत्य शैलियों की तालीम ली। हालांकि वो इसके साथ ही कर्नाटक संगीत भी सीख रहे थे, लेकिन उनके मन में कभी भी एक गायक बनने का विचार नहीं आया। वो अपने स्कूल के दिनों से ही अलग अलग डांस कॉम्पिटिशन में भाग लिया करते और जीतते। उनका ध्यान पूरी तरह से डांस की ओर ही था।

something about the way you move that thing. Something very special. Something about the way you're looking at me. Something very special. Yeah, there's something about tonight. बचपन से किशोर होते तक बेनी दयाल एक डांसर के रूप में पहचाने जाते रहे, लेकिन जब एक रोज किसी ने उन्हें गाते सुना तो उनकी तारीफ में कहा कि वो डांस से भी ज्यादा अच्छी तरह से गाते हैं। ये बात उन्हें पहले तो आश्चर्य लगी, लेकिन उन्होंने डांस के साथ साथ गानों के कार्यक्रमों में भी नाम देना शुरू किया और जीतने लगे। तब उन्हें लगा कि शायद वो एक गायक बनना चाहते हैं, पर इस शायद वाले विचार को पुख्ता जमीन मिली कुछ दिनों बाद, जब उन्होंने एक खास संगीत को सुना।

15 मई 1984 को आबू धाबी में जन्मे बेनी दयाल का बचपन और स्कूली शिक्षा आबू धाबी में ही हुई। जब वो हाई स्कूल में थे तो एक रोज स्कूल जाते समय बस में दिल से फिल्म का शीर्षक गीत चला और बेनी को ये संगीत अब तक सुने सारे संगीत से अलग लगा। स्कूल खत्म होने के बाद घर लौटते हुए बेनी ने बस ड्राइवर से फिर वही गाना चलाने के लिए कहा और उन्हें तब लगा कि संगीत इस तरह का ही होना चाहिए जिसे बार बार सुनकर भी और सुनने का मन करे। इस दिन ने उनका जीवन बदल दिया और बेनी ने तय किया कि वो अपने जीवन में संगीत के साथ ही रहना चाहते हैं।

पूरा होने के बाद जब बेनी को आगे की पढ़ाई के लिए पुणे के प्रसिद्ध इंस्टीट्यूट में भेजने की चर्चा चल रही थी, तब उन्होंने पिता के सामने साहस करके कह दिया कि वो पुणे नहीं चेन्नई जाना चाहते हैं और फिल्म इंडस्ट्री में बतौर गायक अपना नाम बनाना चाहते हैं। इस बात को लेकर 2 महीनों तक पिता पुत्र के बीच मौन पसरा रहा। आखिर बेनी की लगन देखकर ये तय हुआ कि बेनी अपनी पढ़ाई पहले पूरी करेंगे, उसके बाद ही फिल्मी दुनिया की ओर बढ़ेंगे। इस बात ने बेनी के मन को उदास तो कर दिया, लेकिन कॉलेज आते ही उनके लिए मानो नई राह खुल गई।

अबू धाबी से भारत आकर बिनी दयाल ने कॉलेज में अपना एक बैंड बना लिया। हर तरह के संगीत को अपनाने वाले बिनी दयाल ने धार्मिक, पॉप, फिल्मी, नए पुराने हर तरह के गीतों में अपना रंग भरा। आखिर वो दिन भी आया जब करियर में आगे बढ़ने की राह चुननी थी। बिनी ने संगीत का ही साथ चुना, लेकिन ये राह आसान नहीं थी। उन्हें संघर्षों के एक बुरे दौर से गुजरना पड़ा।

आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जिन बेनी दयाल की आवाज के आज लाखों मुरीद हैं, एक वक्त ऐसा भी था जब कोई भी उनकी आवाज को एक मौका भी नहीं दे रहा था। बेनी जगह जगह जाते और कम से कम कोरस में ही गाना गाने देने की गुजारिश करते, लेकिन कुछ हासिल न होता। इस दौर में एक म्यूजिक डायरेक्टर ने तो उन्हें ये तक कह दिया कि उनकी आवाज गायक बनने लायक नहीं है और वो कभी भी एक गायक नहीं बन सकते। संघर्ष के इन दिनों में जीवन में हर ओर से मुसीबतें बरस रही थीं।

समय था जब घर और बाहर कहीं भी कोई साथ नजर नहीं आता था, क्योंकि उनके पिता के खराब स्वास्थ्य के कारण परिवार भारत लौट आया था। उनके भाई भी अपने काम को लेकर उलझन में थे। बेनी अपना दुख किसी के साथ बांट नहीं सकते थे और दूसरी ओर उनकी आर्थिक स्थिति भी बिगड़ती जा रही थी। आखिर मन मार कर एक सीनियर की सलाह पर बेनी ने BPO में HR की नौकरी कर ली।

श्रीधर बेनी नौकरी में पहुंचे और पीछे पीछे संगीत द्वार खटखटाता उन्हें वापस ले जाने पहुंच गया। जी हाँ, बिल्कुल किसी फिल्म की कहानी के रोमांचक मोड़ की तरह काम के पहले ही दिन बेनी को एक कॉल आया। वो कॉल उनकी जिंदगी बदलने का मादा रखता था। ये बात बेनी को अच्छी तरह से पता थी और हुआ भी यही। बेनी को आया था ये कॉल संगीतकार ए आर रहमान का।

दरअसल बेनी दयाल ने हर जगह कोशिश की थी, लेकिन एआर रहमान के पास नहीं गए थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो एआर रहमान के संगीत के लायक बन ही नहीं पाए हैं। रहमान ने बेनी का गाया धार्मिक गीत कहीं सुना था और उन्हें बेनी की आवाज बहुत पसंद आई। आखिर बेनी दयाल को उनका पहला गाना मिल ही गया, वो भी उस व्यक्ति के साथ जिनके संगीत के फैन बेनी बचपन से रहे हैं। 2008 में ये एक तमिल फिल्म थी सक्कर कट्टी और बेनी दयाल का गाया गीत था चिन्नम्मा चिलकम्मा का तमिल वर्जन। ए आर रहमान पहले से ही बेनी दयाल की आवाज के कायल थे और बेनी ने भी अपने काम से ये साबित किया कि उनका चुनाव गलत नहीं था।

रहमान के साथ से बेनी अपना सपना जीने लगे। जब भी किसी नए गाने की रिकॉर्डिंग होती, बेनी ऑफिस के बाद रिकॉर्डिंग के लिए आते। आखिर एक रोज उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और संगीत में ही रम गए। दक्षिण भारतीय फिल्मों में बेनी A.R. रहमान के लिए लगातार गा रहे थे। रहमान ने ही बेनी को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की ओर लाया और आया वो गीत जो सभी के मन में बस गया।

गजनी के इस गीत ने बेनी दयाल की आवाज के चाहने वालों में इजाफा किया। अब तक साउथ इंडस्ट्री में अपनी आवाज का जादू बिखेर रहे बेनी दयाल अब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक चहेती आवाज बनकर सामने आए। बेनी को काम मिलने लगे, यहाँ तक कि बेनी दयाल को उस म्यूजिक डायरेक्टर ने भी अपनी फिल्म में गाने के लिए बुलाया जिन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि बेनी कभी गायक नहीं बन सकते। वो तो अपनी बात भूल भी चुके थे और बेनी ऐसी बातें याद दिलाने में विश्वास नहीं रखते।

0: बेनी दयाल ने हिंदी के अलावा कई भाषाओं के गीतों को अपनी आवाज दी है। उन्हें तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बांग्ला, गुजराती और मराठी भाषाओं के गीतों में सुना जा सकता है। इसके अलावा वो फ्रेंच और अरबी भाषा में भी गाना गा सकते हैं, क्योंकि स्कूल के समय से उन्हें इन दोनों भाषाओं का ज्ञान है। लेकिन सच कहा जाए तो बेनी दयाल सिर्फ एक ही भाषा में गीत गाते हैं और वो है दिल की भाषा। तभी तो उनकी आवाज सीधे दिलों को छूती है।
1: भाई तेरा हुल सकता है, मुझे भी देखो मेरा बनने लगा।

बीनी दयाल एक अच्छी गायक और डांसर होने के साथ साथ एक एक्टर भी रह चुके हैं। उन्होंने साल 2005 में आई मलयालम फिल्म बाय द पीपल से ही अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की और इस फिल्म के सभी गाने उन्होंने गाए। हालांकि उन्हें प्रसिद्धि दिलाने वाले गीत दूसरे रहे, लेकिन ये फिल्म और उनके सभी गीत उनके दिल के करीब हैं।

बीनी दयाल एक बेहतरीन आवाज के मालिक होने के बाद भी फिल्मों में लगातार गाते नजर नहीं आते। इसका कारण उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया और कहा था कि उन्हें ज्यादा काम करने से अच्छा लगता है बेहतर काम करना। वहीं वो ये भी कहते हैं कि उन्हें कभी भी ये लगा ही नहीं कि वो एक प्रसिद्ध गायक हैं, बल्कि आज भी जब वो कोई गाना रिकॉर्ड करते हैं तो यही सोचते हैं कि शायद उनकी आवाज अगर इस गाने के लिए ठीक न लगे तो उसे ना भी रखा जा सकता है या उन्हें इस गाने से हटाया भी जा सकता है, और वो इन सारी बातों को स्वीकारने के लिए तैयार दिखते हैं।

विनी दयाल खुद को दुनियादारी से जरा दूर ही रखते हैं। उनका मानना है कि संगीत दिल से निकलता है, इसलिए खुद को बचा कर रखना आपके संगीत के लिए अच्छा है। वहीं बेनी दयाल ये भी मानते हैं कि अपने दिल में किसी भी तरह की बुरी भावना को घर न करने देना भी आपके संगीत को एक अलग ऊंचाई देता है, और इसकी गवाह तो हम

भले ही फिल्मों में बेनी दयाल लगातार नहीं गाते, पर वो अक्सर अपने गाने खुद बनाते रहते हैं। इन्हें वो स्वैगानुसार नाम से लोगों के बीच लाते हैं। उन्हें संगीत का ज्ञान होने के कारण वो कई बार खुद संगीत भी देते हैं। संगीतकारों की बात करें तो A.R. रहमान के अलावा बेनी दयाल ने हिमेश रेशमिया, प्रीतम, सलीम सुलेमान, विशाल शेखर, अमित त्रिवेदी, शंकर एहसान लॉय, सचिन जिगर जैसे संगीतकारों के साथ कई हिट गाने दिए हैं।

बिनी दयाल की आवाज में एक ओर वेस्टर्न स्टाइल झलकता है तो दूसरी ओर वो अपनी भारतीय जड़ों से जुड़े महसूस होते हैं। जितनी दिलकश उनकी आवाज है उतने ही स्टाइलिश बिनी दयाल भी हैं। कपड़ों, चश्मों और टोपी का उनका अपना ही एक अलग स्टाइल है। वो स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान इतने जोश में होते हैं कि दर्शक भी झूम उठते हैं। एक सिंगर और डांसर होने के कारण वो स्टेज परफॉर्मेंस को जीवंत बना देते हैं।

2016 में बेनी दयाल ने मॉडल कैथरीन थंगम से अपने परिवार के लोगों के बीच शादी कर ली। दोनों अपने जिंदगी के पल अपने फैंस के साथ सोशल मीडिया के जरिए बांटते भी नजर आते हैं। सरल और सुलझे हुए बेनी दयाल कुछ दिनों तक एक रियलिटी शो में जज के रूप में भी नजर आए। इसके अलावा वो अपने संगीत में ही डूबे रहते हैं, देश विदेश में लगातार स्टेज शोज करते हैं और अपने

बेनी दयाल जब भी किसी गीत में सुनाई देते हैं तो लोग उनकी आवाज को सराहे बिना नहीं रह पाते। बावजूद इसके बेनी सादगी और विनम्रता से भरे हैं। उनके हल्के फुल्के मजाहिया वीडियोस देखकर आप भी ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बेनी दयाल अपना जीवन बिल्कुल टेंशन फ्री जीने में विश्वास करते हैं और दिल से संगीत पेश करते हैं। यही बात उन्हें लोगों के दिल में उतारती है। अपनी आवाज से हम सभी के दिलों में बसने वाले बेनी दयाल आगे भी इसी तरह अपनी आवाज का जादू बिखेरते रहेंगे और हम उन्हें सुनकर बस यही कह उठेंगे।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था स्वैग से भरी आवाज के मालिक बेनी दयाल पर। शोध आलेख और स्वर नेहा शर्मा का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

अभी आप सुन रहे थे देश की सुरीली धड़कन, विविध भारती मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रम। श्रोताओं, हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, FM 103.7 MHz पर। रात्रि के 10 बज चुके हैं। श्रोताओं, हमारी आज की ये प्रसारण सभा अब यहीं पर संपन्न होती है। कल सुबह ठीक 8:51 पर हमारी अगली प्रसारण सभा में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।